0: वंदे मातरम।
1: सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य शा

हम बोल रहे हैं रेडियो गोल्डन सिटी से एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 मई 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार दिन के 11:58 हो चुके हैं। अब हमारी आज की ये प्रथम प्रसारण सभा आरंभ होती है।

इस समय अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी। हमारे प्रसारण एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर उपलब्ध हैं। दोपहर के 12:02 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

चूल्हा सके कोई मुझे चूल्हा सके कोई मुझे

होता है। हम रेडियो गोल्डन सिटी से बोल रहे हैं। हमारे प्रसारण एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर उपलब्ध हैं। श्रोताओं, दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: करे तो हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
3: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
3: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
3: तो श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
1: जी,
3: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
1: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए
3: जी।
1: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
3: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
1: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप
3: जी।
1: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
3: तो श्रोताओ, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
1: जी बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
3: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा
1: जी।
3: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
1: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
3: जी अजीत जी, श्रोताओ, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
1: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
3: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओ कि खाली पेट घर से न निकलें
1: जी।
3: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
1: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
3: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओ जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
1: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
3: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे

0: 80 से 90 प्रतिशत तक पानी होता है
1: जी।
0: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए
0: जी।
1: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
0: तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
1: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IBRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
0: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थी, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थी।
3: अकर बकर बम्बी वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
4: अगली बारी
5: अपनी तुम्हारी बात सुना।
4: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है।
5: तो कहानी सुना दो भाई।
4: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकर, घड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
5: बहुत अच्छी कहानी थी। भाई कौए ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
4: हाँ प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
5: हाँ चलो चलो, वहाँ पे पानी
4: चलो,
5: होगा।
4: चलते हैं।
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
6: कौन है?
5: दीदी,
6: कौन है?
5: दीदी।
4: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
5: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
4: हम थोड़ा पानी पी लें?
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
5: हाँ, बहुत ठंडा पानी था।
4: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
7: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?
5: कौन आप?
7: नहीं समझे?
5: नहीं।
7: अच्छा तो फिर ये पहेली सुनो।

0: पंखा चलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम।
2: अब गर्मी अम्मा है।
3: बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
0: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं? पता ही नहीं चलता।
3: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है, गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू। यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है।
3: हाँ
0: अम्मा, मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
3: भाई मेरे मौसम में गर्मी ही तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो ना, चलते हैं।
0: चलो।
4: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गए। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
3: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
4: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
0: अम्मा, आप क्या छुपा रही हैं?
1: अम्मा, ये आपके हाथ में क्या है?
3: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना।
3: दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: नाम
3: सोचो। मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
0: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
0: कौन सा फल है?
3: नहीं समझी?
1: नहीं।
3: अच्छा तो फिर सुनो।
5: खट्टा है पर नींबू नहीं।

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: तुम तो बड़ी समझदार हो।
2: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम कुल्फी वाला, बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो।
1: बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना?
3: अरे कोई खाने को दे तब ना।
1: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
4: लाओ अम्मा,
3: गर्मी अम्मा आप बहुत अच्छी हैं।
1: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
6: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों

0: की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
1: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
2: विजय श्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
1: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
3: What you heard right behind you was the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
4: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
2: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्ट आज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो। वैसे ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की दो सर्दियां देख ली है।
3: जरा उधर देखो।
2: किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: हाँ? कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है।
3: हाँ।
2: लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूं मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: हाँ? हाँ? पहनावे से तो कोई कबायली लगता है।
2: हाँ।
3: लेकिन इधर क्यों आ रहा है?
2: हाँ?
3: कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: हाँ, आने दो, आने दो।
4: ए, कौन हो तुम? रुको, रुको। जाओ वहीं रुक जाओ, रुको।
5: कौन हो तुम?
6: साहब मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
5: क्या सूचना?
6: साहब साहब दुश्मनों के बारे में।
5: अच्छा, यहीं रुको। चलो, कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।

0: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
1: हाँ, नमस्कार। कहो, क्या कहना चाहते हो?
0: सर, हम एक चरवाया है।
1: आगे बताओ।
0: सर, ये 3 मई की बात है। कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
1: क्या देखा तुमने?
0: सब मैंने देखा कि एक पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा हैं।
1: क्या?
0: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ,
1: कितने लोग रहे होंगे?
0: सब पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
1: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
0: साहब, मेरा गांव है घर कौन, ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
1: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
2: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
1: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्को, द्रास, काक्सर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
2: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
1: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
2: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
1: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
2: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
3: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
1: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
3: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
4: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है।

0: हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
1: सही बात। सुनो सब इधर आओ।
2: जी यस सर।
1: ये मेज के चारों।
0: जी सर।
1: उधर से। हाँ जी। तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
2: जी सर।
1: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
2: जी सर।
1: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
2: जी सर।
1: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
2: जी सर। आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर। यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
1: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
3: यस सर।
1: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
2: जी जी सर।
1: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाए। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
2: सर, जी सर।
1: कोई शक?
2: नो सर। सर।
1: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
3: यस सर।
2: सर, सर, अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
4: धीमे बोलो, धीमे।
2: जी,
4: उन्हें पता ना चल जाए।
2: जी सर।
4: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
2: जी।
4: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
2: ठीक सर।
4: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
2: जी सर। जी सर।
4: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
2: जी सर।
4: ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी जैसे।
2: ओके,
4: धीरे। बस अब हम चोटी पर आ गए हैं तो अब रेंगना शुरू कर।
2: जी सर।
4: कोई भी उठ कर नहीं जाएगा, सब रहेंगे। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। हर कोई अपनी पोजीशन ले ले।
2: हाँ सर।
4: एवरीबॉडी रेडी?
2: यस सर।
4: यस सर। अब हथगोला फेंको।
1: वो अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।
3: फायर!

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्को, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा है कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।

आयोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारण हो रहा था रेडियो गोल्डन सिटी से। हमारे प्रसारण एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर उपलब्ध हैं। श्रोताओं, दोपहर का एक बजा चाहता है, कुछ ही पलों में सुनिएगा हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात कर राज्य की जल परियोजनाओं पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री श्री पाटिल के निवास पर हुई इस भेंट में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। इस दौरान यमुना जल समझौते सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में राज्य में इस परियोजना पर तेजी से काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती से योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी पेट्रोल डीजल की बचत पर जोर दिया है। उन्होंने अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या भी कम करने का निर्णय किया है। मीडिया से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी वाहनों के इस्तेमाल में किफायत बरतने के निर्देश दिए गए हैं। CBI टीम ने जयपुर में राजस्थान पुलिस के SOG की ओर से नीट पेपर लीक मामले में हिरासत में लिए गए 20 से अधिक लोगों से पूछताछ की। SOG ने सीकर और आसपास के इलाकों में भी सैकड़ों लोगों से पूछताछ की है। SOG के अनुसार कई लोगों ने कथित तौर पर पैसे लेकर गैस पेपर बेचे, जिनमें से कई प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए थे। वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 में डमी अभ्यर्थी बिठाने के मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने FIR दर्ज करवाई है। इसके बाद SOG ने RPSC के ही एक लिपिक मान सिंह मीणा को गिरफ्तार किया है। आयोग सचिव राम निवास मेहता ने बताया कि इसे करौली जिले की नादोती तहसील से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने जयपुर के 2 केंद्रों पर हुई परीक्षा डमी अभ्यर्थी से दिलवाई थी। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों के लिए ये चेतावनी बताते हुए विभाग ने लोगों से दोपहर के समय घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। इस बीच बाड़मेर कल लगातार 3rd दिन भी देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहां दिन का तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। पलौदी, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, कोटा और झुंझुनू में भी झुलसाने वाली गर्मी का असर है। राजधानी जयपुर में कल अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री मापा गया। दिन भर धूप की तपिश और लू के कारण सड़कें और बाजार सूने नजर आए। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसके तहत प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर योग शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनमें योगाभ्यास करवाया जा रहा है। साथ ही योग के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। इसी कड़ी में पाली जिले के कोलीबाड़ा के राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय में छात्र छात्राओं को योगासन करवाया

0: जा रहा है। केंद्र सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। ये आज से प्रभावी हो गया है। सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। प्लेटिनम पर आयात शुल्क भी 6.4% से बढ़ाकर 15.4% कर दिया गया है। इसके बाद सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति इस साल 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: इस समय अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी। हमारे प्रसारण FM बैंड 101.8 MHz पर उपलब्ध हैं। दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम मूमल।

0: चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। मूमल कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को आपकी अपनी रेडियो सखी सोनल
1: और प्रीति का प्यार भरा नमस्कार।
0: प्रीति, अगर हम बात करें दान की, मदद की, तो दूसरों के लिए हमेशा मददगार रहना एक नेक और परोपकारी गुण है, जो केवल न केवल दूसरों के जीवन को आसान बनाता है, बल्कि खुद को भी खुशी और एक बहुत ही अजीब सा जो संतोष है वो प्रदान करता है। हमेशा ही लाइफ में दूसरों के लिए मददगार आप बने रहें। मददगार किसी भी तरीके से होते हैं, आप भावात्मक तरीके से भी हो सकते हैं या फिर फाइनेंशियल भी। अगर किसी को आपके आसपास कुछ ऐसे लोग देखते हैं आप जो ज़रूरतमंद है, जिनको वाकई कि आपकी ज़रूरत है, आपकी किसी भी चीज़ से अगर उनका भला हो सकता है, तो आप कभी भी पीछे ना हटें, हमेशा दान करना चाहिए। दान को हमेशा ही जीवन में बहुत एक बड़ी चीज़ की कहा गया है, क्योंकि किसी ज़रूरतमंद के लिए हमेशा अगर आप खड़े रहते हैं तो उससे बड़ी और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। चाहे वो अपने मन में आप कभी सोचते हो कि सामने वाले को इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, तो ये बहुत एक सोचने वाली प्रीति बात हो जाती है कि आप किस तरीके से दूसरों की मदद करते हैं, उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
2: बिल्कुल सोनल, दान का एक अलग ही, मतलब कह सकते हैं कि एक अलग ही सुख होता है। दान का सबसे बड़ा सुख होता है कि वो हमें मानसिक और आध्यात्मिक सुख देता है। और एक पर यहाँ ये जरूरी है कि हम जब कोई दान करते हैं तो उसका पूरा डंडोरा ना पीटे, हमने ये दान किया, तो वो दान नहीं कहलाता, वो एक पब्लिसिटी कहलाती है। दान का मतलब है कि किसी जरूरतमंद को अगर हमने कोई चीज़ दी है या उसको उस वक्त ज़रूरत थी। और दान सिर्फ कपड़ों का या खाने की चीज़ों का नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन शायद आर्थिक स्थिति की वजह से वो पढ़ नहीं पाते, तो स्कूल में उनका दाखिला करना, उनको किताबें देना, उनको ड्रेस दिलवाना, ये भी एक तरह का सबसे अच्छा काम है। दान एक ऐसी चीज है जो आप करके देखो, आप में एक सकारात्मकता आएगी और एक आपका अहंकार खत्म होगा, क्योंकि दान से आपका अहंकार खत्म हो जाता है, आपको लगता है आप किसी के लिए कुछ कर सकती हो। पर हाँ, ये जरूर है कि आपको फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही भगवान हूँ। आप भगवान ही हो, आपके उसके द्वारा भेजे हुए एक इंसान हो, जो आपको, आपके पास अगर कुछ है तो आप वो उसको दान के रूप में कर रहे हो।
0: बिल्कुल प्रीति, अगर दान का महत्व बोले तो ये तो हमारे, अगर खास करके हिंदू धर्म की हम बात करें, तो ये तो सदियों से, पुराने समय से चला आ रहा है। हमारे शास्त्रों की भी अगर हम बात करते हैं तो कर्ण को भी एक बहुत ही दानवीर माना गया है, और उसके अलावा अगर हम बात करें ऋषि दधीचि का भी वर्णन है पुराणों।

0: में जिन्होंने अपनी हड्डियां तक
1: दान कर
0: दी
1: दी
0: थी,
1: थी।
0: तो ये तो मतलब शुरू से चला आ रहा है। तो आप किस तरीके से उसको अपने जीवन में अपनाते हैं, किस तरीके से दूसरों की मदद करते हैं और अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसको किस तरीके से इसके लिए तैयार करते हैं कि कैसे हम दूसरों की मदद करें, क्योंकि हमेशा से ये कहा गया है कि दान एक हाथ देने पर अनेक हाथों से लौटकर हमारे पास ही वापस चला आता है। बस शर्त इसमें ये होती है कि निस्वार्थ भाव से आप जो भी आप दान कर रहे हैं उसमें आपकी जो भावना है वो मैटर करती है। हर चीज़ के पीछे हमारी भावना जो है वो मैटर करती है। तो इसमें भी यही है कि अगर आप दान कर रहे हैं तो आपके जो मन है वो शुद्ध होना चाहिए। मानसिक तौर पे आप किस तरीके से इन चीज़ों को लेते हैं ये बहुत जरूरी है। अब वो दान जैसे कि आपने बोला किसी भी रूप में कर सकते हो आप, बशर्त ये है कि वो जो सामने वाला इंसान है उस वो ज़रूरतमंद होना चाहिए, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे जानवरों को भी। अगर हम करें तो जानवरों को भी आप दे सकते हैं क्योंकि बेचारे वो कुछ बोल नहीं सकते, तो उनके लिए भी आप कुछ कर सकते हैं। गरीब बच्चों को आप स्कूल में जैसे बोला आपने दाखिला करवा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो करके आप एक ज़रूरतमंद का जो मन है उसको खुशियों से भर सकते हैं।
1: बिल्कुल सोनल, और दान भी कई तरह के होते हैं, जैसे अन्न दान, वस्त्र दान, विद्या दान, धातु दान, जहाँ जिसकी जरूरत हो। अब कई बार हम देख रहे हैं कि इतनी तेज धूप में कई लोग तिरपाल लगाकर वैसे रहे, अगर हमारे पास है तो हम उनको एक थोड़ा सा ज्यादा नहीं तो जैसे टीन लगवा के झोपड़ी टाइप या छोटा कच्चा पक्का मकान उनको बनाकर दे सकते हैं। अगर हमारे पास इतना है और हम उस सामर्थ्य है हमारे पास, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत है, दे सकते हैं। अन्न दान, अब बेचारे कई लोग ऐसे होते हैं जैसे नहीं कुछ कर पा रहे, उनके पास वो शायद क्षमता नहीं है, कोई बीमार है घर में नहीं कमा पा रहे, तो उनको अन्नदान दे सकते हैं, विद्या दान दे सकते हैं, वस्त्र दान दे सकते हैं। दान बहुत प्रकार के होते हैं, पर हाँ ये है कि आप जब कोई दान दे रहे हो तो वो आप एक हाथ आप दान दे रहे हो, दूसरी हाथ आप फोटो खींच के मोबाइल पर डाल, तो शायद लेने वाले को भी शर्म आ जाती है। कई बार कई बार ऐसा होता है ना, हम दान दे रहे हो किसी को बताना नहीं चाहता लेने वाला, कि भाई किसी को ना पता, लोग उनको उस नज़र से देखते हैं कि आज हमें नीची नज़र से देख रहे हैं। तो दान इस तरह का दो किसी को पता भी ना चले तो वो आपका दान लगता है, नहीं तो नहीं लगता। आपने तो वो अपनी पब्लिसिटी के हिसाब से किया तो वो दान आपका कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपने गुप्त दान दिया है जब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने सबको दिखाने के लिए किया तो वो तो फिर आपकी खुद की एक मतलब कहते हैं आप खुद सेल्फिश हो, आप अपनी पब्लिसिटी करना चाहते हो।
0: बिल्कुल, और किसी भी चीज का दान, किसी भी वस्तु का दान करते रहने से आपका जो मन है सखियों वो उसका विचार और आपके मन में खुलापन आता है। आसक्ति जो है, मोह जो है किसी भी चीज़ से, वो कमज़ोर पड़ता है, जो शरीर छूटने या मुक्त होने में एक जरूरी भूमिका निभाता है। हर तरह के लगाव और भाव को छोड़ने की जो शुरुआत है सखियों वो दान और क्षमा से ही होती है। दानशील जो व्यक्ति होता है वो किसी भी प्रकार का कोई भी जो मन में शोक है वो नहीं लेके बैठता है, कोई भी तरह का जो दुख है वो नहीं लेके बैठता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मन से जो भी कर रहे हैं वो मन से करें, और जब आप दान करते हैं तो आपकी जो चीज़ों के प्रति जो मोह है जो हम ऐसे ही रख के बैठते हैं, कई बार वो मोह जो है वो कमज़ोर पड़ता है। तो सखियों, हमेशा अपने आसपास जितने भी आप ऐसे ज़रूरतमंदों को देखें जिन्हें वाकई आपकी मदद की ज़रूरत है, तो हमेशा उनके लिए किसी भी रूप में जिस तरह से आप उनकी सहायता कर सकते हैं ज़रूर आप सहायता करें। आप उनको किसी भी तरह से सपोर्ट दे सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो मानसिक सपोर्ट हो सामने वाले को, तो आप सपोर्ट करना ज़रूर सीखें, दान करना ज़रूर सीखें। तो सखियों, बातें आपसे यूं ही जारी रहेंगी, चलिए सुनते हैं एक प्यारा सखी।

0: बहनों, अभी आपने जो प्यारा सा गीत सुना, फिल्म थी दीवानगी। गीत को आवाज दी थी सोनू निगम, कविता कृष्णमूर्ति ने। सोनल, हम बात कर रहे थे दान की, तो दान के साथ साथ एक हमारा फर्ज और बनता है पक्षियों को लेकर, जो बेजुबाने बोल नहीं सकते। इतनी भीषण गर्मी में हमें तो अगर लगता है कि हमें अगर प्यास लग रही है या कुछ इच्छा होती है तो हम बोल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन जो पक्षी होते हैं वो बोल नहीं सकते। वो सिर्फ अपने पंख फड़फड़ाकर बता सकते हैं कि उन्हें शायद उस वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत है। और इतनी भीषण गर्मी में मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की, जल की, कि जल जीवन है। अगर जल मिल जाता है तो, अगर ऐसा होता है ना, कई बार हम लोग भी पूरे दिन भूखे रह सकते हैं, लेकिन अगर पानी नहीं होता ना तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल सांस निकल ही जाएगी, क्योंकि जल ही जीवन है। तो पक्षियों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बेजुबान है उनके लिए जगह जगह पर ये अभियान भी चलाए जाते हैं। ये भीषण गर्मी को देखते हैं कि पक्षियों के लिए जगह जगह पर वो कटोरे रखे जाएं, या उनके लिए जगह जगह पेड़ों पर वो बांधे जाते हैं मिट्टी के। वो भी आजकल तो सरकार फ्री में देती है कि लोगों को इसके लिए भी परेशानी ना उठानी पड़े। वो जो दान बर्तन होता है वो भी आजकल एक जगह बता दी जाती है, वहां से वो ले सकते हैं और दी जाते हैं। तो और एक सही स्थान पर लगाएं, जैसे हम कई बार होते हैं बस मन में सोच रहे ये करना है तो कहीं पे भी रखते हैं, कहीं पर बना रखें, उस बर्तन को भी देखें कहीं छांव आ रही है वहां रखें, और टाइम उसका पानी चेंज करें, जाता खुशी के रोज सुबह डेली उसका पानी चेंज करें, दाना डालें। तो ये भी एक सबसे बड़ा दान है। आप किसी की प्यास बुझा रहे हो, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, तो ये आपने सबसे बड़ा दान किया है।
1: बिल्कुल प्रीति, घर के आंगन में जो चहचहाती चिड़िया है वो बहुत ही सुकून देती है, और एक एक दाना चुनती है और फुर से उड़ जाती है। और वो जो हम देखते हैं चिड़ियाओं को, उनका जो समूह देखते हैं, तो हमारे चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। लेकिन अभी जो गर्मी की अगर हम बात करें, इन गर्मी में तो हम लोग ही इतने परेशान हो रहे हैं, तो जानवरों का परेशान होना तो बहुत ही लाजमी है। और ऐसे में पानी तक नहीं मिल पाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जानवर होते हैं, ये पक्षी होते हैं, किसी से कुछ कह नहीं पाते। तो हमें ही कोशिश करनी चाहिए एक, कि हम उनका, इन जो छोटी चीजें हैं उनका हम ख्याल रख सके, जैसे कि आपने बताया। परिंदे लगाने चाहिए, मिट्टी के बर्तन जो है उसमें आप ताजा पानी भर के ऊंची जगह पे पेड़ों की डालियों पे इसे टांग सकते हैं। और साफ सफाई का ख्याल रखना तो बहनों बहुत जरूरी है, रोज उसका पानी चेंज हो, ताकि कोई भी मच्छर या किसी भी तरह की कोई जो गंदगी है वो उसके अंदर नहीं जमे। क्योंकि कई बार हम ये चीजें लगा तो देते हैं अपने घर के आसपास या पेड़ों पे, लेकिन उसकी फिर जो क्लीननेस है उसका हम ख्याल नहीं रख पाते हैं। और छाया का भी प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए, कि जो परिंदे हैं उसमें सीधे धूप नहीं आए और पेड़ की छाया जो है उसे वो कंटिन्यू मिलती रहे। और अगर हम अपने आसपास के लोगों की बात करें, तो जागरूकता एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, कि अपने आसपास के जो लोग हैं उनको भी आप इन, ये जो चीज़ें तो छोटी छोटी दिखती है लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं लाइफ में, तो इन चीज़ों के लिए आप उनको भी जागरूक करते रहें जो आपके आसपास के लोग होते हैं। क्योंकि ज़रूरी है कि हम मानवता के नाते, क्योंकि हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं, अपना जो अपनी प्रॉब्लम है वो किसी को कह के सुना सकते हैं, लेकिन जो जानवर होते हैं वो बेजुबान होते हैं, किसी से कुछ मांग नहीं पाते, कुछ कह नहीं पाते। तो ये हमारा मानवता के नाम पे ही एक फर्ज होता है कि हम ये जो उनकी ज़रूरत है उनको पूरी कर पाएं, और जो आसपास के लोग हैं, आपके घर के लोग हैं, उनको भी इस ओर आप प्रेरित कर पाएं।
0: बिल्कुल सोनल, ये बिल्कुल सही है कि परिंदे लगाकर हम एक मानवता का, यूं कहते हैं, इंसानियत का फर्ज पूरा करते हैं। क्योंकि जो बेजुबान होते हैं वो बोल नहीं पाते, तो उनके लिए हम ये कर सकते हैं। और एक यही है कि हम थोड़ा सा, वही है, तुमने सही बताया कि उचित स्थान देखें जहाँ छांव आ रही हो। और एक ये है कि अपने आंगन में, या ज्यादातर तो वैसे सही रहता है कि अगर आप पेड़ों पे बांध देते, क्योंकि पंछी वहीं आते हैं, वहीं बैठते, तो वहीं से अपनी प्यास बुझा। और साथ में अगर पानी के साथ साथ थोड़ा सा अगर हम दाना भी रख देते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो हमारी सबसे बड़ी सोच ये होनी चाहिए कि कोई भी पक्षी काल का ग्रास ना बने पानी के बिना। क्योंकि आजकल देख रहे हैं हम, जगह जगह पानी की थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो हम क्या सोचते हैं कि पहले अगर पानी आता भी है तो हम पहले ये सोचते हैं अपने घर का पानी भर लें, फिर बाद में बाहर, अगर हमने बनाया भी है लेकिन उसको भरते नहीं है। तो जगह जगह पानी के, जैसे वो आजकल बनते हैं मिट्टी के बर्तन बनाए, छोटे छोटे पक्षियों के लिए छोटे छोटे परिंदे लगाए जाते हैं वो बनाए। और अगर परिंदे नहीं है तो घर में कोई भी पुराना बर्तन है उसमें पानी भर के रख सकते हैं, पास में दाना रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तुमने ये बिल्कुल सही कि थोड़ा सा उसकी क्लीननेस रखें। अगर आप रोज उसमें पानी डालोगे, डेली पानी डालोगे, तो नीचे काई जम जाएगी, और काई से क्या पानी में थोड़ी सी स्मेल आने लगती है। तो हमने भरा भी है लेकिन पक्षी उस पानी को नहीं पी रहे, तो वो बेकार है। तो ज्यादा नहीं तो 2 दिन 3 दिन में एक बार उसको धो के वापस साफ पानी से भर के फिर उसका यूज में लें। तो इससे क्या होगा, पक्षी भी सुरक्षित।

सुरक्षित रहेंगे। ये तो हम देख रहे हैं पक्षी भी आजकल देख रहे हैं जगह जगह की गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। ये किस लिए होती है? पानी की वजह से नहीं, ये उनकी गंदगी की वजह से पेट में जो चली जाती है ये है। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें और ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने आसपास लोगों को भी ये बताएं कि ये परिंदे लगाना कितना जरूरी है। तो सोनल, हमारी चर्चा सखियों के साथ ऐसी ही चलती रहेगी, लेकिन चर्चा के बीच में सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

Hey, hey.

0: तो सखियों, अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान और केके की आवाज़ों में चुपके चुपके फिल्म से ये प्यारा सा गीत। प्रीति, अगर हम बात करें, हमारी जो सरकार है वो हमारे लिए बहुत सारी योजनाएं आए दिन चलाती रहती हैं, और कई सारी योजनाएं हैं जिनके हम बेनिफिट उठा भी पाते हैं, और कई योजनाओं का हमें ध्यान नहीं होता है, हमें ज्ञान नहीं होता है कि जो सरकार है उन्हें वो हमारे लिए क्या क्या योजनाएं जो हैं वो चला रही हैं। तो ऐसे में जागरूकता बहुत मैटर करती है कि आप इन चीज़ों के प्रति कितने जागरूक हैं, कि आप किस तरीके से सरकार से बेनिफिट ले सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। ऐसी ही योजनाओं की अगर हम बात करें तो उसमें एक आती है प्रधानमंत्री पोषण योजना। तुम्हें पता ही होगा प्रीति, ये जो योजना है जिसे हम मिड डे मील भी कह सकते हैं, ये सरकार के द्वारा चलाई गई है, और इसका जो उद्देश्य है वो है स्कूली बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना और शिक्षा को बढ़ावा देना। जब हम गांव के बच्चों को देखते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं वो, और उनके पास इतना फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं होते हैं, बहुत गरीब से बच्चे होते हैं, तो उन्हें प्रॉपर शिक्षा देना, और उन्हें शिक्षा देने के लिए एक वो भी होता है ना कि वो किस तरीके से स्कूल में आएंगे, क्या चीज़ उनको प्रेरित करती है। तो कई बार बच्चे नहीं आ पाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ कोई चीज़ें प्रेरित नहीं कर रही होती हैं, लेकिन ऐसी जो योजनाएं होती हैं जिसमें अगर हम मिड डे मील की बात करें तो सरकार जो खाना होती है वो 5 से 14 आयु की जो वर्ग के बच्चे हैं उनको जो खाना है वो स्कूल में प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसे में बच्चे भी, जो बच्चों का मन होता है वो कई बार ऐसा होता है कि नहीं हमें इसके लिए जाना है, तो वो स्कूल आते हैं, उसके बेनिफिट ले पाते हैं। तो ज़रूरी है कि किस तरीके से जो योजनाएं चल रही हैं वो हम ध्यान में रखें, और उसका जो योजना है उसका जो लाभ है वो हम सब मिल के उठाएँ। और इस योजना की बात करें तो ये योजना देश भर के 11.5 लाख से अधिक स्कूलों में लगभग 11 करोड़ बच्चों को कवर करती है, और इसमें बहुत अच्छी एक ये योजना है। और इसके अंतर्गत जो सरकारी सहायता प्राप्त स्थानीय जितने भी विद्यालय हैं प्राथमिक स्तर पे और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के जो बच्चे हैं उनको निशुल्क जो दोपहर का खाना है, दोपहर का जो भोजन है, वो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। और इसका जो नया नाम है वो है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, और जिसका पुनर्गठन सितंबर 2021 में किया गया है। तो और इसमें जो उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 8 से लेके 8 तक सभी बच्चों को पौष्टिक भोजन जो है वो प्रदान करना है, और ये दुनिया के सबसे बड़े स्कूलों स्कूली भोजन कार्यक्रमों में से एक है।
1: बिल्कुल सोनल, ये बिल्कुल सही है, ये तुमने वैसे बिल्कुल सही कहा कि कोई चीज़ हमें प्रेरित करेंगे तो हम वहाँ खींचे चले आएंगे। एक कह सकते हैं लोभ, लालच। अब कई बार ऐसा होता है ना कि गांव में जब हम देखते हैं, आप पूछते हैं कि आपका बच्चा स्कूल जाता है कि नहीं जाता है, तो उनका एक ही जवाब होता है कि खाने का तो है नहीं, स्कूल क्या भेजें, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति उस टाइम ऐसी होती है। तो सरकार ने ये भी एक योजना चला रखी है कि बच्चों को स्कूल भेजो निःशुल्क, उनका कोई शुल्क नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें किताबें ड्रेस सब स्कूल वाले ही प्रोवाइड करेंगे। और अब तो ये खाना भी कर दिया मिड डे मील वाला, तो ये भी हो गया पोषण योजना जैसे। तो बस ये है कि सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उपस्थित होएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एडमिशन लें और छुट्टियां ना लें। कई बार बच्चे ऐसा

0: होता ना कि सुबह नहीं आते, लेकिन जब खाने का टाइम होता है तो बर्तन लेके आ जाते हैं। तो भी सरकार ये सोचती है चलो आज एक आए कल दो आएंगे, आज एक भाई आए तो उसे पता चलेगा कि यहाँ खाना मिल रहा है, क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर होने से इंसान भोजन के लिए इधर उधर भटकता है। तो घर वाले सोचे चलो हम नहीं तो बच्चे तो वहां जाके अपना पेट भर ले, तो ये एक सबसे अच्छे, और जाएंगे बैठेंगे तो आज नहीं तो कल थोड़ा बहुत पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि एक चीज उन्हें प्रेरित करे कि आज हमें यहाँ खाना मिल रहा है, और खाना जब मिलेगा जब हम पढ़ाई करेंगे। तो एक चीज से दो चीजें हो जाती है कि बच्चों का पोषण भी अच्छा हो जाता है और उनकी पढ़ाई भी शुरू हो जाती है। ये बहुत अच्छी योजना है देश को, मतलब एक तरह से विकसित करने के लिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं ना कि सरकारी स्कूलों की थोड़ी सी कंडीशन थोड़ी ज्यादा वो हो गई है। आजकल कोई भी जैसे पढ़ना नहीं जाता, उनको ऐसा लगता है सरकारी स्कूल क्या है, जबकि सरकारी स्कूलों में सारी चीजें मुफ्त मिलती है, पढ़ाई अच्छी होती है। तो ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कूलों में एडमिशन लें। और जैसे हम बता रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि लोग वो भेड़ चाल कि नहीं, प्राइवेट स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो रही है, नहीं नहीं वहाँ हो रही है, तो ये अच्छा है वहाँ पे भी अच्छा, लेकिन सरकारी से भी जुड़े हुए रहे, क्योंकि सरकारी व्यवस्थाओं से जुड़ने से हमें बहुत सारे और भी बहुत सारे लाभ होते हैं, हमें पता ही चलता है। जैसे अब आजकल तो हम देख रहे हो ना कि सोनल 10th पास में लैपटॉप मिलता है, स्कूटी मिलती है, तो ये एक तरह का क्या हो गया, एक तरह का वही हो गया ना बच्चों को प्रेरित करना कि आप आओ पढ़ो तो आपकी सारी सुविधाएं मिल रही है। आप तो ये भी बहाना नहीं बना सकते कि अब बच्चियां बड़ी हो गई है, हम गांव में रहते हैं हम कैसे आए, तो उन बच्चों को स्कूटी साइकिल टाइम टाइम पे ये चीजें देना, ये
1: और
0: बहुत
1: आजकल
0: अच्छी योजना है।
1: तो स्किल जो डेवलपमेंट की जो कार्यक्रम है वो भी सरकार बहुत अच्छे
0: अच्छे
1: चला
0: चला
1: रही है,
0: रही हैं।
1: क्योंकि आपका जो किताबी ज्ञान है सिर्फ वो ही आपके लिए आजीविका नहीं दे सकता है। जरूरी नहीं है कि जो हम पढ़ते हैं या फिर हमारे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो सभी नौकरी में जा
0: जा
1: पाए।
0: पाए
1: तो जो स्किल्स हैं, हर बच्चे के स्किल्स अलग होते हैं और सब में कुछ ना कुछ खूबियां जरूर होती है आपके बच्चे में। तो वो अगर आपका बच्चा पढ़ाई में होशियार नहीं है तो गवर्नमेंट ने तो उसकी भी योजनाएं चलाई है कि आप अपने बच्चे को की जो स्किल है वो बाहर निकाल सकते हैं, वो डेवलप कर सकते हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज अभी तो चला रही है गवर्नमेंट, ब्यूटी एंड वेलनेस है, या फिर हेल्थ केयर की बात करें, ऑटोमोबाइल की बात करें, तो बहुत सारे
0: बस ये
1: ऐसे फील्ड है जिसको आप चुन सकते हैं और अपना जो आने वाला जो फ्यूचर है सखियों उसको आप अपने बच्चों के लिए सिक्योर कर सकते हैं। तो बस जरूरत है कि इस और आप ध्यान दें कि जो योजनाएं हैं उनका किस तरीके से हमें लाभ लेना है।
0: बिल्कुल शीतल, सोनल एक चीज और है कि जैसे कई बार होता है ना बच्चे घर के आर्थिक स्थिति सही नहीं होने से बच्चे जल्दी ही नौकरी पर लग जाते हैं, काम धंधे पर लगते हैं, तो उनके लिए भी एक सुविधा है कि अगर वो किसी कारण से लग गए, अगर वो दिन में अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो रात को भी उनके लिए एक सुविधा है। सरकार ने रात को भी स्कूलें खोली हुई है, उनका एक टाइम होता है कि वहाँ बच्चे आके अपना ज्ञान, बस कुल मिला के ज्ञान रहे, निरक्षर ना रहे, हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, यहाँ तक कि वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके, ये ना कहलाए कि ये अनपढ़ है। ये अनपढ़ वाला बोर्ड हटाने के लिए सरकार ने जगह सर्वे पे बहुत सारी ऐसी योजना चल रही है, ये तक कि कुछ तो योजनाएं पता ही नहीं है और कुछ पता नहीं करना चाहते, तो उन पता नहीं करना चाहने के चक्कर में ये खाने का निःशुल्क पढ़ाई का सारा खर्चा उठा रही है सरकार। यहाँ तक कि 12th के बाद में भी अगर बच्चा आगे और पढ़ना चाहता है तो उसको छात्रवृत्ति मिलती है, इसको बोलते हैं स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है, उसको अपनी पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है।
1: बिल्कुल सखियों, तो सखियों आपसे बातें तो हम यूं ही जारी रखेंगे, ले चलते हैं फिर से मनोरंजन की दुनिया में, सुनते हैं एक और प्यारा संगीत।

बातों बातों में तुम्हें फंसाती है, पहले हंसाती है फिर बड़ा रुलाती है। लड़की क्यों न जाने क्यों।

0: पीछे क्यों आते हो? फूल कभी तो हजार तोहफे आखिर क्यों लाते हो?
1: अपना नाम नहीं बताया आपने, कॉफी पीने चलेंगे? मैं आपको घर छोड़ दूँ, फिर कब मिलेंगे?

0: न बुलाए।
1: 1 मार्च को नजर मिलाई, 4 अप्रैल को मैं मिलने आई, 21 मई को तुमने छुआ था, 6 जून मुझे कुछ हुआ था।
2: लड़कों का क्या है, किसी भी मोड़ पे वो मुड़ जाए, अभी किसी के हैं, अभी किसी और से वो जुड़ जाए।
3: तुम्हारे मम्मी डैडी घर पर नहीं है? ग्रेट, मैं आ जाऊँ। तुम्हारी फ्रेंड अकेली घर जा रही है?
4: बेचारी,
3: मैं छोड़ आऊँ?

0: राइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो टरका समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है, दूर हुआ तो क्या दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए, कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडरा, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती, तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
2: तो सखियों, अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और शान की आवाज़ों में हम तुम फिल्म से ये प्यारा सा गीत। प्रीति, अगर हम बात करें अभी गर्मी के मौसम की, तो गर्मियाँ बहुत ही अपने रौद्र रूप में हैं, और ऐसे में अपनी स्किन का ख्याल रखना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना

0: और अपने बालों का ख्याल रखना विशेषकर बहुत ही ज़्यादा एक चैलेंजिंग सा हमें लगता है। अगर हम अपने बालों की बात करें तो सखियों, बहुत ही आपको गर्मी के मौसम में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि इस मौसम में बहुत ही ज़्यादा चिपचिपाहट होती है, उमस का मौसम होता है। तो ऐसे में बालों को किस तरीके से आप उनकी केयर करें जो आपके बाल रूखे और बेजान भी ना हो और वो टूटे भी कम, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहली तो जो बात आती है वो ये है कि आप डाइट किस तरीके की लेते हैं, क्योंकि मैटर ये करता है कि आप जो बॉडी में इंटेक करते हैं, कि आप खाते क्या हैं, आप आपके बॉडी में लिक्विड की मात्रा क्या है, तो ये चीज़ें भी आपके बालों को, साथ ही साथ आपके स्किन को, आपकी हेल्थ को बहुत ही इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले तो गर्मियों का मौसम है, तो ऐसे में हाइड्रेट रहना सखियों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में पर्याप्त रूप से हाइड्रेशन है तो फिर आपकी स्किन और जो बाल हैं वो नेचुरली हेल्दी हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में आप कोशिश करें कि लिक्विड की जो मात्रा है वो अपने बॉडी में लेते रहें, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें, और भी जो लिक्विड के रूप में आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। आप छाछ ले सकते हैं गर्मियों के मौसम में, आप दही से बनी हुई कोई भी लस्सी ले सकते हैं, या फिर आम पन्ना जो है वो आप ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं गर्मियों में आपके पास में लिक्विड को कंज्यूम करने के लिए। तो जिस तरीके से आप लिक्विड डाइट लेते हैं तो उससे आपकी जो स्किन है और जो बाल है वो नेचुरली ही हेल्दी बने रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि कोशिश करें कि आप अपने अपने बालों को रोज़ ना धोएं, क्योंकि कई बार हम बालों को रोज़ धोते हैं और उससे जो आपकी ड्राइनेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपके जो बाल हैं वो भी बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। तो कोशिश करें कि गर्मियों में आप वीक में 3 से 4 बार आप सर धो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बालों को धोना, शैम्पू करना, वो आपके बालों में और भी ड्राइनेस लेके आ सकता है। और गीले बालों को कई बार हम इतनी जल्दी में होते हैं कि बाल गीले होते हैं और हम उन्हें बांध के यूं ही घर से निकल जाते हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि इससे आपके जो बाल हैं वो ज़्यादा झड़ेंगे। क्योंकि बालों को जब हम गीले में ही बांध देते हैं तो उससे बालों की जो जड़ें हैं वो वीक पड़ जाती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप गीले बालों को कभी भी ना बांधें। और अभी इस गर्मी के मौसम में हीटिंग जितनी भी जो स्टाइलिंग के प्रोडक्ट होते हैं या फिर हीट के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं अपने बालों में, कम से कम आप यूज़ करें जितने भी स्टाइलिंग प्रोडक्ट हैं। और कलर्ड जो हेयर हैं उनका भी विशेष ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए वैसे ही शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं जो स्पेशली कलर्ड बालों के लिए होते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं घरेलू नुस्खों की, तो बहुत सारी घरेलू चीज़ें भी होती हैं जिन्हें यूज़ करके आप अपने बालों को हेल्दी और नरिशमेंट दे सकते हैं। आप अपने बालों में नारियल का तेल लगा सकते हैं, उससे अच्छे से वीक में आप 2 बार मालिश कर सकते हैं। नारियल के तेल को और बादाम के तेल को मिक्स करके आप रात को लगा के सोएं और मॉर्निंग में आप उससे वॉश कर लेंगे, तो आपके जो बाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बने रहेंगे। और प्रीति, अब क्या है आपका इसके बारे में कहना?
1: सोनल, ये तो है कि आजकल सबकी शिकायत यही रहती है कि बाल बहुत झड़ रहे हैं। हाँ, कुछ ये हो सकता है कि हवा की वजह से हो जाता है कि अब हवा कैसे चलती है। अभी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो गर्मी में ये होता है ना कि अधिकतर मैंने देखा है बहनों को वो चोटी में गर्मी लगती है तो फिर अपने बाल लिए थ्रेड जूड़ा बनाया और क्लेचर लगा लिया, फिर शायद उसको 2 2 दिन तक शायद बनाती भी नहीं है वो गर्मी के कारण। तो थोड़ी सी ये होता है कि अगर हम बालों का अपनी केयर थोड़ा सा करें तो हमारे बाल सही रहेंगे। ये है कि आप 2 2 दिन तक अगर कंघी नहीं करेंगे और जब आप करेंगे तो बाल झड़ेंगे। तो ये है कि आप, हाँ जैसे ये सही है कि आप रोज उनको बालों को धोने से क्या बाल में एक लूखापन सा आ जाता है, क्योंकि गर्मी में तेल अच्छा लगता नहीं और बाल लूखे होंगे तो टूटेंगे। एक होता है कि हमारा खान पान में भी थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। अभी जैसे गर्मी के मौसम में आप जितनी लिक्विड चीज़ें ले रही, जितना पानी पियेंगे, तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे कभी कोई बीमार हो गया है तो या हमारी कोई दवाई चल रही है गर्म, तो दवाई गर्म करती, गर्माहट की वजह से भी शरीर में बाल जो होते हैं वो थोड़े झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो अपने खान पीन में ठंडी चीज़ें लें, जैसे कि जैसे सोना तुमने बताया कि छाछ लें, केरी पानी लें, एक होता है इमली का पानी, वो भी बहुत ठंडा रहता है। इमली के पानी में इमली को भिजो के गुड़ में थोड़ी देर रख के फिर उसको छान लें और उसमें और पानी मिक्स करके, और आप उसको ले, वो बहुत ठंडा, मतलब ठंडी चीज़ें लें ज़्यादा से ज़्यादा। मार्केट में जैसे अभी तरबूज आ रहा है, खीरे आ रहे हैं, जो आपके शरीर में पानी की मात्रा को पूरा कर सकता है वो चीज़ें खाएं, क्योंकि हमारे खान पान से हमारे पूरे शरीर पर यानी कि बॉडी पर फर्क पड़ता है। हम उसमें बस आई कई करते थे गर्मी बहुत है, तो गर्मी में ये तो है कि आप तला भुना थोड़ा सा कम खाएं, कम क्या खाएं नहीं, नॉर्मल अपनी जो डाइट लेते हैं हरी सब्जियां वगैरह वो लें। और अपने बालों में जैसे अब आप खाली बैठे हो, आपको कल सिर धोना है।

0: तो आज आप अपने बालों में हल्के हल्के हाथों से दही की मसाज करें, जो दही ठंडा होता है और बालों को बहुत अच्छा उसका लूखापन दूर करता है, एक सिल्की पना लाता है। एक ये होता है कि आप टाइम टाइम पे अपने ये क्या होते हैं, समय समय पे हमने क्या देखते हैं, इससे बाल झड़ रहे तो दूसरा शैम्पू ले लिया, इससे बाल झड़ रहे तो तीसरा शैम्पू ले लिया, कंडीशनर ले लिया, ये नहीं। आप अपनी एक चीज फिक्स रखिए कि आपको क्या सूट हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि मौसम के अकॉर्डिंग हमें कोई चीज सूट नहीं होती, पर हमें ऐसा लगता है कि चीज हमें सूट नहीं हो रही, हम अपना शैम्पू कंडीशनर ये सब चेंज करते रहते हैं, तो उससे भी हमारे बालों को बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए आप फिक्स अपनी एक चीज रखिए। आपके बालों तो ये तो समय के वो झड़ने लग जाते हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन आप शैम्पू साबुन ये चेंज मत करिए।
1: बिल्कुल। और कई बार ये भी होता है कि हम कई बार बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शैम्पू करते ही जाते हैं, और बिना कंडीशनिंग के सिर्फ शैम्पू को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आपके बालों के लिए हार्मफुल हो सकता है। नैनो, जब आप हेयर वॉश करते हैं तो उसके साथ में प्रॉपर आप कंडीशनिंग करिए, उसके साथ में आप सीरम यूज़ करिए, तो उनसे भी बालों में बहुत ज़्यादा बचाव रहता है। और एक और जो आदत होती है हम में से कई सखियों की, वो ये होती है कि हेयर जब हम वॉश करते हैं तो गीले बालों में ही तुरंत ही कंघी कर देते हैं, तो इससे भी आपके जो हेयर फॉल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कोशिश करें कि गीले बालों को कभी भी कॉम ना करें, बालों को अच्छे से आप ड्राई होने दें, उसके बाद ही आप बालों में कॉम करें। और कई बार बहुत ज़्यादा दिनों तक हम ऑयल लगा के रखते हैं सर में, उसको वॉश नहीं करते हैं, तो उससे जो आपके बालों में जो स्कैल्प है वो ब्लॉक हो जाते हैं, और डैंड्रफ जो है उसका सामना भी आपको करना पड़ सकता है, और डैंड्रफ की वजह से ही हमारा जो बालों का हेयर फॉल है वो एक्सेस हो जाता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि बालों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उनकी केयर करें, और खाने पीने पे जैसे हमने बोला कि आप खाने पीने की चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो आप बॉडी को देते हैं आपकी जो बॉडी है वो उसी तरीके से रिएक्ट करती है। तो सखियों, बातें फिर से आपसे यूं ही जारी रहेंगी। चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा नगमा।

0: का कुछ तो जवाब दोगी ना।
1: तो सखियों, अभी आप सुन रहे थे हम दिल दे चुके सनम फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज़ें दी थी हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति ने। सखियों, अगर हम बात करें हमारे जीवन के प्रति हमारा क्या नज़रिया है खुद को लेके, कभी हम खुद के अंदर ये झांक के देखते हैं कि हम किस तरीके से खुद के प्रति या फिर दूसरों के प्रति ईमानदार रहते हैं। तो अपने जीवन के प्रति ईमानदार रहना और लोगों के प्रति भी ईमानदारी बना के रखना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि अपनी आप जितनी भी जो गलतियां होती है, क्योंकि गलतियां सखियों सबसे होती है, तो अपनी गलतियों को स्वीकार करना और अपनी गलतियों से सीखना ये बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से आप अपनी गलतियों को छुपाते नहीं हैं उनसे, बल्कि सीखते हैं। और अपने रिश्तों में किस तरीके से आप बहुत ही पॉजिटिविटी साथ में लेके चलते हैं, रिश्तों को किस तरीके से आप साथ में लेके चलते हैं। क्योंकि जब आप झूठ या धोखे के बोझ से मुक्त होते हैं तो आपको एक जो मानसिक सुकून है सखियों वो मिलता है। तो हमेशा अपने अंदर का जो मानसिक सुकून है उसको आप ढूंढने की कोशिश करें, इसलिए स्वयं की तलाश करना सखियों बहुत ज़रूरी है। तो खुद को समय दें, समय बहुत ज़रूरी चीज़ है। अपने लिए अपने बिजी शेड्यूल से आप टाइम निकालें, चाहे वो रोज़ एक घंटे का या आधे घंटे का ही क्यों ना हो, लेकिन खुद को टाइम दें, खुद पे वर्क करें और अपने लिए आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो चीज़ें आप करना चाहते हैं, उन चीज़ों को समय देना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अपने अच्छे जो रिश्ते हैं उनको भी

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगा। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मानसून जल्दी आने की संभावना। और IPL क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना DMK के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। श्री रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में NDA की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर NDA पर विचार विमर्श जारी है। विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया NR कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री

0: मंत्रियों अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
2: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। CBI ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। CBI ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ NDPS अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट UG परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जाँच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह SOG द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत SOG ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के 5वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। IPL क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटन्स ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु ने चीनी ताइपे के तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। 6ठी वरीयता प्राप्त PV सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराओका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया के सेंगमेन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य 4 मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद
सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक

0: की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: इस समय अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी। हमारे प्रसारण एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर उपलब्ध हैं। श्रोताओं, दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं आरोग्यम।
2: आरोग्यम कार्यक्रम की इस श्रृंखला में हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश्वरी धंडी, जो वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर राजेश्वरी जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए।
2: जी श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार अपने कार्यक्रम में कोशिश करते हैं कि आपको स्वास्थ्य से जुड़ी नई नई चीज़ें बताते रहें। और हमारा मकसद बहुत साधारण सा है कि किसी भी तरह से आप, आपके बच्चे, घर में जो बुजुर्ग हैं वो स्वस्थ रहें। तो आज का कार्यक्रम श्रोताओं ज़रा अलग होगा हमारे हर कार्यक्रम से, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों पर। जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर राजेश्वरी जी वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं। हम चाहते हैं कि राजेश्वरी जी से हम जितना हो सके उतना जान पाएं कि इस मौसम में हम अपने नवजात शिशुओं की देखभाल कैसे करें, क्योंकि बड़े ही मासूम होते हैं बच्चे, कुछ कह नहीं पाते हैं, और अगर बच्चा बीमार तो राजेश्वरी जी माँ भी अपने आप बीमार होती है। तो आप बताएं कि किस तरह से नवजात शिशुओं का हमें इस मौसम में, विशेषकर बहुत जबरदस्त प्रचंड गर्मी है, उग्र मौसम है, तो हम कैसे ख्याल रखें
3: इस भीषण गर्मी में। सबसे पहले तो जो माँ को ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि हम जानते हैं कि नवजात शिशु जो होता है वो सिर्फ माँ के दूध पे होता है, उसके अलावा ना हम उन्हें पानी देते हैं ना खाने को कुछ देते हैं। पहले 6 महीने में जो माँ का दूध बच्चे को मिलता है उसमें 80% पानी ही होता है। तो बच्चे को बार बार फीड करवाएं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि वो अच्छा दूध पी रहे हैं, क्या हम पानी पूरा दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं, बच्चा कितना पेशाब करता है, ये बताता है कि बच्चे के शरीर में पानी की मात्रा या माँ के दूध की मात्रा सही है या नहीं है। हर 2 से 3 घंटे में एक पेशाब होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि बच्चे की पानी की आपूर्ति पूरी हो रही है। तो पहली चीज़ कि माँ का दूध समय रहते बार बार पिलाएं। दूसरी चीज़, छोटे बच्चों को जो भीषण गर्मी का मेन समय होता है 12 बजे से 4 बजे, इस तपते तापमान पे घर से बाहर नहीं निकालना है। तीसरा, आप ये ध्यान रख सकते हैं कि बच्चों को हल्के रंग के ढीले ढाले कपड़े पहनाएं, ताकि वो उन कपड़ों में कंफर्टेबल रह सके। अगर किसी इमरजेंसी में 12 से 4 के बीच में बाहर निकलना पड़ता है तो छाता या फिर कुछ ऐसे कपड़े जिससे आप बच्चों को अच्छे से ढक सकें,
2: सूती कपड़ा,
3: बिल्कुल उनसे ढक के बाहर निकले। इस समय में कभी भी बच्चों को पार्किंग एरिया में गाड़ियों में ना छोड़ें। कई पेरेंट्स होते हैं, फादर सोचते हैं कि मैं शॉप पे जाके कुछ खरीद आऊं, 5 मिनट के लिए मदर और बच्चा गाड़ी में ही रह जाए। ये वो समय होता है जिस समय पे बच्चे को लू लगती है। तो बस मेन यही प्रिकॉशंस है,
2: क्योंकि हम जानते हैं कि हीट स्ट्रोक का जो हम एकदम अलग अलग रूप में पढ़ रहे हैं, गाड़ियां भी ब्लास्ट हो रही है, घर में एसी ब्लास्ट हो रहे हैं, और गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में जनरली बहुत फर्क होता है। तो जब हम एसी कार में एसी ऑन होता है, हम उससे निकल के बाहर जाते हैं, हम कितना भी प्रोटेक्ट करें, ऑल ऑफ सडन बच्चा बीमार पड़ जाता है। तो उसके लिए सिर्फ कवर करना ही इनफ है, या कुछ टेम्परेचर भी होना चाहिए कि इस टेम्परेचर पे ही हमारा घर का, अगर हम एसी यूज करते हैं रहे
3: जी।
2: तो कुछ ऐसा आप सजेस्ट करेंगे?
3: टेम्परेचर डिफरेंस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज होता है लू लगने का। एकदम से ठंडे मौसम से गर्म मौसम में जाना, गर्म से ठंडे में आना, एकदम से ठंडा पानी पीना, ये सब वजह हो सकता है लू लगने की। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि आप अपने घर के तापमान को 26 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रखें। एसी का टेम्परेचर ऐसा रखें, पॉसिबल हो तो रूम के अंदर एक थर्मामीटर होता है जो रूम टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है, अगर आप 26 मेंटेन रखेंगे तो 26 से 36 जो बाहर का तापमान है इसमें स्विच करने में बॉडी उतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करती, वो एडजस्ट कर लेती है। पर टेम्परेचर एकदम से आप 16 डिग्री वाले एसी टेम्परेचर से बाहर 42 डिग्री पे जाएंगे, हाँ, तो ये जो डिफरेंस रहेगा 20 से 25 डिग्री का, ये आपके बॉडी को मेडिकली इस तरह से रिएक्ट करवाएगा जो कि बॉडी बीमार हो जाएगी।
2: तो बहुत सही बात आपने हमें बताई। एक और चीज़ कि हमें इस समय सिर्फ एक छोटे बच्चे को, लगभग 6 माह के बच्चे को माँ के दूध के अलावा किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ऊपर से

0: जो हमारी देसी भाषा में अगर मैं आपको बोलूं गुट्टी देते हैं हम लोग, या कई बार शहद चटाते हैं, क्या इस तरह की जरूरत नहीं होती बच्चे को?
1: बिल्कुल नहीं। जो शहद चटाना है ये हम आजकल लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि उसके अंदर एक क्लोसिडियम सुडोमोनास टाइप का एक बैक्टीरिया होता है जो कि बच्चों को इन्फेक्शन देता है, पेट से रिलेटेड बीमारियां कराता है। जन्म गुट्टी भी पहले के समय पे चलती थी। आजकल जो हम सलाह देते हैं उसमें जन्म से 6 महीने तक माँ के दूध के अलावा सिर्फ विटामिन डी की ड्रॉप्स देनी होती है जो कि 5 बूंद दिन में एक बार देते हैं। वो आप जन्म से बच्चे के पहले जन्म दिवस तक यानी 1 साल तक देंगे। इसके अलावा बिना डॉक्टर की सलाह के गुट्टी वगैरह कुछ नहीं देना है।
0: बहुत सही बात आपने बताई, क्योंकि शहरी अंचल में और विशेषकर ग्रामीण अंचल में अगर हम ऐसी कोई बात करते हैं या महिलाएं मना करती है, तो हमारी जो सास है, माँ है, काकी है, वो कहते हैं हमारे बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ, तुम बहुत एक्स्ट्रा केयर कर रही हो। तो सबसे बड़ी बात यह है श्रोताओं कि हमें डॉक्टर की सलाह पर ही चलना है, क्योंकि हम उन पुरानी चीजों को जो वाकई में जरूरी नहीं है उन्हें अगर हम छोड़ देते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो हो गई राजेश्वरी जी एकदम छोटे बच्चे की बात, नवजात की बात। अगर हम थोड़े से बड़े एज ग्रुप में आए जिसमें बच्चे बड़े नॉटी हो जाते हैं, अगर हम 2 साल से 5 6 साल की बात करें, तो बच्चा सुनता नहीं है हमारी बात, वो घर से बाहर जाएगा ही जाएगा, आप उसको कितना रोकेंगे? तो इस उम्र के बच्चों की खान पान में हम ऐसा क्या मतलब ऐड कर सकते हैं जिससे कम से कम उनकी जो हेल्थ है वो प्रॉपर बनी रहे? घर में तो हम उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, पर कई दफा ऐसा होता है ना, बच्चे जाते आते हैं किसी फैमिली मेंबर के साथ, तो फूड सप्लीमेंट्स क्या होने चाहिए, नॉर्मल फूड में हम क्या ऐड ऑन करें?
1: मैक्सिमम मदर्स से क्या दिक्कत होती है, मदर्स का टारगेट रहता है बच्चे को खाना खिलाना, नाश्ता कराना है, सुबह का खाना खिलाना है, शाम का खाना खिलाना है। किसी के भी माइंडसेट पे ये नहीं होता कि हमें पानी पिलाना है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये तो मैंने भी कभी सोचा नहीं इस बारे में।
1: किसी की भी प्लानिंग में पानी कभी एडिट नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि जो भी इस एज ग्रुप के बच्चे हैं जो चल फिर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, उनकी एक बॉटल फिक्स हो। बिकॉज वो बॉटल जैसे एक बार फिनिश होती है, आधे लीटर की मान लीजिए बॉटल है, तो आप उसको दोबारा रिफिल करेंगे। इस तरीके से आप वॉच कर सकते हैं कि बच्चे ने आज के दिन में कितना
0: कितना
1: पानी
0: पानी?
1: पिया। क्योंकि इस एज ग्रुप के बच्चों के जब भी उनका मन होता है वो यूरिन पास करके खुद आ जाते हैं। उस पर वॉच रखना थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज बहुत सारी मदर्स जो होती है वो ग्रहणी होती है, वो अपने काम में लगी रहती है। बच्चे को बार बार पानी पिलाना, बार बार उसको पेशाब कराना, इन चीज़ों पर नजर रखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो बेटर ये है कि उस बच्चे की खुद की सेपरेट बॉटल हो जिसमें वो पानी लेते रहे। तो पहली चीज़ है पानी, दूसरा चीज़ है फल फ्रूट, क्योंकि फल फ्रूट्स के अंदर भी बहुत अच्छी मात्रा में पानी रहता है। इस मौसम के अंदर जो तरबूज, खरबूजा, इस तरह के फ्रूट्स आते हैं, उसमें लिक्विड क्वांटिटी बहुत अच्छी
0: बहुत अच्छी
1: होती
0: होती
1: है,
0: है।
1: तो उनको लेना भी बॉडी को थोड़ी सी ठंडक देता है। इसके अलावा घर के जो घरेलू चीजें हैं जैसे आम पन्ना हो गया, छाछ हो गई,
0: शिकंजी हो गई,
1: शिकंजी हो गई, साधारण
0: लस्सी,
1: लस्सी, बिल्कुल, ये सब चीजें बच्चे की सेहत को बहुत अच्छा फायदा पहुंचाती है।
0: एक तरबूज को लेकर के विगत कुछ दिनों से हम सुन रहे हैं कि इसे इवनिंग के बाद नहीं खाना चाहिए, या वही सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, तरबूज खाने से, ऐसी कोई भ्रामक जानकारी भी है कि अगर आपने नाइट में खाया तो पॉइजनस रहता है, ऐसा कुछ होता है?
1: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली ये रहता है कि फ्रूट्स का टाइम अगर 5 बजे से पहले का रखेंगे, आइडियली तो क्या है 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना
0: हाँ
1: चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: सूर्यास्त के बाद नियम ये कहता है कि अगर अपने आप को डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देना है तो उसके बाद कुछ मत खाइए। उसमें तरबूज और बाकी हर तरह का खाना आता है। फ्रूट्स को 5 बजे से पहले इसलिए लेना चाहिए क्योंकि 5 बजे के बाद आपका एक आखिरी मील जो रात का डिनर होता है वही रहना चाहिए। उसमें और सुबह के ब्रेकफास्ट में भी 12 से 16 घंटे का गैप रखेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। बाकी तरबूज स्पेसिफिकली कुछ करता है ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही हेल्दी फ्रूट है, अच्छे से लीजिए, दिन में 3 4 बार भी ले सकते हैं इस गर्मी के मौसम में 5 बजे से पहले।
0: हाँ, और अगर बच्चों को हमें खिलाना है तो बेस्ट तो यही कि उन्हें अलग अलग शेप में हम फ्रूट को कट करके देते हैं, जिससे क्रिएटिव वे है एक बच्चों को खाना खिलाने का। और अब अगर हम टीनेजर्स की तरफ आते हैं, क्योंकि टीनेजर्स को भी हैंडल करना आप जानते हैं बहुत ही मुश्किल है, इतना चैलेंजिंग है ना, उनके स्वभाव में जो बदलाव आते हैं, जो आक्रामकता, जो गुस्सा, बॉडी में चेंजेस आते हैं जिसको वो एक्चुअली हैंडल नहीं कर पाते हैं। स्पेशली अगर मैं लड़कियों की बात करती हूँ जो पीरियड्स में होना बहुत जल्दी शुरू हो रही है, आप कुछ ऐसी सलाह देंगे कि हमारे समय से अगर हम आज के समय की बात करें तो लड़कियां बहुत जल्दी पीरियड्स में हो रही हैं, तो क्या ऐसा उनकी लाइफस्टाइल में हम चेंज करें कि अर्ली पीरियड्स को हम थोड़ा सा थोड़ा लेट हम अगर चेंज कर पाए तो?
1: पीरियड्स जो है ये प्योरली हार्मोन से रिलेटेड चीज़ें हैं। बॉडी के हार्मोन जिस तरीके से चेंजेस, बॉडी के हार्मोन्स में जिस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग पीरियड्स प्रीपोन्ड या पोस्टपोन्ड होता है। स्पेशली आप

0: देखेंगे जो गांव की बच्चियां हैं अभी भी उनमें पीरियड्स का टाइम जो है वो नॉर्मल है, अभी भी उनके पीरियड्स 12 to 14 ईयर्स के बीच में आता है। पर जो शहरी बच्चे हैं उनके पीरियड्स बहुत ज़्यादा प्रीपोन्ड हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी 3 दिन पहले मेरे पास एक बच्ची आई थी जिसका 7th बर्थडे के बाद 8th ईयर स्टार्ट हुआ और उसको पीरियड स्टार्ट हो गए।
1: टू अर्ली
0: बिल्कुल। उसके रीज़न क्या है? थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लाइफ, आउटसाइड फूड, एक्टिविटीज़ में जो वो गेम्स वगैरह लेते हैं वो आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई है, वो घर पे रह
1: मोबाइल।
0: के मोबाइल टीवी डिपेंडेंट हो गए, जो कि बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी को कम करते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल बढ़ाते हैं, जो हैप्पी हार्मोन्स है उनके लेवल्स को कम करते हैं। इसी हार्मोनल डिसबैलेंस से अर्ली पीरियड्स आते हैं जिसके लिए कि बच्ची खुद प्रिपेयर नहीं है।
1: नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं है कुछ।
0: बिल्कुल, जैसे मदर्स काउंसलिंग करती है बच्चियों की पीरियड्स के बारे में आफ्टर 10 ईयर, यही प्रैक्टिस है इंडिया के अंदर। 10 साल के बाद बच्ची को मदर्स बताती है कि इस तरीके से बॉडी में
1: थोड़ा
0: बदलाव
1: थोड़ा
0: आ सकता
1: समझाना
0: है।
1: शुरू करते हैं।
0: बिल्कुल, पर अर्ली पीरियड्स में मदर और बच्चा दोनों ही अफेक्ट होता है। तो हम लोग यही कहते हैं कि आप आउटडोर एक्टिविटीज को बढ़ाइए, मोबाइल टीवी इन चीज़ों को कम करिए, घर पे एक अच्छा माहौल रखिए जिसपे बच्चे को पढ़ाई की या किसी और तरह का स्ट्रेस ना हो। तो इन स्ट्रेस वाली चीज़ों को कम करने से पीरियड्स रेगुलर होने के चांसेस रहते हैं।
1: मतलब मेंटल हेल्थ जो है हमारी, उसका तो हम जानते हैं फिजिकल हेल्थ पे बहुत असर रहता है, लेकिन हार्मोन्स और इतनी अर्ली एज में रहता है ये नहीं पता था। तो सबसे अच्छी बात ये है श्रोताओं कि हम जैसे जानती हैं कि स्वस्थ जो मस्तिष्क है वो स्वस्थ शरीर में निवास करता है, लेकिन स्वस्थ शरीर रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा एनवायरमेंट बहुत अच्छा हो, हमारा वातावरण बहुत अच्छा हो। तो हम कोशिश करें कि अपनी बच्चियों को समय से पूर्व परिपक्व ना होने दें, क्योंकि ये जो प्री मैच्योरिटी वाली कंडीशन है ये थोड़ी डेंजरस होती है। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता है, सही गलत का जो दायरा है वो समझ नहीं पाते हैं, पेरेंट की बात सुनना नहीं, बाहर की चीज़ों से ज़्यादा अफेक्टेड होना, ये सारी चीज़ें होती है। और टीनेज का फूड भी मुझे लगता है राजेश्वरी जी थोड़ा सा अलग होना ही चाहिए, क्योंकि शरीर में बहुत चेंजेस आते हैं। तो बॉयज और गर्ल्स दोनों की डाइट में क्या हमें ज़्यादा ऐड करना चाहिए?
0: एज सच बॉयज एंड गर्ल्स दोनों सेम डाइट ले सकते हैं टीनेज में, ये एक बढ़ती हुई बॉडी होती है। एज ब्रेन का विकास जितना होना था वो 3 to 4 ईयर्स तक हो चुका है, अब बॉडी के अंदर हाइट, वेट, बोन का ग्रोथ ये सब रहता है, इसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। जैसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब कुछ बैलेंस में जाना चाहिए, पर एक मदर ये सब कैलकुलेट नहीं कर सकती।
1: नहीं कर पाते।
0: हाँ, तो कई बार हम लोग ये बोलते हैं कि अगर एज के अकॉर्डिंग उस बच्चे की हाइट एंड वेट अच्छा है तो जो आप खिला रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, और जिन बच्चों का एज के अकॉर्डिंग हाइट एंड वेट कम होता है उनको हम न्यूट्रिशन की एडवाइस देते हैं, जिसके अंदर एटलीस्ट 2 टाइम्स अ डे आप दूध पिलाइए, ग्लास भर के एक अच्छा खासा दूध हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। आजकल मार्केट में जो बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स इन सब की जरूरत नहीं है,
1: नेचुरली दूध को दिया
0: बिल्कुल
1: गया
0: आप
1: आपने।
0: प्योर दूध दीजिए। आपको लगता है कि बच्चे की एनर्जी थोड़ी कम है तो आप जो प्योर ड्राई फ्रूट्स आते हैं आप उनका मिक्स करके एक पाउडर बना सकते हैं, जैसे बादाम हो गया, काजू हो गया, अखरोट हो गया, इन सबको आप लीजिए, इसका एक पाउडर बनाइए, इसी का एक एक चम्मच सुबह शाम दूध में मिक्स करके लीजिए। इसके अलावा जो हमारा इंडियन फूड है जिसमें एक सब्जी रहती है, चपाती के ऊपर घी रहता है, एक दाल रहती है, हल्के से चावल और हल्का सा सलाद, इसके साथ दही या छाछ जो आप ऐड करना चाहें, मॉर्निंग इवनिंग दोनों के मील में आप सेम फूड दे सकते हैं, जिसमें इवनिंग मील में आप दही हटा लीजिए ताकि ठंडी तासीर की कोई चीज़ ना आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा इवनिंग में बच्चों को 5 बजे के आसपास आपको एक स्नैक देना है जिसके अंदर आप फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स कुछ भी दे सकते हैं। तो ये इंडियन मील ही ऐसा है कि अगर आप टाइमली फूड दे रहे हैं तो इस एज के टीनेजर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होगी, और से नो टू आउटसाइड फूड जो कि आजकल की
1: मुश्किल रहता
0: प्रैक्टिस
1: है ना।
0: है। आजकल के बच्चे मैगी, पास्ता, बाहर के खाने पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, कोशिश करिए बिल्कुल ना दें। और आप चाहें तो मंथ में एक बार कोई चीट डे बना सकते हैं जिस दिन बच्चे की हैप्पीनेस के लिए आप एक दिन उनको बाहर खिला सकते हैं।
1: क्योंकि जो हम ऑयल की बात भी करते हैं ना, तो घर में तो हम बहुत अच्छा ऑयल यूज़ करते हैं, बाहर जितनी भी चीज़ें आप खा रहे हैं उस सब में गुड क्वालिटी ऑयल तो है ही नहीं, तो वो भी नुकसान पहुंचाता है। पर ये बच्चे बाहर खेलते भी बहुत ज़्यादा हैं, गर्मी सर्दी बारिश ये तो नहीं रुकते हैं, ऐसे में इस मौसम में इनके बीमार होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो एक तो कच्चा प्याज सैलेड ज़्यादा लिक्विड दे सकते हैं, पर अगर जो एक दो केस ऐसे मैंने देखे भी थे कि इंस्टेंट बच्चा लू की चपेट में आया और डेथ हो गई, मतलब इस लेवल पे उसको लू लगी है, तो उससे बचने के लिए कुछ ऐसी टेम्प्रेरी चीज़ें या कुछ मेडिसिन होती हैं कि जब

0: हम हॉस्पिटल पहुंचे या हम थोड़ा बहुत घर पे ही ठीक कर पाए बच्चे को?
1: बिल्कुल होती है। जैसे लू लगना जो एक कंडीशन है, इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे सिंपल कैटेगरी फर्स्ट ग्रुप जो होता है डिहाइड्रेशन, सेकेंड कैटेगरी को हम हीट एग्जॉशन बोलते हैं, सबसे लास्ट कैटेगरी को हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं। फर्स्ट कंडीशन जो कि डिहाइड्रेशन है, उसमें बच्चे को सिर्फ प्यास लगना शुरू होता है, यूरिन का कलर येलो हो जाता है, हल्का सा हेडेक महसूस होता है। ये जो स्टेज है, ये घरेलू उपायों से ठीक हो सकती है। कैसे ठीक हो सकती है? पानी की मात्रा एक्स्ट्रा कर दीजिए, तापमान नॉर्मल तापमान में बच्चा रहे, और ज़्यादा गर्मी में एक्सपोजर ना हो, और जो ठंडी पट्टी होती है वो आप सर पे, अंडर आर्म्स, इन जगहों पे कर सकते हैं। बच्चे को लिटा दे, पैर का हिस्सा ऊपर कर ले, सर हल्का सा नीचे कर ले, ताकि ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो जाए और बच्चा एक्टिव हो जाए, बेहोश ना हो। सेकेंड जो इसका स्टेज है, जिसको कि हम हीट एग्जॉशन बोल रहे हैं, कि थोड़ा सा डिहाइड्रेशन से सिवियर होता है, जिसके अंदर बहुत ही एक्सेस में पसीना आने लगता है, हाथ पांव ठंडे पड़ने लगते हैं, घबराहट होने लगती है, नौजिया वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन लगता है, कई लोगों को चक्कर शुरू हो जाते हैं। ये सेकेंड स्टेज जो है, ये बॉर्डरलाइन स्टेज होती है, जिसका इनिशियल ट्रीटमेंट आप घर पे करिए और जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच जाइए। घरेलू ट्रीटमेंट जैसा बोला, छाया वाले एरिया पे ले जाइए, लिटा दीजिए, पैर का हिस्सा ऊपर करिए, कुछ पिला सकते हैं पिलाइए,
0: ठंडक में रखिए,
1: हाँ, और कोल्ड स्पॉन्जिंग करिए, आसपास फैन है, पंखा है तो पंखा चला दीजिए। इसका जो सबसे लास्ट स्टेज है हीट स्ट्रोक, जो कि सबसे डेंजरस है, जानलेवा है। इसके अंदर जो लक्षण आते हैं वो क्या होते हैं? अब पसीना सूख जाता है, पानी इतना कम हो चुका है कि पसीना खत्म हो चुका है, आपकी स्किन जो है वो रेड हॉट हो चुकी है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो चुका है, बेहोश होके गिर गया है, कई मरीज मिर्गी के साथ भी आते हैं। जी,
0: ये इसी का एक कारण है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, जब हीट स्ट्रोक में टेम्परेचर जो है वो 104 क्रॉस कर जाता है और पेशेंट बेहोश होके गिर जाता है, बॉडी में पानी ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तो उस ग्लूकोज की कमी की वजह से कई मरीजों को मिर्गी आती है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसमें आपको तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करना है। अब जब तक आप हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, तब तक आप सेम चीजें दोहरा सकते हैं, सर का हिस्सा नीचे वगैरह करना, पर एक बेहोश आदमी के मुंह में पानी कभी नहीं देना है।
0: अच्छा, जनरली ये मुझे भी नहीं पता था, हम सिंपली पानी देते हैं ताकि वो होश में आए।
1: बिकॉज कुछ दिन पहले हमारे पास एक 14 साल के बच्चे को लाया गया था, जो कि धूप की वजह से बेहोश हुआ था, उसको मिर्गी भी आई थी, पर घर वाले जब तक यहाँ लेके आए, लगातार उसके मुंह में पानी डाल रहे थे, जो कि बच्चा होश में था नहीं, वो निकल नहीं पाया और वो फेफड़े की तरफ गया, तो हमें लू के साथ साथ उसके फेफड़े वाले निमोनिया को भी ट्रीट करना पड़ा। तो अनकॉन्शियस बेहोश लोगों को मुंह से पानी देने की कोशिश कभी ना करें।
0: तो बहुत अच्छी बात हमें श्रोताओं डॉक्टर राजेश्वरी जी ने बताई, क्योंकि ये सामान्यतः एक ऐसी चीज है जो हम सभी करते हैं। हमें लगता है कि अगर व्यक्ति बेहोश है या लिटिल बिट डिजीनेस है, तो हम पानी उसके मुंह पे छिड़केंगे, शरीर पे डालेंगे और उसको जबरदस्ती पिलाएंगे, तो क्या पता वो उठ जाए। लेकिन हम नहीं जानते कि इसका इतना खतरनाक प्रभाव हो सकता है कि वो पानी बच्चे को डाइजेस्ट ना हो और वो फेफड़ों में पहुंच जाए, तो एक के साथ दूसरी बीमारी भी आ सकती है। तो बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया। एक और डॉक्टर राजेश्वरी जी, एक बहुत कॉमन सी एक समस्या होती है, वो ये होती है कि इस समय में महिलाएं हो तो क्या, पुरुष हो या इस उम्र के बच्चे हो, उन्हें कई बार समझ नहीं आता है कि उनकी बॉडी रिएक्ट क्या कर रही है। बस उनको एक तनाव सा फील हो रहा है, यानी कि उनकी नसों में खिंचाव फील होता है, घबराहट होती है, चक्कर जैसा बार बार लगता है, तो ये सिचुएशन कौन सी सेकंड कैटेगरी में आ रही है?
1: जहाँ पे घबराहट और चक्कर शुरू हो गए, वो सेकंड कैटेगरी में शिफ्ट हो गया, जिसमें कि इनिशियल टाइम पे आप घरेलू इलाज ले सकते हैं, पर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।
0: तो बीपी लो भी इसी समय होना शुरू होता है, ऑक्सीजन की कमी और, तो हम अपने खान पान के द्वारा, थोड़ी बहुत दवाइयों के द्वारा, और मुझे लगता है अपना रूटीन हमें अच्छा सेट करना चाहिए। तो रूटीन में क्या योगा और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, क्या ये बेनिफिशियल है इस मौसम में?
1: बिल्कुल, सुबह उठते ही आपकी जो भी आपका रूटीन है, जैसे कई लेडीज होती है जो अपने बच्चों को स्कूल वगैरह भेजती है, उस नॉर्मल रूटीन से फ्री होके आप सबसे पहले एक गुनगुना पानी के अंदर जो भी आप लेना चाहते हैं वो लीजिए, बॉडी को थोड़ा हाइड्रेट करिए, उसके बाद आपको योगा या फिर वॉक, जो आपके डेली रूटीन के अंदर पॉसिबल हो, वो करना चाहिए। उसके बाद डे टाइम में कोई एक्सरसाइज एक्सर्शन नहीं करना है। मॉर्निंग का जो लाइट टाइम है, कम टेम्परेचर का टाइम है, या इवनिंग के 8 बजे का बाद का जो टाइम है, वॉक के लिए इसी टाइम को सेलेक्ट करिए। पूरा दिन आप खुद को हाइड्रेट

0: रखने में और इंडोर एरिया में रहने में ही ध्यान दीजिए
1: क्योंकि टेम्परेचर एक्सट्रीम है। एक जिम के बारे में भी, इस समय बच्चे बहुत जल्दी जिम की तरफ जा रहे हैं, मुझे लगता है शायद हमारी जनरेशन थी वो थोड़ा बाद में जिम की तरफ गई है, अभी तो 13-15 साल के बच्चे जिम में जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि वाकई उनकी बॉडी को इस समय जिम की जरूरत होती है?
2: बिल्कुल नहीं,
1: नहीं।
2: ये जो एज है ये करियर पे फोकस करने की है और आपकी बॉडी को जो है, अगर आप बहुत अच्छा घर का खाना खा रहे हैं और घर पे ही कोई योगा या कसरत या फिर जो बाहर की तरफ आउटडोर गेम्स होते हैं जैसे बैडमिंटन हो गया, रनिंग हो गया, बास्केटबॉल हो गया, अगर आप ये गेम्स खेल रहे हैं तो जिम की कोई जरूरत नहीं है।
1: जिम और प्रोटीन पाउडर लेना, ऐसे सप्लीमेंट्स भी बच्चे बिलो 18 के बच्चे बहुत ज्यादा लेते हैं, तो मुझे लगता है कि ये शायद उनकी एज के लिए नहीं बने हैं लेकिन सिक्स पैक्स बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए। गर्ल्स वेट रिड्यूस करने की पिल्स बहुत ज्यादा लेती हैं या वेट पुट ऑन करने की पिल्स लेती है, क्या बिलो 18 ये सब चीजें ठीक है?
2: बिल्कुल नहीं। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि प्रोटीन पाउडर के सिर्फ बेनिफिट्स आप लोग देख रहे हैं, प्रोटीन जो शेक लोग ले रहे हैं, बड़े लोग ले रहे हैं, वो भी रूटीनली अपना चेकअप करवाते हैं। प्रोटीन जो है वो किडनी के थ्रू पास आउट होता है, तो किडनी के अंदर एक टेस्ट होता है जिसको यूरिक एसिड बोलते हैं, जो कि बहुत ही तेजी से बढ़ता है जब कोई भी इंसान प्रोटीन को रेगुलरली लेता है। तो जिम में जो ट्रेनर्स होते हैं वो भी आपको यही एडवाइस करेंगे कि अगर आप प्रोटीन शेक रेगुलरली ले रहे हैं तो 6 मंथ में या फिर 3 मंथ्स में अपने गुर्दे की जांचें जरूर करवाएं। तो प्रोटीन जो है वो 18 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए नहीं है, उनको नेचुरल प्रोटीन सप्लीमेंट, अगर आप वेजिटेरियन है तो अलग अलग तरह की दालें हो गई, राजमा, छोला, पनीर, ये सब हो गया, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो फिर चिकन, मटन, जो भी चीज़ें होती प्रोटीन सोर्सेज, आपको नेचुरल सोर्सेज पे ही फोकस करना चाहिए।
1: तो इस चकाचौंध भरी दौड़ में जब हम एक से दूसरे को देखे बहुत आकर्षित हो जाते हैं, हम ये नहीं समझते कि सबकी बॉडी बहुत अलग है, हमारी बॉडी उस चीज पे कैसे रिएक्ट करेगी अलग है, और विशेषकर श्रोताओं बच्चों की तरफ अगर हम जाएं तो बच्चों में जो अट्रैक्शन होता है ना वो हर चीज को देखे बहुत ज्यादा होता है, तो हम उन्हें एक शुद्ध सात्विक तरीके से एक पॉजिटिव एनवायरमेंट में उनको ग्रो अप करें बजाय बाहरी चीजों की। बाहरी बाजार बहुत भरे पड़े हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो लेकर के हम खुद को ठीक करें, इससे बेहतर है कि हम पहले ही ठीक रहें। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका अमूल्य समय निकाला बहुत बिजी शेड्यूल के बीच में, और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को आपकी इन तमाम सलाहों से बहुत फायदा होगा, और हम आपसे दोबारा जरूर मिलेंगे, समय समय पर आपसे आपके अमूल्य विचार जानते रहेंगे।
2: थैंक यू सो मच, मुझे भी आज यहाँ पर बात करके बहुत अच्छा लगा,
1: क्योंकि ये जो संदेश है आपका ये पता नहीं कितने घरों तक पहुंचेगा, और एक अच्छा सुझाव, दो अच्छे सुझाव कितनी जिंदगियों को बचा सकते हैं, कुछ दुर्घटना होने से बचा सकते हैं। इसी के साथ आरोग्यम की इस श्रृंखला में मैं प्रीति भाटिया अपनी साथी डॉक्टर राजेश्वरी धंडे के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आरोग्यम कार्यक्रम, प्रसारण हो रहा था रेडियो गोल्डन सिटी से। हमारे प्रसारण एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर उपलब्ध हैं। श्रोताओं, दोपहर के 3 बजे हैं, अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। बने रहिएगा रेडियो गोल्डन सिटी के साथ।

0: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। मंजरी आपको भी सप्रेम नमस्कार। क्या हालचाल?
1: बस सोनाली बिल्कुल हालचाल एकदम ठीक है। और तुमको और हमारे सुनने वाले सभी सखियों और साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और मुझे लगता है सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ मस्त और खुश होंगे और सब इंतजार भी कर रहे हैं कि आज सोनाली और मंजरी बहुत दिनों बाद मिले हैं सखी सहेली मंच पर और ये इतनी सारी बातें लेकर के आई हैं, तो देखते हैं ये लोग क्या क्या करते हैं है ना। तो इशारे तो समझ ही रहे हैं ना कि सब लोग भी आज कुछ खाने पीने की बात भी होगी,
0: बहुत मजेदार चटपटी चाट का जिक्र होने वाला है।
1: दो आरजे के साथ में दो धुरंधर कुक भी बैठे हुए हैं है ना। कोई किसमें महारत हासिल रखता है, कोई किसमें महारत हासिल रखता है ना सोनाली।
0: बिल्कुल।
1: आज तुम कुछ कहने वाली थी ना कि मतलब गाने सुनाने से पहले कुछ तुम्हारा था।
0: मुझे ना ये गानों की आवाज तो बाद में आएगी, पर ये आपकी जो छन छन छन छन चूड़ी की जो आवाज आ रही है ना, वो बार बार आपके हाथों की तरफ आकर्षित कर रही है कि क्या है इतनी सुंदर चूड़ियां हाथ में पहनी हुई है।
1: एक्सचेंज कर लेते, तुम अपनी मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपनी दे देती है ना।
0: ये बातचीत बाद में करेंगे, पहले हम विषय
1: बता देते। देखो व्यंजन की बात आज करने वाले, तो उसमें भेलपुरी और दाबेली है ना, जिसमें तुम भेलपुरी मेरे लिए बना के नहीं लाई, बोले दाबेली बाद में खिला दूंगी।
0: ये जो ऐसे आइटम होते हैं ना भेलपुरी और दाबेली, ये ऐसे बनाए और तुरंत खाए, बना के लेकर नहीं आ सकते ना इसको।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और शब्द हमारे विचार आपके में हम बात करेंगे आज आत्मविश्वास के ऊपर।
0: जी, जो सबसे जरूरी है हर क्षेत्र में, यानी अगर जिसके पास आत्मविश्वास होगा वो अपनी जो है ना बेहतरीन पेशकश दे सकता है।
1: और इस शब्द पर तो हमारे साथी लिखकर संदेश भेजेंगे और उन्हीं को तो हम पढ़ने वाले हैं ना।
0: और साथ ही साड़ियों का संसार, इसमें आज हम पश्मीना साड़ी के बारे में जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस विषय पर बहुत सारे कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया है।
1: और साथ ही खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं,
0: ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि भाई मंजरी जी आप खाने के लिए जीते हैं सिर्फ जीने के लिए खाते हैं?
1: नहीं भाई, तो मैं तो भाई जीने के लिए खाती हूँ, लेकिन वो इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं ना कि वो सब एक जैसा ही हो जाता है
0: ना भाई। मंजरी जी मैं तो खाने के लिए जीती हूँ है ना, कि मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है इतने अच्छे अच्छे आइटम से, इतने सुंदर से
1: आप मेंटेन है ना
0: ये तो वही तो बात है,
1: इसलिए हमें संतुलन रखना है।
0: हाँ, पौष्टिक खाना खाना है और उसमें अपने स्वाद का भी ध्यान रखना है, वही तो जीवन, उसी में तो जीवन का सही में आनंद है।
1: बिल्कुल आनंद,
0: संतुलन जरूरी है,
1: संतुलन बहुत जरूरी है। और गीतों का भी तो आनंद है ना, तो क्यों ना पहले गीत सुनाते फिर बातें करते हैं।
0: जी, तो सुनते हैं गीत।

तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, ओ चूड़ियां हाथों में पहना के चूड़ियां, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, के मौज बंजारा ले गया, के मौज बंजारा ले गया, ले गया तेरे हाथों में पहना के।

मेरे सामने ही कोई बेगाना, मेरे सामने ही कोई बेगाना, के रूप का नजारा ले गया, के रूप का नजारा ले गया।

0: तो नाम लगा दे जवानी तेरे किस काम की, इसे मेरे ही तो नाम लगा दे जवानी तेरे किस काम की।
1: दिल लेगा कोई मेरा दिल वाला, ये बात नहीं तेरे बस की, बस की।
0: आज हुस्न का जलवा दे दे, आज हुस्न का जलवा दे दे, तो कल से मैं तौबा कर लूं, तो कल से मैं तौबा कर लूं, कर लूं।
1: साल सत्रह संभाला इसी मैंने, वो मैंने साल सत्रह संभाला इसी मैंने, रे ऐसे कैसे तुझे सौंप दूं, रे ऐसे कैसे तुझे सौंप दूं, सौंप लूं।
0: तेरे हाथों में पहना के

0: तेरे होठों से लिपट जाऊं सजनी, मैं सुर्ख का रंग बन के है। तेरे होठों से लिपट जाऊं सजनी, मैं सुर्ख का रंग बन के। गोरा रंग न किसी का होए, गोरा रंग न किसी का होए, के सारा जग भरी हो जाए, के सारा जग भरी हो जाए, हो जाए।
1: सारे जग से निपट लूं अकेली, अकेली सारे जग से।

वो छोड़ो छतरी मिला लो दिल को ना रहो ऐसे तन तन के हाय ना रहो ऐसे तन तन के तेरे घर में।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: तो सोनाली हम लोग बात करने वाले हैं पश्मीना साड़ी के बारे में, है ना।
2: तो कश्मीर चले।
1: बिल्कुल चलते हैं। तो कश्मीरी साड़ियां जिन्हें पश्मीना साड़ियां भी कहा जाता है कश्मीरी ऊनी कपड़े की एक उत्कृष्ट किस्म है जो चार अलग अलग प्रकार की पहाड़ी पशुओं से प्राप्त ऊन से बनाई जाती है। पेशमनी शब्द फारसी शब्द पश्मी नेह से लिया गया है जिसका फारसी में अर्थ ऊन होता है। पश्मीना कपड़ा आमतौर पर कश्मीर में उत्पादित होता है।
2: और ये कपड़ा बेहद आरामदायक और मुलायम होता है। असली पश्मीना कपड़ा इतना नरम और मुलायम होता है कि आसानी से अंगूठी के आर पार जा सकता है। और कश्मीरी साड़ी आमतौर पर सर्दियों के मौसम में पहनी जाती है क्योंकि ये कपड़ा गर्म और हल्का होता है जिससे इसे पहनना और ले जाना बहुत आरामदायक होता है।
1: और पश्मीना और महीन रेशम के मिश्रण से पश्मीना रेशम बनता है। असली पश्मीना साड़ियों में कश्मीरी कढ़ाई की बारीकी कारीगरी होती है जिसे कशीदा कहा जाता है। कश्मीर में साड़ियां बनाने के लिए कई तरह के कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें सबसे आम है पश्मीना साड़ियां। कश्मीरी रेशम की साड़ियां, क्रेप साड़ियां और जॉर्जेट साड़ियां, यानी कितनी खूबसूरत साड़ी। जैसे तुमने कहा ना कि अंगूठी से आर पार हो जाती है, तो सोचो कितनी मुलायम होती होंगी,
2: कितनी पतली होती होंगी ना। और कश्मीरी साड़ियों की उत्पत्ति लगभग 200 वर्ष पूर्व की है और आज भी पश्मीना शॉल फैशनेबल जीवन जीने वाले किसी भी व्यक्ति के वार्डरोब में सबसे पसंदीदा वस्तुओं में से एक होती है। और कश्मीरी साड़ियां कश्मीर की धरती पर हाथ से बुनी जाने वाली एक प्रामाणिक शैली की साड़ियां हैं। और कश्मीरी साड़ी में हमेशा इसकी विशिष्ट कढ़ाई होती है। सटीक रूप से कहें तो हर कश्मीरी साड़ी मूल रूप से कढ़ाई वाली साड़ी होती है। और कश्मीरी साड़ियां खूबसूरत और अनूठी कढ़ाई से सजी होती है जो कश्मीर की पारंपरिक शैली जैसे कि आरी वर्क और तिल्ला कढ़ाई। कश्मीरी साड़ियों में अधिकतर फूलों के डिजाइन दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल। और कश्मीरी साड़ियां अधिकतर हल्के से लेकर गहरे रंग तक कई रंगों में उपलब्ध होती हैं। इनमें से कुछ सबसे अधिक उपयोग की जाने वाले रंग सफेद बेज काला पीला और नीला है। कश्मीरी या पश्मीनी साड़ियां आमतौर पर सादी साड़ियों के रूप में बुनी जाती हैं लेकिन इन्हें बॉर्डर और पल्लू वाली पारंपरिक साड़ियों के समान दिखने के लिए भी बुना जा सकता है।
2: अब जैसे प्लेन स्टाइल यानी प्लेन स्टाइल कश्मीरी साड़ियां चटक रंगों की होती है जिनमें कोई मोटिफ कढ़ाई डिजाइन या प्रिंटिंग नहीं होती। इनमें खास आकर्षण होता है और इनकी सादगी ही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। ये साड़ियां ऑफिस या कार्यस्थल के लिए एकदम सही है। प्लेन कश्मीरी साड़ियां कई रंगों और शेड्स में उपलब्ध हैं जिनमें नेचुरल बेज से लेकर आइवरी सफेद लाल नीला हरा पीला गुलाबी जैसे अन्य रंग भी शामिल होते हैं।
1: और कानी बुनाई कश्मीर घाटी की एक अनूठी बुनाई शैली है जिसका उपयोग कपड़े के विभिन्न रंगों में जटिल और बारीक पैटर्न बुनने के लिए किया जाता है। इसमें बहुत बारीकी से काम किया जाता है और काफी समय लगता है क्योंकि प्रत्येक साड़ी को बुनने में महीनों तक का समय लग सकता है। कानी पश्मीना साड़ियां उत्कृष्ट वस्त्र है और पीढ़ियों तक विरासत के रूप में दी जा सकती हैं। ये भव्य साड़ियां किसी भी औपचारिक अवसर के लिए आदर्श विकल्प हैं, चाहे वो भव्य रात्रि भोज हो, सम्मेलन हो या मनोरंजन पूर्ण समारोह। ये साड़ियां हर जगह शोभा बढ़ाती है। तो सोच लो कितना अच्छा लगता होगा जब महिलाएं साड़ियां ये वाली पश्मीना की साड़ियां पहन के निकलती होंगी तो चार चांद लग जाते होंगे महफिल में, है ना।
2: सचमुच एक जो कशीदा कढ़ाई है ना ये एक अनूठी यहाँ की शैली है जो केवल कश्मीर में ही प्रचलित है। साड़ी पर सुंदर और जटिल पैटर्न बनाने के लिए केवल कुछ ही टाकों का उपयोग किया जाता है। कशीदा कढ़ाई की खास बात यह है कि इसे या तो केवल बॉर्डर या पल्लू पर किया जा सकता है या फिर पूरी साड़ी पर भी किया जा सकता है। एक लोकप्रिय शैली है जिसमें बॉर्डर और पल्लू पर कशीदा कढ़ाई के साथ साथ पूरी साड़ी पर छोटे छोटे डिजाइन बने होते हैं। कशीदा कढ़ाई वाली साड़ियां कला और शिल्प की उत्कृष्ट कृतियां हैं।
1: और सोजनी कश्मीर की एक बहुत

0: मिट्टी कढ़ाई शैली है जिसमें सैटिन स्टिच का उपयोग करके इस पैटर्न को बनाया जाता है और साड़ी के दोनों तरफ कढ़ाई की जा सकती है, यानी कि पूरी भर जाती है ये कढ़ाई आगे पीछे दोनों एक जैसी। इसकी खासियत ये है कि दोनों तरफ अलग अलग रंग भी हो सकते हैं और नहीं भी। सोजनी पहले शाल में बहुत प्रचलित थी लेकिन अब कश्मीरी साड़ियों के डिजाइन में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है।
1: और प्रिंटेड कश्मीरी साड़ियां और पश्मीना सिल्क साड़ियां पारंपरिक प्रिंट में भी उपलब्ध है। इनमें कई प्रकार के प्रिंट मिलते हैं, जैसे साड़ी के पूरे भाग, बॉर्डर, पल्लू पर, बूटी पर प्रिंट, फूलों वाले बॉर्डर और पल्लू, ज्यामितीय बॉर्डर और आदि। और ये प्रिंटेड साड़ियां रेशम में सूती साड़ियों की तरह ही बेहद आकर्षक और आरामदायक होती है और इन्हें कैजुअल और ऑफिस दोनों तरह के मौकों पर पहना जा सकता है।
0: और कश्मीरी साड़ियां दोहरी या बहुरंगी बुनाई के पैटर्न में भी मिलती है। इनमें धारियों के चेक पैटर्न या सादे केंद्र पर मैचिंग बॉर्डर या पल्लू के डिजाइन होते हैं। ये बहुरंगी साड़ियां 100% पश्मीना और पश्मीना सिल्क दोनों में उपलब्ध है और धागे को कंघी करने की प्रक्रिया से सख्त रेशों को नरम रेशों से अलग किया जाता है। फिर चरखे पर, जिसे स्थानीय भाषा में चरखा कहा जाता है, इसे सावधानी पूर्वक हाथ से काटा जाता है। ऊन व्यापारी ताने और बाने के लिए धागे को अलग करते हैं। रंगीन साड़ियों के लिए इस चरण में रंगर या रंग साज की सहायता से ली जाती है। रंगाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऊन के गुच्छों को बॉबिन में बांधा जाता है, फिर उन्हें ताना लगाने के लिए तैयार किया जाता है। इस तरह काफी मेहनत लगती है इन साड़ियों को बनाने के लिए, एक दो महीने का समय लग जाता है, बहुत अच्छी डिजाइन उभर कर आती है। सोनाली, हमारी एक साथी ने कमेंट भी लिखकर भेजा है तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ। साड़ियों का संसार पश्मीना, ये जम्मू कश्मीर में बनाई जाती है, वहां की बहुत ही प्रचलित साड़ी है। अभी कुछ महीने पहले मेरे घर में शादी थी तब मैंने ये साड़ी बारात कार्यक्रम में पहनी थी, क्या बात है। और इसका सिल्क बहुत ही मुलायम होता है, हाथ से फिसलती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। इसके सूट और शॉल भी मिलते हैं। एक पश्मीना साड़ी भी होना चाहिए हमारी वार्डरोब में। बिल्कुल, आपकी वार्डरोब में तो हो गई है, अब हम लोग को सोचना पड़ेगा, है ना।
1: अब हम भी खरीदने वाले हैं, हमारी सखी ने खरीद लिया तो ये हमारी भी जिम्मेदारी कि हमें भी पश्मीना साड़ी खरीदना है।
0: बिल्कुल।
1: बहरहाल गाना सुनना है, सुनते हैं गीत।

कुछ तो हमसे बात करो इन महके गुलजारों में, काश मिर्ची तरी हुए मुझसे ना तुम तो बाबूजी, मुझ गई तो फिर मैं खिलूंगी कभी नहीं कभी।

गई तो फिर न फिरूंगी, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं।

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच पे कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया। वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। इस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जाने कितने

0: तो भाई सोनाली, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा विषय है कि खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। तो हमारे साथियों ने देखो बहुत सारे
1: भर-भर के कमेंट्स लिखे हैं,
0: भर-भर के लिखे हैं कमेंट्स। और देखो मनुष्य के जीवन में भोजन का जो स्थान है ना, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना तो जीवन चलता नहीं है। शरीर के लिए सब चीजों की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन की है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होता ना सोनाली, बल्कि जीवन को चलाने वाली वो शक्ति होती है। अन्न के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम रसोई में सोच ही नहीं सकते कि ये चीज हमारे पास होगी या नहीं होगी, हम सब चीजें खरीद लाते हैं। हमारा यही कारण कि हमारे देश में अन्न को देवता का रूप माना गया है। जब भी हम खाना बनाते हैं तो अन्न के देवता को, देव को याद करते हैं। और देखो पहले के जमाने में क्या होता था कि एक सुबह चाय हो गई, फिर सीधा सादा खाना हो गया, फिर दोपहर की शाम की चाय हो गई, और रात का खाना सादा, सब सादगीपूर्ण था जीवन। उस समय शरीर स्वस्थ भी रहता था, लेकिन
1: बहुत स्वस्थ रहते थे,
0: और
1: काम कितना करते थे पुराने जमाने के लोग।
0: बहुत लोग, सब घर में चक्की भी चलना है, तो गेहूं भी पछोड़ना है,
1: पानी भरना है, कुएं से पानी निकालना है, कितना सारे काम,
0: बहुत सारे काम थे, तो उसमें फिटनेस रहती थी बॉडी को। लेकिन आज के समय में जो हमारी जीवन हो गया है, भाग दौड़ की जिंदगी जो गई, भोजन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण जो है बदलता जा रहा है, उन्हें स्वाद और दिखावा और फैशन दिखता है, जिसमें भोजन को वास्तविक उद्देश्य को पीछे छोड़ देता है। और इसी कारण ये प्रश्न विचारणीय भी बन गया है सोनाली, कि क्या हम जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है मंजरी, भोजन चाहे जीवन जीने के लिए हो या जीवन भोजन के लिए हो, दोनों ही जरूरी है। वो तो हम अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम उस भोजन को किस नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके शून्य से शिखर तक पहुंच जाते हैं, उनको कह सकते हैं कि जीने के लिए खाते हैं। और कुछ लोग बहुत स्वादिष्ट भोजन करके भी अपने जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पाते, उनको कह सकते हैं कि सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। पर ऐसी बात नहीं है, हम पौष्टिक भोजन भी खा के, यानी खाने के लिए जी सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें जंक फूड खा के ही जीना है। बहुत सारे पौष्टिक हमारे तो हमारे भोजन में, इतने आहार में इतनी पौष्टिकता भरी हुई है।
0: हर सीजन में देखो, हर सीजन की सब्जियां मिलती, हर सीजन के फल मिलते हैं। अगर हम उनको भी खाएंगे ना, हम स्वस्थ रह सकते हैं, जीवन गुजार सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें बहुत फास्ट फूड पर हम जाए, जंक फूड पर जाए, है ना। और हमारे साथी और लिखते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, तब यही जवाब रहेगा, जीने के लिए खाना जरूरी होता है, यानी ईट टू गो, ईट टू लाइव। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन हमारे शरीर का ईंधन है, जो हमें पोषक तत्व देकर उम्र के साथ साथ ऊर्जा और बुद्धि भी बढ़ाता है। अगर खाना स्वाद पर केंद्रित होगा या चटकारे भोजन पर ध्यान केंद्रित होगा, तो पेट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी खाओ जीने के लिए खाओ। एक बात कान से खाने से की भी ये काम की, मतलब कह दूं कि विविध भारती के मधुर गीतों का रस स्वादन सेहत के लिए भी बड़ा फायदेमंद है। आपने बहुत अच्छी सी बात इसमें शामिल कर दी है।
1: एक हमारी सखी ने लिखा है कि कुछ समय पहले तक मैं जो भी मिल जाता था खा लेती थी, कभी यह सोचने का समय नहीं मिला कि जो खा रही हूँ उसमें पोषण है भी नहीं।

0: लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आई तब समझ में आया कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन को ऊर्जा देने का आधार है। और उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर स्वाद के पीछे स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, जबकि सही मायने में हमें जीने के लिए खाना चाहिए, न कि केवल खाने के लिए जीना चाहिए। संतुलित और पौष्टिक भोजन ही स्वस्थ शरीर और शांत मन और अच्छे जीवन की असली पहचान है। अब एक गीत सुन ले।
1: बिल्कुल
0: सुनते हैं गीत।

0: मंचूरियन
1: की रही थी उस गाने में
0: ना, जब अच्छा अच्छा खाना सामने हो ना तो हमारी पायल थिरकने लगती है, पायल बजने लगती है। देखो मैंने एक साथ ही लिखते हैं कि मैं सूरत का रहने वाला हूँ और सूरत का खाना और काशी का डैश डैश फेमस है, सो तो मैं खुले पेट से सबको कहता हूँ कि हाँ मैं चटोरा हूँ, खाने के लिए जीता हूँ। स्वर्ग या नरक में ना जाने खाने को मिले या ना मिले, भगवान को भी लगना चाहिए कि मेरा भेजा बंदा खा पी कर धरती से लौटा है। बहुत इन्होंने हंसने वाले स्माइलीज लगाए हैं। और अगला संदेश क्या है?
1: बहुत सारे हमारे साथी,
0: अच्छा एक साथी और लिखते सुना लिए, हम पढ़ लेते कि पहली बात तो खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, इसलिए खाने के लिए जीना चाहिए, उससे अच्छी सेहत हो रहती है और जब तक स्वस्थ है तब तक जी भर का खाना चाहिए, लेकिन योग और वॉक करना चाहिए।
1: और आप

0: तो सोनाली क्या कमेंट तुम देख रही थी बड़ी देर से?
1: बहुत सुंदर हमारे साथियों ने हमारे कमेंट्स लिखकर भेजे। एक लिखते हैं कि भाई खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं, जो भी हम खाते हैं हमारा जीवन बन जाता है, इसलिए भोजन कृतज्ञता के भाव के साथ खाना चाहिए। कहते हैं कि भोजन के द्वारा हम किसी के दिल तक पहुंच सकते हैं, मतलब भोजन जीवन है। जीने के लिए खाना जीवन का संतुलन सिखाता है, जबकि खाने के लिए जीना अक्सर स्वाद की आदत बन जाता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि शरीर को ऊर्जा, मन को संतोष और रिश्तों को मिठास देने वाला माध्यम है। स्वाद जीवन का आनंद है, लेकिन स्वास्थ्य उसकी असली पूंजी है। इसलिए शायद सही बात यही है कि हम ऐसा खाएं जो जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित बनाए, क्योंकि अच्छा जीवन केवल स्वाद से नहीं, अच्छे स्वास्थ्य और सुकून से भी बनता है।
0: क्या
1: बात है, बहुत सुंदर बात।
0: हमारे साथी लिखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग खाने के लिए जीते हैं, और जब समझ में आता है कि जीने के लिए समतौल खाना जरूरी, तब तक वक्त निकल चुका होता है। इसलिए जीवन करी जीविता, अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोहे, जानीजे यज्ञ कर्म। ये बात सही पर सही समय पर जान लो। अर्थ है इसका कि शरीर का यज्ञ शुरू रहने की समाधि यानी खाना होता है, ये बात पहचान लो। बहुत सुंदर सी बात आपने लिखकर भेजी है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि जीने के लिए खाना एक जैविक और तार्किक आवश्यकता है, जबकि खाने के लिए जीना जीवन के रंगों और खुशियों का आनंद लेने का तरीका है। एक स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए अनिवार्य है कि हम जीने के लिए खाएं, लेकिन कभी कभी खाने का आनंद इस तरह से ले मानो हम उसी के लिए जी रहे हैं। सोनाली, किस्सा मुझे याद आ गया कि जिम में हमने देखा कि सीढ़ी पे चढ़ के खिड़की थी, तो वहां खिड़की के पास स्पेस था, तो एक लड़की काफी हैवी थी, वो चढ़ी वहां बैठ गई और बैग से निकाल के उसने बर्गर लेके आई थी और अंकल चिप्स थे उसके, चिप्स थे और ठंडा कोल्ड ड्रिंक थी, तो बस वो उसके साथ बैठ के खा पी रही थी। मैं चढ़ रही थी, मैंने पूछा कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? कहती भूख बहुत लगी, पहले खा लूं फिर जाके कर लूंगी। तो उसका ये कि वो खाने के लिए जी रही थी। ऐसा लग रहा
1: है खाने के लिए जीना जरूरी है, पर अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो जी पाएंगे ना अच्छे से। तो ऐसा नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही जी सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है। अब देखिए, जैसे हमने भेलपुरी और दाबेली का ऑप्शन दिया है, तो मैं एक उसमें पौष्टिक भेल की भी रेसिपी बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा जंक फूड खा के ही, उसमें भी हम बहुत उसमें हेल्दी ऑप्शन ले सकते हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, जो शरीर के लिए फायदेमंद है वो भोजन नियमित तरीके से खाना चाहिए। सीजनल सब्जी और फल का सेवन करना चाहिए। डब्बाबंद और गैर मौसमी फल सब्जी और अनाज से बचना चाहिए। अपने रहने के एक लिमिटेड दायरे में उगने वाली फसल का उपयोग अधिक करना चाहिए, यानी हम जहाँ रहते हैं वहाँ उगने वाली जो सब्जियां होती हैं, वो फल होते हैं ना, उसे हमें प्राथमिकता देना चाहिए। ऐसा होता है कि हम विदेशी फलों को, विदेशी सब्जियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देने लग गए हैं, वो भी अच्छे हैं, पर जो हमारे हैं, जैसे अब हम बचपन में कितने है ना जाम अमरूद खाते थे, बेर खाते थे, गन्ना खाते थे, तो अब वो बच्चे भूलते जा रहे हैं, पर उनमें भी बहुत ज्यादा विटामिन मिनरल्स मौजूद होते हैं।
0: बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता है कि गन्ने को कैसे मतलब
1: खाया जाता है,
0: चूसा जाता है, क्या किया जाता है, तो नहीं बताना पड़ता है कि भाई गन्ने को चूसना पड़ता है। उन्हें चने के साग का स्वाद नहीं पता है, उन्हें झरबेरी का स्वाद नहीं पता है,
1: तो उन्हें कैसे मालूम होगा? हमने ही नहीं बताया।
0: हाँ, हम नहीं बता रहे, हम उन जगह लेके नहीं जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी गलती अपने लोगों की कही जा सकती है। चलो फिर एक संदेश पढ़ लेते हैं। एक साथी लिखते हैं कि शरीर को चलाने के लिए भोजन से जितनी एनर्जी चाहिए उतना भोजन चाहिए ही। कभी कभार भोजन स्वादिष्ट होने के साथ होने के कारण कुछ ही ज्यादा खा लिया जाता है, तो पेट में तकलीफ हो जाती है, इसलिए भोजन को एक लिमिट में ही करना चाहिए। और एक हमारा संदेश है सोनाली, उन्होंने थोड़ा इंग्लिश में लिखा है कि ज्यादातर

0: तो सभी सभी जीने के लिए ही खाते हैं। वैसे भी आजकल तो नाप तौल का खाना होता है, ये मत खाओ वो नुकसान करेगा, इस तरह की बातें नहीं लिखी हैं। और हम अपने साथी से कहेंगे कि हिंदी में ही संदेश लिखे तो ज्यादा अच्छा रहता है। वैसे
1: पढ़ने
0: मैंने
1: में
0: आपका
1: दिक्कत
0: पढ़
1: नहीं
0: लिया,
1: आती है
0: हाँ वो
1: ना।
0: इजिली सी आंखों में अटैक कर जाता है, हालांकि मैंने इनका संदेश पढ़ लिया है,
1: एक
0: इसको लिख
1: हमारे
0: सकते हैं।
1: साथी लिखते हैं, मंजरी, खाने के लिए जीना है दृष्टिकोण भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन के परम आनंद और उत्सव के रूप में देखता है। भोजन के स्वाद, विविधता और उससे मिलने वाली मानसिक संतुष्टि को प्राथमिकता देना, नई संस्कृतियों, व्यंजनों और स्वादों को खोजना एक कला है। ये सामाजिक मेलजोल को बढ़ाता है। अच्छा खाना मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करता है जो तनाव कम करने और खुशी देने में मदद करता है। अत्यधिक स्वाद लोलुपता से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, जैसे अपच या वजन बढ़ सकता है।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का पहला विषय बहुत ही रोचक है। मेरा मानना है कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए क्योंकि सादा और पौष्टिक भोजन ही हमें स्वस्थ ऊर्जावान रखता है, लेकिन कभी कभी स्वाद के लिए पसंद का खाना खाने में भी एक अलग ही खुशी है। और अक्सर लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, लेकिन लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए जीने के लिए खाना ही सही मंत्र है। अगर हम खाने पर नियंत्रण रखेंगे तो शरीर हमारा जो है हमेशा साथ देगा। और सुनाली, एक साथी ने हमारे और इंग्लिश में कमेंट लिखकर भेजा है, जब हम खाना खाते हैं तभी तो हम जीते हैं, अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, इसलिए खाना भी जरूरी है और जीना भी जरूरी है। जब तक है जीना जब तक खाएंगे खाना। तो ये बात आपने अच्छी लिखी है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगली बार आपका संदेश हिंदी के शब्दों में आए, है ना। और क्या करें, सुने गीत, सुन लेते हैं गीत।

0: संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं बल्कि रोशनी फैलाना होता है। ठीक वैसे ही जीवन का उद्देश्य केवल खाना नहीं बल्कि अच्छे कर्मों और खुशियों से जीवन को सुंदर बनाना है। इसलिए हमें भोजन का सम्मान करते हुए संयम और संतुलन के साथ जीवन जीना चाहिए।
1: क्या बात है। और हमारे साथी जो है उन्होंने छोटा सा संदेश लिखा है, खाने पीने क्या शर्माना, कम खाओ गम खाओ, सेहत जोरदार शरीर कभी शानदार। और एक साथी लिखते हैं, प्रसिद्ध कहावत का अंग्रेजी अनुवाद है, ईट गो लाइव, ईट टू लाइव और लाइव टू ईट होता है, खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। इस विषय पर कॉलेज में इंग्लिश में निबंध आता था। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है।
0: और एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि हिलियर्ड कहते हैं कि जीने के लिए खाना खाने का मतलब है भोजन को शरीर के लिए ईंधन की तरह मानना। अक्सर इसके विपरीत खाने के लिए जीना वाला दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि आनंद का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से या पूरी तरह से खाने के अनुभव में ही निहित हो जाता है, जो हिलियर्ड के अनुसार आमतौर पर अस्वास्थ्यकर विकल्पों को जन्म देता है।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं, जीने के लिए खाना खाते हैं वो भी घर का बना हुआ स्वादिष्ट वेजिटेरियन फूड, प्राकृतिक सब्जियां, फल और फ्रूट्स। बहुत अच्छी सी बात है, आप बिल्कुल संभाल करके अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। और हमारे सभी साथी भी बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। लेकिन हमारे एक साथी और लिखते हैं कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं बल्कि रोशनी फैलाना है। ठीक वैसे ही जैसे लगता तुमने ये पढ़ा है क्या?
0: ये पढ़ दिया है।
1: इशारे कर दी थी। चलो अच्छी बात है, उनको थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो एक दूसरा कमेंट हम ले लेते हैं सोनाली। खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं, भाई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इससे हर एक का ही स्वास्थ्य प्रभावित हुआ करता है। जो लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं वही खाने के लिए जीते हैं, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वे अपनी जीवा पर लोलुपता पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इसलिए विपरीत, जो लोग खाने के लिए जीते हैं खाते हैं, वे सुस्वाद भोजन के साथ ही षडश युक्त संतुलित भोजन के लिए सेहतमंद और आनंद में रहते हैं। मैं तुम्हारी आंखों में देखती जा रही थी पढ़ते पढ़ते कि कहीं तुमने इसको भी तो नहीं पढ़ लिया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है श्रोता भाइयों कि लगता है कि हाँ ये नहीं पढ़ा, तो पता चलता है दूसरा इशारा कर रहा होता है ना।
0: ये टेक्नोलॉजी में ऐसे ना थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है,
1: लेकिन इसमें मजा आता है जिसको लगे मैं दोबारा पढ़ लिया।
0: और अगर हमने गलती को है ना, अपनी गलती को भी आत्मविश्वास के साथ बोल दिया कि हाँ हमने गलती कर ली,
1: तो
0: वो आत्मविश्वास भी अच्छा लगता है ना। आज ये शब्द हमारा विचार आपके इस विषय में, हमारा विषय है आत्मविश्वास। हमारे साथियों ने भी बहुत भर भर के कमेंट्स लिखे हैं आत्मविश्वास। वो सचमुच मंजरी आत्मविश्वास जो ऐसी ऐसा शब्द है ना, अगर हम उसे अपना ले, यानी कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, हम जो कितने भी कठिन से कठिन काम हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, फिर वो कोई कला है, उसके बाद में कोई भी प्रस्तुति है, अगर वो प्रस्तुति में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो भी चलेगा, पर उसमें अगर आत्मविश्वास होगा तो वो कला दिल को छू जाती है।
1: बिल्कुल, हमारे साथी लिखते हैं इसी बात पर कि आत्मविश्वास शब्द में ही इसका अर्थ शामिल है। आत्म यानी खुद पर, विश्वास मतलब भरोसा, अंग्रेजी में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। इसे अगर परिभाषित किया जाए तो जिन्हें हम अपनी अक्षमताओं, कौशलों और निर्णय लेने की क्षमता पर अटूट भरोसा हो, वो आत्मविश्वासी कहा जा सकता है। जो बिना डर हर चुनौती को सामना कर सकता है, बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस बात पर गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन करे तो हम कोई भी जगह जा सकते हैं, कोई भी कठिन कार्य कर सकते हैं। बहुत सुंदर सी बात की आपने।
0: एक हमारे सखी ने लिखा है कि अपनी असफलताओं पर ना डरते हुए अपने काम पर भरोसा, सही मायने यही आत्मविश्वास होता है। अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और निर्णयों पर अटूट भरोसा है, ना कि केवल अहंकार। ये अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करते हुए जीवन की चुनौतियों का सामना करने की सकारात्मक मानसिक स्थिति है। ये डर को दूर कर सत्य और आंतरिक शक्ति पर विश्वास करने का नाम है। मन में विश्वास, हम होंगे कामयाब।
1: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास से विवेक बुद्धि को बल मिलता है, वो मैं पूर्ण आत्मविश्वास से भर कर कार्य करता हूँ, जहाँ मुझे सफलता भी मिलती है। बस कोई काम में आत्मसात से करे, यानी कि आप कोई भी काम करें तो ये मत सोचिए कि हमें इस काम से सफलता मिलेगी, पहले तो ईमानदारी से काम करें, आप आत्मविश्वास से भरें और धैर्य के साथ करें, तो आप हमेशा अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि ये हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं और अपने काम में माहिर होते जाते हैं, तो वही भरोसा हमारे
2: व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बनकर छलकता है। आत्मविश्वास ही वो शक्ति है जो हमारे हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेरा मानना है कि आत्मविश्वास कठिन परिश्रम से आता है। जब हम अपनी

कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारते तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ सकता है। एक हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर, अच्छा आपने पढ़ चुका है ये भी कमेंट्स आप पढ़ चुके हैं, और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस विषय पर और भी कमेंट्स लिखे हैं, तो उससे पहले गाना सुनिए, सुनवाते हैं गीत।

0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी कि व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास सफलता की वो सीढ़ी है जिस पर चलकर व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। जब स्वयं पर भरोसा होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि मुझे सब पता है, इसका मतलब पता ना होने पर भी सीख लूंगा। आत्मविश्वास कभी शोर नहीं करता, वो शांति और धैर्य के साथ अपना काम करता है। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं जो एक दिन में प्राप्त किया जा सकता है, ये हर रोज खुद से छोटे छोटे वादे करके उन्हें निभाने से ही आता है। क्या बात है,
1: बहुत सुंदर विचार। इतनी सारी बातें करने के बाद तो अब चलते हैं व्यंजन की ओर जिसमें मुझे मिल गई है कच्ची दाबेली की रेसिपी।
0: तो
1: हमारे साथियों ने भेजी, तो हम इसको पढ़ते हैं कि पहले मसाला तैयार कर लीजिए। दाबेली मसाला घर पर बनाने के लिए धनिया, जीरा, सौंफ, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता और सूखे नारियल को भूनकर पीसकर तैयार कर लीजिए, मतलब अपने अंदाज से लीजिए सामग्री। सामग्री आगे लिखी इन्होंने कि जो आलू का मसाला, 4-5 उबले और मैश किए हुए आलू, दाबेली का मसाला जो स्पेशली लिया जाता है जो पहले से तैयार किया था वो 2-3 बड़े चम्मच लेना है, जो हमने पहले बताया था वो दाबेली का मसाला था। अब चटनी, इसके लिए आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी और लहसुन लाल मिर्च की तीखी चटनी। स्टफिंग के लिए बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला वाली मूंगफली, बारीक सेव और अन्य में लिखा है 6-8 पाव मक्खन या

0: ही हरा धनिया। और इसकी विधि लिखी है कि स्टफिंग तैयार करें, एक कढ़ाई में तेल गरम करें, इसमें दाबेली मसाला, थोड़ा सा पानी और इमली की चटनी डालकर मिलाएं। अब मैश किए हुए आलू और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाइए। मिश्रण को गीला और मसालेदार रखना है। प्लेटिंग के लिए तैयार आलू के मिश्रण को एक थाली में फैलाएं, ऊपर से बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला, मूंगफली, हरा धनिया और ढेर सारी बारीक सेब डालें। दाबेली असेंबल करें, पाव को बीच में काटें और पूरी तरह से अलग न करें। एक तरफ से तीखी चटनी, दूसरी तरफ से मीठी चटनी लगाएं और भरें। बीच में एक बड़े चम्मच तैयार आलू का मसाला भरें, ऊपर से थोड़ा सा अनार, प्याज और मूंगफली डालें और एक तवे पर मक्खन या घी गर्म करें और दाबेली को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लें। गर्मा गर्म दाबेली आप खाएं, हमको खिलाएं, सबको खिलाएं।
1: और अभी छुट्टियों का मौसम है तो बच्चों को इस तरह का कुछ चटपटा बना के खिलाते हैं, बच्चे अच्छा बड़े खुश हो जाते हैं ना, और उन्हें उन्हें उनकी हेल्प भी ले सकते हैं क्योंकि बनाना जो है आसानी होता है। तवे में सेकते वक्त हम अपने एक साथ खड़े रहें, वरना बच्चों को साथ में लेके हम उन्हें सिखा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। वैसे एक भेलपूरी जो है एक चटपटा भारतीय नाश्ता और चाट का प्रकार है। इसकी जड़ें गुजराती व्यंजनों में से है लेकिन मुख्य रूप से मुंबई की पहचान है। मुंबई के चौपाटी, गिरगांव, जुहू बीच की भेलपूरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी सामग्री इन्होंने बताया है कि मुरमुरा, तली हुई सेव, पापड़ी, कटे हुए उबले आलू, प्याज और काटी हुई हरी मिर्च से बनाया जाता है। इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी और तीखी हरी चटनी मिलाई जाती है। इसका स्वाद बेहद चटपटा होता है और कलकत्ता में से झालमुरी और कर्नाटक में मसाला पूरी है चुरमुरी के नाम से जाना जाता है। वैसे एक मैं पौष्टिक भेल की मैं आपको रेसिपी बताने वाली थी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2-3 मुट्ठे मखाना लेना है, उसे घी में अच्छी तरह सेक लेना है, उसमें उबला हुआ शकरकंद जो है उसके छिलके निकाल के बारीक बारीक छोटी छोटी टुकड़ों में डाल देना, फिर उसमें उबली हुई मूंगफली डालना है और उसमें फिर प्याज, टमाटर और फिर उसमें हरी चटनी, मीठी चटनी, फिर उसमें बारीक कटी हुई ककड़ी भी डाल सकते हैं, उसमें अनारदाना डाल सकते हैं, उसमें चाट मसाला डाल दीजिए और फिर उसमें रागी की सेव डाल दीजिए।
0: क्या बात,
1: और ये पौष्टिक भेल सब कीजिए। हाँ,
0: है ना, खास बात है आपने बताई कि शकरकंद के टुकड़े,
1: हाँ, इन आलू के बदले हम शकरकंद का इस्तेमाल कर सकते हैं और बेसन की सेव के बदले हम उसमें रागी की सेव यूज कर सकते, या फिर खाकरा जो होता है उसको चूरा करके वो डाल दे। तो यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही खुश रह सकते, इस तरह हमें पौष्टिक खाने खा के भी खुश रह सकते,
0: बिल्कुल रह सकते हैं। और साथ में गीत सुने कि कमेंट्स पढ़ोगे,
1: एक कमेंट पढ़ दीजिए।
0: ठीक है, एक हमारे लिखते हैं कि भारत दावेली, कच्ची दावेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है जिसकी उत्पत्ति गुजरात के कच्छ क्षेत्र के मांडवी में हुई थी। ये एक मसालेदार और मीठा नाश्ता है जिसे उबले हुए आलू को एक विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। बहुत सुंदर सी जानकारी दी है। और हमारे साथी लिखते हैं कि देखा तो मिला,
1: दाबेली, कच्ची दाबेली है डबल रोटी, देवनागरी दाबेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है, गुजरात के मांडवी से हुई एक मसालेदार मीठा नाश्ता है और ये जो है उबले हुए आलू को विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसमें हम पाव की जगह पर हम रोटी का इस्तेमाल करें ना, और पैकेट बना के बना सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता
0: है।
1: और आप गीत सुन ले, सुनते हैं गीत।

0: तीर नजरों के चलाना नहीं छोड़ा। ये शिकवा सरकार हजारों बार तुम इसे कर बैठे, नाना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, मगर इकरार तुम इसे कर बैठे,
1: नाना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, नाना करते प्यार तुम

0: सचमुच नाना करते प्यार कर ही बैठते हैं हम खाने की चीजों से, भले ही डॉक्टर कितना भी मना कर दे कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है।
1: अरे आजकल तो देखो ना हमारे सोशल मीडिया पे कितनी सारी रेसिपी बताई जाती है, उसी में डूबे रहते हैं कि अच्छा ये भी बना ले वो भी बना ले और सब ले लेकर अपने पास स्टोर करते जाते हैं।
0: और फिर क्या होता है जब हम मॉल में जाते हैं ना तो उस वक्त हमें आ जाता है अच्छा हाँ हमने वो ना नेट पे ये रेसिपी देखी थी उसमें ये डालना है ये पाउडर डालना है ये सब डालना है और लेकर आते हैं
1: शॉपिंग कर लेते हैं पूरा भर लेते हैं
0: और कभी कभी बनाते भी नहीं है वो पैकेट वैसा ही पड़े पड़े एक्सपायर हो जाता है।
1: देखो हमारे साथी लिखकर बैठते हैं रेसिपी सुनकर नाना करते दावेली बनाकर खा भी बैठे हैं। और एक लिख रहे हैं कि मैं तो रस्ते से जा रहा था भेलपुरी खा रहा था मुझे अच्छी लगी तो मैं क्या करूं। और एक लिखते हैं खाने के लिए जीते या जीने के लिए खाते इस बारे में इंदौरियों से पूछे हर इंदौरी खाने के लिए जीता है, किसी भी कोने में चले जाइए खाने पर भीड़ लगी होती, क्यों ना हो भाई यहाँ नाश्ते खाने की इतनी विविधता जो है वाकई में सही बात है।
0: इंदौर बार बार जाने को जी करता है।
1: और देखो हमारे हर शहर में हमारे देश में कई सारे शहर हैं सबके अलग खान पान है सबका अलग स्वाद है तो जब जहाँ कहीं जाते तो वहाँ का स्वाद खाते हैं। आप चाहे इंदौर चले जाइए चाहे आप लखनऊ चले जाइए चाहे आप गुजरात आ जाइए चाहे महाराष्ट्र आ जाइए राजस्थान चले जाइए और जिसका नाम हमने नहीं लिया उन सभी शहरों में जाइए वहाँ का बढ़िया बढ़िया पंजाब वगैरह सब जगह खा के आइए
0: और खाइए और है ना खूब सारा व्यायाम कीजिए ताकि है ना ये जो खाना जो हमने खाया है वो पच जाएगा और हम स्वस्थ रहेंगे।
1: तो हमारी बातों की जो हमने गप्पे मारी है उनसे लेते हैं विराम, तो सभी से लेते हैं विदा
0: और आप सभी को सोनाली पाठक
1: और वंशी वर्मा का नमस्कार।

0: सखी सहेली।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: नमस्कार श्रोताओ, आज के मेहमान आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
3: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
2: वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ जी।
3: क्या बात है। अच्छा, आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की यात्रा की तरफ अग्रसर है। एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक योगदान रहा है, चेतना का योगदान रहा है आकाशवाणी का, तो 90 बरस की इस यात्रा के बारे में जानकर आपकी क्या कैफियत है और आप क्या कहना चाहते हैं?
2: इस यात्रा का तो कोई भारत में खास तौर से पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से और भाषा के तौर पर जुड़े रखने का इससे अच्छा माध्यम, क्योंकि बाकी जो संचार माध्यम है उनमें भाषा, अखबार की बात करें या किताबों की बात करें, टीवी तो खैर बहुत बाद में आया, तो ये आकाशवाणी था जो देश के कोने कोने में, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो मैदान हो, गांव हो, बसा हुआ शहर हो, सब जगह अगर पहुंचती तो आकाशवाणी की ही थी। और एक से दूसरे से जोड़ने का जो काम आकाशवाणी ने किया उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कितने अच्छे ढंग से काम हुआ और हो रहा है।
3: बिल्कुल, अपने बचपन की तरफ अगर लौटे तो रेडियो को आप किस तरह से अपने बचपन में देखते हैं, किस तरह से प्लेस था रेडियो और कितनी सुनहरी यादें आकाशवाणी से जुड़ी है?
2: यूनुस, कमाल की बात यह है कि सारा बचपन जो है वो उस जमाने में और आज के जमाने में तो सोशल मीडिया और जाने क्या कुछ हो गया है, हम लोगों का बचपन रेडियो सुन सुनकर ही बढ़ा। उसमें जो कुछ भी संस्कार आए, सुनने के भी, सीखने के भी, बोलने के भी, समझने के भी, ये सब संस्कार आकाशवाणी ने दिए और जिसको सुनते सुनते कि ये आवाजें कानों को इतनी अच्छी लगती है। फिर फिल्म म्यूजिक की मैं बाद में बात करूंगा
3: जी।
2: जिनको हम सुनते थे, चाहे रेडियो ड्रामा हो, अनाउंसर हो, अनाउंसर उस वक्त जो है वो पूरे शहर में सुपरस्टार हुआ करते थे
3: जी, जी।
2: जिनकी आवाज सुना, आम अनाउंसर, न्यूज रीडर्स, ये सब जो है, तो अगर किसी से कहा जाए कि आप रेडियो में काम करते हैं, अच्छा अनाउंसर है आप, ये अनाउंसर का वो दर्जा था मतलब, और वो पॉपुलरिटी थी, तो मतलब आप स्टेशन

0: डायरेक्टर तो कोई मतलब ही नहीं है,
1: हाँ,
0: जानता ही नहीं आपको
1: जी।
0: लेकिन अगर अनाउंसर है आप, अच्छा तो ये मतलब बड़ी पहचान हुआ करती थी कि आप रेडियो में अनाउंसर है, फिर रेडियो सिंगर होना
1: जी,
0: रेडियो आर्टिस्ट होना, ये बड़ी बात थी। तो हम जब बचपन में सुना करते थे तो जयपुर में मेरा सारा बचपन बीता, तो ये सब हुआ और फिर उसी केंद्र को सुनते सुनते युवाणी इंद्र शुरू शुरू हुआ था
1: जी जी
0: तो जयपुर के जो पहले युवाणी वाला बैच था उसमें हमें सौभाग्य मिला कि हम पार्टिसिपेंट के तौर पर एक
1: चैनल
0: के रूप में, एक ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में ऑडिशन दिया, क्लियर हुए और फिर उसका हिस्सा बने। तो वही युवाणी कार्यक्रम जिसकी शुरुआत ही हम कलाकार थे, पार्टिसिपेंट थे, फिर उसी को हमने एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव उसको प्रोग्राम को संभाला आकाशवाणी ज्वाइन करने के बाद। और फिर जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ ये,
1: हाँ,
0: कि आज मैं विविध भारती में बैठ के ये बात बड़े गर्व से कहना चाह रहा हूँ कि बचपन में फिल्म म्यूजिक और उस जमाने का फिल्म म्यूजिक तो कहना ही क्या
1: जी।
0: तो जिनको जिस चैनल को सुन सुन के वो संगीत सजता, वो सारे कार्यक्रम और बड़ी बड़ी आवाजें, बड़े बड़े संगीतकार, फिल्म म्यूजिक, तो जिन जिनको सुन के हम लोग बड़े हुए विविध भारती चैनल को, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं उसी चैनल में आऊंगा
1: जी,
0: और न सिर्फ आऊंगा
1: बल्कि हेड करेंगे
0: उसका कार्यक्रम का, मतलब मुझे संचालन करने का मौका मिलेगा, उसको निर्धारित करने का मुझे मौका मिलेगा, प्लान करने का मौका मिलेगा और पूरे चैनल को मैं अपने ढंग से चला पाऊंगा, देख पाऊंगा। तो ये मेरा सौभाग्य था कि जिस चैनल को सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ,
1: वाह वाह वाह,
0: उसी चैनल से मैं रिटायर हुआ और अच्छे ढंग से रिटायर हुआ कि मेरी एक अच्छी टीम थी जिसमें यूनुस, एक से एक टेबल मैं क्या नाम लूं, और पूरी अच्छी टीम और उनकी वजह से हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम शुरू कर सके, चला सके और आज भी वो चैनल बहुत पॉपुलर है दुनिया भर का।
1: क्या बात है, मुझे याद आता है आपके साथ काम करने का वो पूरा दौर। कितनी प्यारी आपने बात कही है, युवाणी से आपकी शुरुआत हुई और जयपुर के पहले युवाणी के बैच में आप रहे हैं। न जाने कितने लोगों की यादें ताजा हो गई होंगी, मेरी अपनी खुद की याद इसलिए ताजा हो गई कि मैंने भी अपनी रेडियो की शुरुआत युवाणी से ही की है, तो मुझे जहन में युवाणी की सिग्नेचर ट्यून बजने लगी जिस तरह की वो होती थी। पर क्या ये रेडियो तक का रास्ता आसान था या वो रास्ता बहुत सारे डिबेट्स और कल्चरल एक्टिविटीज से होता हुआ पहुंचा है?
0: हाँ, नेचुरली ये आप एकदम अचानक आकाशवाणी में नहीं जा सकते, तो एक सांस्कृतिक लिटरेरी बैकग्राउंड तो आप में होना ही पड़ेगा,
1: बिल्कुल,
0: उसके बगैर आप आकाशवाणी में एंटर नहीं कर सकते, कम से कम आर्टिस्ट के तौर पर या पार्टिसिपेंट के तौर पर। और उस वक्त तो शर्तें और भी ज्यादा, वो आकाशवाणी का एक तरह से जयपुर आकाशवाणी ड्रामे के मामले में नंबर वन था।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बड़े दिग्गज,
0: बड़े दिग्गज लोग, नंदलाल शर्मा जी, फिर ओम शिवपुरी, ये सब लोग वहां पे,
1: गंगा प्रसाद जी,
0: हाँ हाँ, तो ये सब जिसका मेयर था वो ऐसा था कि पूछे मत। जब हम आकाशवाणी में एंटर, उससे पहले हम लोग रंगमंच, कवि सम्मेलन, साहित्य, ये सब कर चुके थे
1: जी,
0: और कर रहे थे, है ना। तो उसके साथ ये हम ऑडिशन देने गए, उत्तर से सेलेक्ट हुए और पार्टिसिपेंट के तौर पर उसमें हिस्सा लिया। तो ये सफर जो है आकाशवाणी का सफर, पहले मेरा अपना रचनात्मक सफर शुरू हुआ और वो फिर आकाशवाणी के जरिए आगे बढ़ा।
1: ये बहुत ही शानदार बात है। जयपुर में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि रंगमंच और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज में आप शामिल थे, तो रंगमंच की अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताइए।
0: रंगमंच का यूं था कि मैं थोड़ा पारिवारिक पहले बैकग्राउंड बताऊं कि मैं, हमारे परिवार में संगीत का परिवार रहा है, हमारे पिताजी बाकायदा गायक रहे और आकाशवाणी जयपुर के उस वक्त ए ग्रेड आर्टिस्ट में से वो सुगम संगीत के गीत, गजल, ये सब गाना उनका रहा। और न सिर्फ वो गायक थे बल्कि उन्होंने जयपुर में एक राष्ट्रीय तरुण कलाकार परिषद और श्रुति मंडल, ये दो सांस्कृतिक मतलब कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौशल भार्गव साहब के साथ मिलकर खड़ी की, जिसने साल भर में बड़े बड़े कंसर्ट, म्यूजिकल कंसर्ट और बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गुरु, तो इन सबको हमने बचपन से उनको आमने सामने बैठ के सुना, उनके आसपास घूमे, कई लोग हमारे घर भी आए, तो वो माहौल जो था बचपन का, वो सांस्कृतिक माहौल हमें बचपन से मिला।
1: हम यहां एक पल के लिए रुकना चाहता हूं कि जिस किसी को भी आपके बारे में बताएं तो लोग सोचते हैं कि आपका ताल्लुक तो कहीं आंध्रा से होना चाहिए, तो जयपुर से होते हुए लोगों को थोड़ा ताज्जुब होता है इसके बारे में।
0: बिल्कुल सही है, वो नाम से भी बिल्कुल है कि, और ये सही है कि हम लोग मूल रूप से आंध्रा के ही है
1: जी,
0: तेलंगाना के हैं, हमारे पिताजी माताजी सब वहीं के रहे, लेकिन मेरा ननिहाल नागपुर और मेरे पिताजी जो पोस्ट सेंटर ग्राफ्स में डिपार्टमेंट में काम करते थे उनकी पहली पोस्टिंग भी नागपुर में थी, तो मेरा जन्म भी नागपुर में हुआ। लेकिन आंध्रा में हमारा संपर्क लगातार, हम लोग नहीं रहे कभी भी, माताजी पिताजी कभी रहे थे, हम लोग बचपन में कभी शादी ब्याह में गए, साल में एक आध बार घूमने गए, तो आंध्रा, उससे पहले हमारे पिताजी

0: बाद वहां से निकल चुके थे नागपुर, और नागपुर के बाद एक पूरा डिपार्टमेंट पिताजी के सेक्शन का वो जयपुर शिफ्ट हुआ, तो पिताजी जयपुर शिफ्ट हुए। तो हम बहुत बचपन में ही, हम बच्चे लोग जो थे वो जयपुर शिफ्ट हो गए उनके साथ, और फिर मेरी सारी परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब जयपुर हुई। तो ये है आंध्रा और जयपुर का।
1: बिल्कुल, ये मुझे लगा कि ये जरूर इस बात के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो गुलाबी नगरी एक तरह से आपके बनने का शहर, एक बुनियाद का शहर रहा है, और आज भी बहुत सशक्त परंपरा रंगमंच और संगीत की जयपुर में रही है। तो आपके जमाने में वो कौन से कलाकार थे जो रंगमंच में बहुत जबरदस्त तरीके से सक्रिय थे? मुझे लगता है कि ओम शिवपुरी वाला दौर था।
0: ओम शिवपुरी उस वक्त एनएसजी जा चुके थे।
1: ओके,
0: हाँ, और हम उस वक्त छोटे थे और हम लोग रंगमंच में एक्टिंग हुए हुए थे, देख ही रहे थे, सुन ही रहे थे, और एक सीखने का प्रोसेस जारी था
1: जी।
0: तो जो हमारी बचपन की यादें हैं, मतलब शुरुआत की दिनों की यादें हैं, उस वक्त ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी का तुगलक,
1: क्या
0: बात, जो इब्राहिम बलकाजी का डायरेक्ट किया हुआ, वो क्लासिक प्ले था, क्लासिक प्ले, और इन दोनों का जो रोल था, मतलब ये मैं इन्हें कह सकता हूँ कि ये ओम शिवपुरी, उनको फिल्मों में वो जगह नहीं मिली, उनको क्रेडिट नहीं मिला, उनको काम नहीं मिला, जिसके हकदार थे वो दिलीप कुमार थे। वो
1: बिल्कुल
0: रंगमंच के दिलीप कुमार थे, वो क्रेज था उनका, और वो जो अदायगी, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ। तो बचपन से ओम शिवपुरी, सिद्धार्थ शिवपुरी, मोहन महर्षि, ये सब लोग, और दिल्ली से प्लेस बराबर आते रहते थे, हम लोग देखते थे अंधायुग
1: जी,
0: ये सब देखे हमने, और एवं इंद्रजीत, ये सब नाटक जो बादल सरकार के सारे। तो रंगमंच की एक अच्छी खासी परंपरा, जिसमें जयपुर के लोग तो करते ही थे, दिल्ली से भी बड़े बड़े थिएटर ग्रुप, दिल्ली और कलकत्ता के लोग आते थे, थिएटर फेस्टिवल भी होते थे और क्लासिकल म्यूजिक कंसर्ट्स भी होते थे।
1: बिल्कुल, आज जयरंगम जैसी चीजें चल रही हैं, तो कैसा लगता है आपको?
0: बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं गया हूँ उनके एक फेस्टिवल में, और जहां से मकरंद देशपांडे वगैरह हर साल जाते हैं वहां पे टीम लेकर के और प्ले लेके, तो वो एक तरह से थिएटर का माहौल जो है वो रिवाइव कर रहे हैं, और अच्छी ऑडियंस भी आती है वहां पे, और अच्छा चल रहा है मुझे
1: जी। और बातें करेंगे आपके बचपन की, हम यहीं इसी वक्त में थोड़ा ठहरना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जिस दौर की हम बात करें, उस दौर की याद के नाम एक गाना होना चाहिए, तो हाय रे वो दिन क्यों ना आए।
0: हाँ,
1: अनुराधा,
0: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा
1: ये गाना,
0: पसंदीदा गाना।
1: बिल्कुल,

0: हमने ये गाना सुना, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, शैलेंद्र का लिखा, पंडित रविशंकर का स्वरबद्ध किया ये गाना, अनुराधा फिल्म का, ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म थी। उस दौर में फिल्म म्यूजिक और फिल्मों से किस तरह का ताल्लुक था, जयपुर में फिल्में देखने की और टॉकीजों की भी एक बड़ी शानदार सी परंपरा रही है।
1: जयपुर में एक से एक थिएटर थे
0: जी,
1: और उस वक्त ये राज मंदिर, कभी नाम सुनाओ,
0: बिल्कुल
1: तो राज मंदिर मेरे ख्याल से भारत का अकेला ऐसा थिएटर था जो बिल्कुल राज मंदिर, और उसमें वो राज वाला वो भी था
0: जी,
1: शाही अंदाज उसका, तो वो लोग देखने आते थे। फिल्म तो बाद में, थिएटर पहले देखते थे।
0: हाँ, वो टूरिस्ट मैप पर था।
1: वो थिएटर का अपना क्रेज था उसका
0: जी,
1: तो राज मंदिर, जैम, पोलिट्री, ये सब तो उस वक्त फिल्में भी मतलब आज कहीं नहीं, इतने करोड़ उतने करोड़, मतलब 100 दिन चली, ये बड़ी बात होती थी।
0: बिल्कुल
1: है ना, इसने 100 दिन पूरे किए। तो उस वक्त वो जमाना था जब हम लोग फिल्में देखते थे, तो ये सब बड़े बड़े थिएटर थे, और फिल्मों का तो खैर दौर ही अलग था। हम कभी कभी स्कूल से भी भाग के देखा करते थे, ये सब भी होता था
0: जी, ये तो हुआ है, लेकिन स्कूल से भाग के देखना भी हुआ।
1: उपकार जैसी फिल्म हमने देखी थी,
0: वाह,
1: और कई फिल्में थी, और लंबी लंबी लाइनें, और आपको टिकट मिल जाए, बड़ी बात। तो ये वो दौर देखा है हमने, थिएटर में जाकर फिल्म देखना, और स्कूल से भाग के भी देखना, और टिकट के लिए धक्का मुक्की होना, ये सब दौर देखा है। और फिल्म म्यूजिक का तो ये था कि सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट वही था, घर में रेडियो चल रहा है, जी भारती चल रहा है, फिल्मी गाने, कहीं लता जी है, कहीं आशा जी है, कहीं रफी जी है, कहीं मुकेश है, कहीं मन्ना डे है, तो ये सब चलता है। और हमारे क्योंकि संस्कार में म्यूजिक भी था, और म्यूजिक ही था
0: जी,
1: मैं अपने घर में नहाने में सबसे ज्यादा टाइम लेता था।
0: अच्छा, क्योंकि गाना चलता था।
1: गाना चलता नहीं था
0: जी,
1: मैं गाता रहता,
0: खुद गाते था।
1: तो वो घर वाले भी बार बार होते, तो मुझे फिल्मी गानों का शौक
0: जी,
1: गुनगुनाने का शौक बचपन से था। फिर वो संस्कार में ऐसा है कि फिर उसको जुड़े भी बनाने लगा, और बाकायदा परफॉर्म भी करने लगा, वही का अलग दौर। फिल्मी गानों का ये असर फिल्म म्यूजिक का मेरी जिंदगी बहुत पड़ा।
0: क्या बात है, और तब से ही ये गायकी वाला मामला आपका।
1: हाँ, मेरे ख्याल गायकी तो हमारे परिवार में, पिताजी, बड़े भाई साहब आज भी गायक हैं, वो सिखाते भी हैं, तो संगीत और गायकी का एक जो अंग है वो हमारे संस्कार में है। लिखना पढ़ना साहित्य में मैं बाद में आया उस तरह
0: जी। रंगमंच वाली आपकी एक्टिविटीज में वो कौन से नाटक याद आते हैं जिनका यहाँ जिक्र हो जाए?
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया
0: जी,
1: वो एक लड़कपन का दौर था हमारा, मतलब बीए का दौर ही था। हम उम्र लोगों ने हमने एक टीम बनाई, और मैंने उसका नाम दिया ग्रुप का विकल्प
0: जी,
1: वो अभी भी चल रहा है, वो हमारे जो दोस्त है वो चला रहा है, हरी डायर उसका नाम है। तो हम 4 लोगों ने मिलकर एक विकल्प नाम की संस्था बनाई, और उसके साथ मैं लिखता था और डायरेक्ट करता था, और एक आध कभी कभी छोटा मोटा रोल की जरूरत पड़ी तो कर लिया। तो उससे हमने एकांकी से शुरुआत की, और उस वक्त मैं ज्यादातर राजनीतिक व्यंग और पॉलिटिकल सटायर और ह्यूमर, यही मेरा विषय रहा, तो उस पर ज्यादा काम हुआ, और उस तरह के नाटक मैंने लिखे भी। नाम से ही समझ जाओगे कि होशियार समाजवाद आ रहा है,
0: वाह,
1: नेता कुर्सी प्रसाद सिंह,
0: क्या बात है।
1: और एक नाटक जिसको बहुत ज्यादा, जिसके हमने शोज किए, भूमिका, जिसको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी का ड्रामा कॉम्पिटिशन में बेस्ट ड्रामा का अवार्ड भी मिला। और एक नाटक मराठी, क्योंकि हम जिस कॉलोनी में रहते थे तो बहुभाषी कॉलोनी थी, मतलब एक छोटा भारत था वो।
0: हा हा हा,
1: उसमें गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, सिख, मुस्लिम, सब, मतलब कोई भेदभाव ही नहीं था, मतलब आज इस घर में घुस गए, कल उस घर में घुस गए, सब मिलजुल के खेल रहे हैं, होली हो, ईद हो, और गणेशोत्सव हो। तो गणेशोत्सव यहाँ के बाद कई लोगों को पता लगता है गणेशोत्सव क्या है, ये हमें जयपुर में देख चुके हैं,
0: वाह वाह।
1: तो उनकी एक्टिविटीज में शामिल होना, सब कुछ करना, तो मराठी लोगों के साथ उठा बैठा बचपन से रहा, तो मराठी नाटकों का मैंने अनुवाद भी किया।
0: गजब।
1: तो एक नाटक था शाम फड़के का, कॉमेडी, काका की शाचा, जिस पर मराठी में फिल्म भी बनी।
0: हाँ हाँ।
1: तो उसका मैंने कौआ चले हंस की चाल,
0: क्या बात है,
1: इस नाम से किया, और वो जयपुर का पहला नाटक था जो टिकटेड हाउसफुल रहा।
0: वाह।
1: रविंद्र मंच पर टिकटेड हाउसफुल, वो पहला नाटक था जो विकल्प ने किया, हमने किया, और खूब पसंद किया, और उसके बहुत शोज हुए।
0: हम जब असरानी

0: आपके बारे में सुनते हैं तो वो भी काफी रंगमंच पर सक्रिय थे और जयपुर में थे, जयपुर की एक बड़ी शख्सियत रहे, कभी उनसे आमना सामना हुआ उस दौरान?
1: नहीं, मेरा ये रहा कि वो असरानी साहब से बहुत अरसे बाद किसी फंक्शन में यहाँ पे मिलना हुआ।
0: अच्छा,
1: लेकिन उस दौरान में नहीं, तो वो जयपुर से जा चुके थे
0: उस दौरान में जब आप,
1: तो वो तो हमसे काफी से, तो लेकिन उनकी एमआर रोड से पांच बत्ती के पास में सब बताते थे कि ये असरानी साहब के भाई की दुकान है
0: जी,
1: वो उनकी एक कपड़ों की दुकान थी।
0: बिल्कुल।
1: फिर हमारे जो सीनियर पिंचू कपूर, आपने नाम सुना होगा।
0: जी जी बिल्कुल,
1: ओम शिवपुरी, ये सब ये हमारे सीनियर लोग मतलब जो निकल चुके थे हमारे जमाने से पहले ही।
0: हाँ।
1: तो लेकिन इनको सुन सुन के मतलब ये हमारे लिए वो निसार थे कि जयपुर के ये लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया, बड़े लोग थे।
0: क्या प्यारी बात है। अच्छा, जब आप आकाशवाणी से जुड़े और युववाणी करने लगे उस समय भी तो जयपुर आकाशवाणी जो है वो एक बहुत ही बुलंद संगठन था और बहुत बड़े बड़े लोग आकाशवाणी से जुड़े थे। किन हस्तियों के सानिध्य में सीखने को मिला आपको?
1: बहुत बड़े नाम थे और बहुत जयपुर, मैंने कहा ना, नाटक में तो नंबर वन हुआ करता था, हवा महल में मैक्सिमम उसके प्लेस हुआ करते थे, और उसके अलावा वहां पे जो आधा आधा घंटे के या एक एक घंटे के नाटक हुआ करते थे वो कमाल थे। मतलब उसमें नंदलाल शर्मा, आपके नाम सुना होगा,
0: बिल्कुल,
1: गणपत लाल डांगी,
0: हाँ,
1: इनका हवा महल में,
0: आज भी हवा महल में उनके नाटक ब्रॉडकास्ट होते हैं,
1: रंजना चौधरी, तो ये एक से एक नाम थे और एक से एक आर्टिस्ट थे और जिनके प्लेज लोग बहुत पसंद करते और इंतजार करते थे
0: जी। और आकाशवाणी जयपुर जो है वो जयपुर अजमेर था तब भी,
1: हाँ, क्योंकि अजमेर इंडिपेंडेंट स्टेशन नहीं था
0: जी,
1: वो सिर्फ रिले सेंटर था, तो जयपुर अजमेर ही बोला जाता था उसको।
0: अच्छा।
1: और आज भी शायद वही होगा
0: जी,
1: अजमेर सिर्फ रिले सेंटर है, वहां पे कोई रिकॉर्डिंग या उस तरह का इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, अजमेर को लिंक किया हुआ है यह
0: जी। तो आकाशवाणी में नौकरी का रास्ता किस तरह से खुला?
1: हाँ, मैं उस वक्त एक और पहलू भी था मेरा कि मैं एमए मैंने किया ही किया था
0: जी,
1: और मैं उस वक्त ये राजस्थान पत्रिका
0: बहुत ही मशहूर
1: हिंदुस्तान का, उस वक्त राजस्थान का नंबर वन अखबार था हिंदी का, और उसका एक संडे एडिशन शुरू हुआ था
0: जी,
1: वो राजस्थान में पहली बार हुआ था, पता नहीं दिल्ली और जगह होगा, उसका नाम ही इतवारी पत्रिका था, हर इतवार को आता था, उसका नाम रखा था इतवारी पत्रिका। कर्पूर चंद कुलिश साहब राजस्थान पत्रिका के मालिक भी थे और बड़े पत्रकार थे, तो उन्होंने शुरू किया था, उसमें उन्होंने श्री गोपाल पुरोहित उसके संपादक थे और मैं उनके साथ सहायक संपादक के तौर पर लगा। 3 साल मैंने वहां काम किया और वो हर इतवार उसमें कॉलम भी लिखता था, इंटरव्यू भी करता था, ये सब होता रहा। उसी दौरान ये आकाशवाणी की ये वैकेंसी निकली थी यूपीएससी की, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया और संयोग से सेलेक्ट हुआ, यूपीएससी में इंटरव्यू दिया, सब हो गया और पहली पोस्टिंग मेरी आई जलंधर।
0: अच्छा,
1: ये 1980 की बात है।
0: क्या बात है,
1: 19 नवंबर, हाँ, 1980 में, तो पहली पोस्टिंग मेरी जलंधर हुई, मैंने वहां ज्वाइन किया, 1 साल वहां काम किया।
0: तो वहां तो पता चला था कि ये वो स्टेशन है जहां जगजीत सिंह गाया करते थे।
1: हाँ, बिल्कुल सब, और जगजीत सिंह, सुदर्शन फाकीर
0: जी,
1: इन लोगों के नाम से वो
0: ऐतिहासिक स्टेशन है जलंधर,
1: और वहां पे पंजाबी के बड़े बड़े लोग थे, मतलब
0: बिल्कुल
1: पंजाबी राइटर्स, सोहन सिंह मीशा
0: जी,
1: और मतलब ऐसे नाम जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड जिनको मिला, सुरजीत पात्र, ये सब लोग वहां पे मतलब एक्टिव लोग थे, पार्टिसिपेंट के तौर पर आते थे, सुरजीत पात्र लुधियाना से, सब कुछ। तो जलंधर भी उस वक्त पंजाब का जयपुर था, एक तरह से
0: बिल्कुल
1: पंजाब का जयपुर था, वो वहां बड़े अच्छे नाटक, बड़े अच्छे आर्टिस्ट और बहुत एक्टिव शहर था
0: जी।
1: तो मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा और मेरे जो सीनियर थे वो सारे पंजाबी लोग थे, मतलब हिंदी वाला मैं अकेला था वहां पे,
0: हाँ।
1: हिंदी का प्रोग्राम मैं ही संभालता था वहां पे, हिंदी का पैक्स था वहां पे मैं, लेकिन एक से प्रोग्राम पंजाबी ऐसी भाषा थी कि जो समझने में उतनी मुश्किल नहीं थी
0: जी।
1: तो मेरा अच्छा वक्त गुजरा जी।
0: कितने वक्त तक आप जलंधर में रहे?
1: 1 साल
0: जी। और किन हस्तियों से आपका बहुत करीबी ताल्लुक रहा लिटरेचर की?
1: मैंने बताया ना, सोहन सिंह मिश्रा
0: जी,
1: और फिर उर्दू के भी कई लोग थे वहां पे
0: जी,
1: जो सुरजीत पात्र वो उस जमाने में उनसे मिलना हो गया था, जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले हुए,
0: बिल्कुल
1: मिश्रा साहब को मिला।
0: तब तक आपका लिखना शुरू हो चुका था?
1: हाँ, लिखना तो मेरे जयपुर में शुरू हो चुका था
0: जी,
1: लेकिन मैं उस वक्त मैं गीत लिखता था, शुरुआत मेरी मंच से हुई, गीत लिखता भी था, छपते भी थे सब कुछ, और एक गीतकार के तौर पर मैं राजस्थान में जगह जगह कवि सम्मेलन में भी जाया करता था। उदयपुर में जब कवि सम्मेलन हुआ तो पहला जो मेरा बड़ा ब्रेक था या पहचान या आत्मविश्वास जिसे मिला, तो नीरज जी का तो बोलबाला था उस वक्त, गीतों के राजकुमार,
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल, उनके नाम से पूरा क्राउड इकट्ठा होता था, हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे,
0: सुबह तो, तक लोग सुनते हाँ, थे और सबसे तो, लास्ट में उन्हें हाँ, पढ़वाया जाता
1: था जी। और मेरा वो शुरुआती दौर था
0: जी,
1: तो नीरज जी थे वहां पे, वो मुख्य कवि तो थे ही थे, तो मैंने जब वो गीत पढ़ा अपना, तो ये नीरज

0: जी ने आशीर्वाद देने का उनका तरीका था, उन्होंने बहुत प्यार दिया पहचान, और अपने गले की माला मेरे गले में जब मैं पढ़ रहा हूँ तभी आके डाल दी।
1: अरे
0: तो ये एक आशीर्वाद था जो मुझे
1: याद है। क्या वो गीत याद है आपको?
0: हाँ, जो वो मेरे काफी पढ़ाई इधर उधर
1: जी
0: तरन्नुम में सुनाऊं?
1: जरूर सर, जरूर, बिल्कुल स्वागत है।
0: जिंदगी की बस्ती में मुश्किलों का मेला है,
1: वाह।
0: जिंदगी की बस्ती में

0: मुश्किलों का मेला है। अरे नवगीत का शुरू हुआ था ये
1: जी
0: अंत देख, बात क्या करे कोई हाफती हवाओं
1: हाफती हवाओं से
0: से,
1: क्या बात है।
0: बात क्या करे कोई हाफती हवाओं से, कब तलक कटेगी ये जिंदगी दुआओं
1: वाह वाह
0: से,
1: वाह,
0: कब तलक कटेगी ये जिंदगी दुआओं से, दर्द के समंदर में कामना ने ठेला है,
1: कामना ने
0: दर्द
1: ठेला है, क्या बात है, सुंदर प्रयोग है।
0: के

0: क्या बात है, क्या बात है। जाहिर है कि इस रचना से नीरज जी की प्रशंसा तो मिलनी ही थी और ये आपके लिए बहुत यादगार लम्हा रहा हो।
1: बिल्कुल, और एकदम शुरुआती दौर में इतने बड़े हस्ती का आशीर्वाद मिलना और प्रोत्साहन मिलना तो वो एकदम यादगार और बहुत आत्मविश्वास देने वाला लम्हा था, एक सफर को आगे बढ़ाने वाला होता।
0: जब आप घर लौटे इस कवि सम्मेलन के बाद तो क्या पिताजी की कैफियत थी, उन्हें क्या बताया?
1: वो बहुत खुश हुए, लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे पिताजी, मैंने कहा वो गायक थे और संस्था चला थे सब कुछ, लेकिन एक अलग तरह के पिता थे वो, बिल्कुल बहुत कम बोलना, मतलब उनसे हमारा संवाद जो है ना
0: मिनिमम।
1: हमारे नाटक भी देखते थे, आते थे देखते थे, लोग खुश हो रहे हैं तालियां बजा रहे हैं या सब कुछ, ये कभी सलून में भी आते थे कभी, तो वो आके देखा और चले आए घर पे। अखबार में भी कॉलम लिखता था, हर संडे आता था, पढ़ते थे सब कुछ था, लेकिन वो खुद अपनी तरफ से कभी, वो दौर था तो हो सकता है कि आज तक हम अपने बच्चों से दोस्त की तरह से बात करते हैं
0: जी,
1: पिताजी का एक डिस्टेंस हमेशा रखते थे।
0: तो आपके जहन में हमेशा ये सवाल रहता होगा कि अच्छा लगा है कि नहीं, क्या रच चल रहा है मन में,
1: बस वो सूचना जरूर हो। और हमारे संवाद माँ से होता था
0: जी,
1: उनसे खूब मतलब हंसी मजाक बोलना चलना सब, नाराजगी या गुस्सा या सब कुछ पिताजी से घर पे जो था, लेकिन वो खुश तो होते थे, बहुत खुश होते थे, लेकिन वो डायरेक्ट इस तरह से बोलते नहीं, तो
0: वो दौर भी ऐसा था कि पिताओं से संवाद बहुत कम हुआ करता था। माँ की स्मृतियां हमारे साथ बांटिए कि उनसे क्या कुछ आपने सीखा है, आपकी शख्सियत में उनका क्या योगदान है और आपकी कामयाबी उन्हें कितना खुशी दी।
1: बिल्कुल, ये पारिवारिक रूप से अगर देखें तो पिता ने माहौल दिया
0: जी,
1: पिता ने माहौल दिया, मतलब अगर मैं कलाकार बना हूं या कलाकार कला के क्षेत्र में हूं तो वो पिता के संस्कार है। पिता ने जो माहौल दिया बचपन से, अगर आप देखें तो कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी, रविशंकर, बुद्धदेव मुखर्जी, राजन साजन मिश्र, अमजद अली खां,
0: बड़ा
1: कोई नाम लीजिए, कोई नाम लीजिए, जिनको हमने बचपन में आगे
0: बैठे सामने देखा,
1: आमने सामने देखा, उनके आसपास घूमे बैठे, गिरिजा देवी, बेगम अख्तर,
0: बाप रे
1: कोई नाम लीजिए, तो वो सब हमने देखा है और उनके साथ उठे बैठे कई लोग हमारे घर आए है ना, तो ये माहौल पिताजी ने दिया। उसके बगैर हमारे संभव नहीं था कि हम उस दुनिया को देख सकते, इन बड़े लोगों को देख सकते, इन हस्तियों, तो वो उनको सुन सुन के भी संस्कार हुए। संगीत जो है वो इस तरह से भी संस्कार में आता है, एक तो बाकायदा आप गुरु से सीखते हैं और एक सुन के भी सीखते हैं, तो वो हमने उस तरह से सीखा। तो पिताजी ने माहौल दिया, संस्कार दिया, माँ ने जो है वो एक पूरा प्रोटेक्शन कहना चाहिए। मैं बात करूं तो हमारी कॉलोनी में जो मैंने कहा ना, वो एक मिनी भारत था वो
0: जी,
1: लेकिन मेरा बचपन बिल्कुल विपरीत था।

0: मैं अपनी कॉलोनी के चंद शैतान बच्चों में से एक था।
1: ये तो नया खुलासा है हमारे लिए।
0: मतलब खेलना कूदना ही तो सही है ही, सभी बच्चे करते थे पूछे, लेकिन छेड़ने की आदत जो है ना, किसी के साथ भी मजाक कर लेना, किसी को
1: तंग कर लेना,
0: तंग करना या मस्ती करना
1: जी,
0: तो कहीं ना कहीं एक या दूसरे दिन में कोई
1: शिकायत आती थी,
0: शिकायत के पास आती कि आज से क्या। और मेरा बचपन का नाम छोटू था।
1: अच्छा। क्योंकि आप छोटे थे इसलिए।
0: हाँ, मेरे बड़े भाई साहब थे, मैं नंबर दो था
1: जी,
0: तो पहले नाम ऐसे ही रखे जा रहे घरेलू।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: बड़े भाई साहब श्याम और मेरा नाम छोटू
1: जी,
0: तो वो छोटू की शिकायत जो है
1: रोज आ रही है,
0: हर मतलब हर दूसरे दिन, हर दूसरे दिन जो है आज इसने ये किया, आज इसने वो किया, ये सब चलता रहता था। तो वो माँ थी
1: प्रोटेक्शन
0: संभालती थी, और कभी कभी वो पिता तक पहुंच जाती बात। हाँ। पिताजी जिस ढंग से पेश आते थे वो तो वो
1: उसका जिक्र ना ही करें।
0: तो ये एक अच्छा बचपन बीता, और माँ ने जो है वो, क्योंकि पिताजी का यही था कि दिन में नौकरी करना, आना, फ्रेश होना, चाय पीना और कपड़े वपड़े बदल के सीधा रविंद्र मंच।
1: अरे
0: घर तो में वो पारिवारिक रिश्ते के पिता नहीं थे वो।
1: हाँ, वो अपनी दुनिया उनकी,
0: वो अपनी दुनिया थी उनकी। बस आए सुबह ऑफिस चले गए, शाम को आए और फ्रेश हुए, चाय वाय पी और फिर सीधा रविंद्र मंच। फिर वहां से लौटे, खाना वाना खाए, सो गए। हाँ। तो बच्चों से भी उनका उस तरह संवाद नहीं होता था। तो वो माँ थी जिनसे मैंने कहा ना कि वो तो परिवार में पारिवारिक माहौल का जो और पारिवारिक मजबूती जो है, खुलापन भी, छूट भी, वो सब माँ से मिली है।
1: क्या बात है। और क्या आपकी रचनाओं में माँ झलकती है?
0: उस तरह से तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं जैसा बचपन हमने गुजरा, तो वो एक लोअर मिडिल क्लास का जो मिडिल मतलब सरकारी कर्मचारी जो है,
1: बिल्कुल
0: कॉलोनी थी, तो हम उसी में तो, लेकिन बहुत खुशहाल। मतलब मैं अपने आपको अगर आप देखूं तो हो सकता है आर्थिक रूप से हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास ही कहना चाहिए उस वक्त, लेकिन एक बहुत ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध खुशहाल परिवार थे, और मुझे अपने बचपन की बहुत अच्छी यादें हैं, मैं खुशहाल हूं।
1: क्या बात है, इतनी सुंदर बातें हो रही हैं और इतनी जज्बाती बातें, तो मुझे लगता है कि यहाँ आशीर्वाद फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: हाँ।
1: एक था बचपन, क्योंकि ये जो बचपन के जो दिन है उनके नाम ये गाना।
0: जी जी।

0: बचपन की बातें हमने की रेड्डी साहब, और ये वो बातें हैं जो इसलिए जरूरी थी कि वो कौन से तत्व थे जिन्होंने आपको बनाया। लेखन की दुनिया में उस समय में जब आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, तो आपके आदर्श कौन थे और क्या कोई था जो आपकी रचनाओं को सुधारे या जो आपको मार्गदर्शन दे वहां पर जयपुर में?
1: जी, जयपुर में जैसे मैंने कहा कि मैं गीत से शुरू हुआ था, तो मेरे दो बड़े लोग थे जो मेरे काव्य गुरु भी मैं निजी मान सकता था और जो मुझे मार्गदर्शन भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे। एक तो तारा प्रकाश जोशी
0: जी,
1: और एक हरिराम आचार्य। हरिराम आचार्य फिल्मों में भी लिखा
0: जी जी,
1: मेहंदी रंग लाई,
0: डांसिंग जी के साथ उनके गाने हैं बहुत सारी फिल्मों।
1: और तारा प्रकाश जोशी जी आईएएस ऑफिसर थे।
0: अच्छा।
1: लेकिन गीत में उनका कोई जवाब नहीं था, मतलब इतने बड़े गीतकार थे वो राजस्थान के। मतलब एक पंक्ति यूनुस में बताऊंगा, उनके गुरु तो एक तरह से

0: मेरा वेतन ऐसे रानी, मेरा वेतन
1: ऐसे रानी,
0: ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी।
1: ओ हो हो हो, क्या अद्भुत है, क्या अद्भुत है,
0: जैसे गर्म तवे पर पानी,
1: क्या बात है।
0: ऐसी पंक्ति मतलब मैंने नहीं सुनी,
1: क्या बात है, क्या बात,
0: नहीं सुनी। तो ऐसे लोग मेरे आदर्श थे, मेरे गुरु थे, जिनके
1: गजब ये जीवन में कभी भूलेगा नहीं, इतनी अद्भुत है।
0: मेरा वेतन है ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी,
1: तुरंत खत्म। वाह वाह।
0: तो और हरिराम आचार्य जी के तो
1: बिल्कुल मेरी भी मुलाकात रही है।
0: तो ये लोग थे जिनसे सीखा, लेकिन मेरे साथ अच्छी बात रही आप संस्कारों में, जिसने मुझे आगे थोड़ा गंभीर लेखन की तरफ रखा, सिर्फ मंच ही नहीं बनाया, वो ये कि मैं बाकी विधाएं भी पढ़ता था, मेरे निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ये सब मतलब फिक्शन भी, उपन्यास भी, आलोचना भी, नवर सिंह जी भी, हिंदी में तो एमए किया था, तो हिंदी साहित्य से बराबर जुड़ाव। और फिर बचपन से ही वो हमारे कॉलोनी में, हमारे अखबार परिवार में सिर्फ अखबार था, मतलब किताबें विताबों को वो नहीं था उतना। तो एक कॉलोनी के आगे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हुआ करती थी, तो उसमें सारे अखबार आते थे, मतलब अखबार तो थे ही थे,
1: पत्रिकाएं भी,
0: दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, तो ये मैं इन सबको चार्ट जाया करता था वहां जाकर के, घंटों घंटों वही बैठता था। तो और बाकी लोग जो आके चले गए, और मैं अपने अभी इसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको, मतलब तीन चार टेबल पे मैं, फिर दो तीन घंटे निकल जाते थे।
1: जी,
0: तो बचपन से वो पढ़ने का भी शौक था, संगीत का भी शौक था, तो ये सब चीजें जो संस्कार में। और फिर जैसे होता है कि ये तो मेरे आदर्श थे ही और बड़े थे, बाकी फिर उर्दू शायरी की तरफ यूं हुआ कि गीत करते करते फिर हम उम्र लोगों के साथ उठना बैठना, है ना, सुनना सुनाना, और फिर मुशायरे भी वहां हुआ करते थे जयपुर में, तो बड़े बड़े मुशायरों को सुनना, तो हम उम्र लोगों की टोली में यंग शायर भी थे, इनके साथ उठते बैठते थे। तो जब मुशायरे सुने और उसमें जो शेर का जो दो मिसरों में, दो पंक्तियों में जो
1: सारी बात
0: कह देने का जो जादू वो मुशायरों में देखा और सुन, तो फिर वो उस विधा ने मुझे आकर्षित किया, मैं उस तरफ झुका और फिर गजलें कहने लगा। अमरूद लोगों को हमारे जो साथ में थे, अरशद अब्दुल हबीब, इनाम शरर, मजार साहब, तो ये सब लोग सुनते थे, वो सराहते थे और कि ये अच्छा है, अच्छा है। और फिर मैंने बाकायदा गजल के लिए उर्दू स्क्रिप्ट सीखी, मौलवी साहब आते थे, मुझे पढ़ाते थे, सिखाते थे, और फिर मैं बाकायदा गीत से गजल में शामिल हो गया। गजल को मैंने अपनाया और शायद गजल ने मुझे भी अपना लिया।
1: क्या प्यारी बात है। तो शुरुआती गजलों में से कोई एक हमें सुनाइए।
0: मेरा सौभाग्य यूनुस की ये जो गजल पंकज दास साहब ने गाई और पूरे दुनिया में पहुंची,
1: जो आपकी पहचान के साथ हुई है,
0: वो जयपुर की गजल है।
1: वाह,
0: वो शुरुआत
1: कमाल।
0: हाँ,
1: ये मुझे नहीं पता था, ये मेरे लिए हैरत की बात है कि वो आपकी शुरुआती गजल है।
0: नहीं, यूनुस के लिए आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, वो कि गीत से मेरी यात्रा शुरू हो चुकी थी
1: जी,
0: गजल की विधा को मैंने
1: अपने शिफ्ट किया है।
0: हाँ, गजल में शिफ्ट किया और उसको अपना लिया। मैंने कहा ना, हम उम्र लोगों के साथ उठते बैठते सुनते सुनाते, उनसे आश्वस्ति मिली। और एक हमारे बुजुर्ग होते थे, कहना चाहिए टोक में रहते थे वो, तो वो भी आया करते थे और शाम को बैठते और एक दूसरे को सुनना सुनाना, तो उन्होंने जब ये पहली बार सुनी गजल तो वो भी चौंक गए, मतलब क्योंकि ये ट्रेडिशनल ढंग की गजल नहीं है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल,
0: है ना, बिल्कुल। तो बोले ये, और ये जो जिसको कि गजल की जबान में या उर्दू में टेक्निकली रदीफ कहते हैं, है ना, जो गजल के पंक्ति के आखिर में आती है और वो रिपीट होती है हर शेर में, से डरता है। अब ये रदीफ जो है वो अनसुनी सी थी, मतलब,
1: और कभी इससे पहले मैंने सुना नहीं है,
0: तो खुद
1: मुश्किल भी है।
0: मुश्किल भी है, तो उसको निभा ले जाना, और उसके तो वो भी हैरान हुए कि ये यार तुम ये रदीफ ले आए और उसको तुमने शेर भी कह दिए और अच्छे शेर कह दिए, सब कुछ है। और फिर वो शेर उसने तो मुझे मतलब सबसे ज्यादा प्यार दिया, पहचान दी। तो वो गजल मैं अगर कहें तो
1: जरूर सर, अरे स्वागत है, बिल्कुल।
0: जो पंकज जी ने गाई उसकी धुन अलग है,
1: आपकी धुन।
0: हाँ, जो मैं सुनाता हूँ और जिसने मुझे शहरों में पहचान दी, वो ये गजल।
1: स्वागत है।
0: यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है यहाँ हर शाम। ये खास शेर है वो,
1: स्वागत।
0: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा।

0: बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना। यूनुस, इसकी एक शेर और सुनाता हूं।
1: जरूर सर,
0: ये
1: स्वागत
0: बच्चे वाला जो शेर है उससे सबसे ज्यादा प्यार मिला,
1: जी,
0: ये शेर भी उतना ही सच्चा है।
1: बिल्कुल
0: हम देखते हैं कि हर जिंदगी में हर इंसान की कभी न कभी वो पल आता है कि वो ऊपर वाले से पनाह मांगता है, बहुत
1: बिल्कुल
0: बहुत हो गया, अब नहीं
1: जी
0: रहा, अब नहीं, बहुत
1: जी
0: हो गया, है ना,
1: जी
0: ये आता है। फिर
1: सबके
0: करते हैं
1: साथ, सबके साथ
0: अरबपति खरबपति भी खुदकुशी करते हैं, उनके पास क्या नहीं होता,
1: जी।
0: लेकिन वो जिंदगी ऐसे मोड़ पे ले आते कि वो बस बहुत हो गया। लेकिन जब ऐसा पल आता है ये,
1: तो आप कहते हैं अजब ये जिंदगी
0: तो
1: की
0: फिर
1: कायदे,
0: हमारे क्या रिएक्शन होते हैं।
1: वाह
0: और कोरोना में तो हमने देखा ही कैसे
1: जी,
0: जान बचाते फिर रहते हम
1: बिल्कुल
0: लोग। तो ये शेर है जो सबका सच है,
1: वाह
0: अमीर हो गरीब सबका, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता
1: क्या बात है
0: है।
1: सर, हम बहुत
0: थैंक
1: खुश नसीब है कि विविध भारती के स्टूडियो में आप
0: यू,
1: मौजूद
0: मेरे
1: हैं और
0: आप लोगों का
1: आपसे ये
0: प्रेम
1: सुन
0: है
1: रहे
0: और
1: हैं।
0: मेरी खुशनसीबी।
1: ये अद्भुत गजल है और हजारों बार तो हमने पंकज जी की आवाज में सुनी होगी, पर जब आपके साथ काम करते थे तब तो हिम्मत नहीं होती थी ये कहने की कि आपसे ये गजल सुनी है। आज ये मौका आया है, बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अनमोल पल है। रेडियो की तरफ वापस लौटते हैं, और जलंधर में 1 साल बिताने के बाद आप कहाँ गए?
0: उसके बाद मैं अपने होम टाउन जयपुर,
1: जी,
0: मेरे साथ ये भी रहा और अभी भी होता है ये, क्योंकि मैं शुरू से होम सिक रहा,
1: बिल्कुल,
0: मतलब जलंधर मुझे कोई कमी नहीं थी, बहुत
1: हाँ,
0: अच्छा शहर था, बहुत प्यारे लोग थे, अच्छा
1: अच्छा खान पान था,
0: खान पान था, अच्छा मौसम था, सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा था,
1: जी,
0: केंद्र भी बहुत अच्छा था, लोग भी अच्छे थे, मैं खुश था, सब भी था, लेकिन एक होमसिकनेस होती कि वो मुझे अपने शहर जाना है वापिस, है
1: जी
0: ना। तो मतलब मैंने रिक्वेस्ट की और मैं वो सुन ली गई, मान ली गई, और मैं वापिस अपने शहर में आ गया जयपुर।
1: वाह
0: तो मैं
1: वाह,
0: वहां फिर वापिस शायद 5 साल जयपुर रहा उसके।
1: तो ये बहुत ही अनमोल पल रहे होंगे कि जिस स्टेशन में आप बतौर कैजुअल आया करते थे, रेवाड़ी करते थे,
0: हाँ,
1: वहां आपकी वापसी
0: बिल्कुल
1: होती
0: सही
1: है और
0: बात।
1: अब आप प्रोड्यूसर बनते हैं।
0: और ये भी कमाल थी कि जिस केंद्र में मैं कैजुअल के लिए ऑडिशन देने गया हूं, है ना,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: वहीं
1: बिल्कुल
0: मैं एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव तौर पे एंटर हो रहा हूं
1: जी
0: और ज्वाइनिंग के लिए सब कुछ है। तो
1: जी
0: और क्या टीम थी वो वहां पे,
1: बिल्कुल
0: करीब बड़े लोग, अच्छे लोग, तो उनके साथ मिलना जुलना हुआ और वो एक अलग अनुभव था। और वो जो जयपुर मेरा क्रिएटिव जैसा विविध भारती मेरा बाद में हुआ, और
1: जी,
0: इसमें मैंने प्रोडक्शन कम किए लेकिन प्रोग्राम में उनकी परिकल्पना, उनको संवारना या उनको इम्प्लीमेंट करना, ये सब मेरा क्रिएटिव जो बेस्ट था
1: जी
0: वो जयपुर में था।
1: जी जी जी
0: नाटक लिखना, कंपोज करना, प्रोड्यूस
1: बिल्कुल
0: करना, इंटरव्यूज करना, वो सब जयपुर हुआ। मतलब वो मेरी जो पूरी जलंधर में मुझे आकाशवाणी की जानकारी सब हुई, सब कुछ, एक लिमिटेड काम था, ये हिंदी का कार्यक्रम अधिकारी था, हिंदी का लिमिटेड उसमें सब कुछ था, जयपुर मेरे लिए पूरा खुला मंच था,
1: बिल्कुल, और फिर आप उस शहर में पले बढ़े थे
0: पहला
1: तो आप
0: बड़ा
1: सब
0: था।
1: जानते
0: और
1: थे,
0: फिर
1: और
0: उसने मुझे, मैंने कहा ना कि

0: मेरे क्रिएटिविटी के सारे पहलू उसमें खुले
1: जी,
0: मेरा लेखक भी खुला, मेरा संगीतकार भी खुला, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव भी तो था ही था, सब नाटक लिखे, निर्देशित किए, संगीतबद्ध किए, हाँ म्यूजिकल शो पूरा उसमें हुआ, अभी तो नहीं हो रहा उसे जयपुर में, और जयपुर के पूरे आकाशवाणी के दौर था कि वो आमंत्रित श्रोताओं के सामने
1: कॉन्सर्ट होते थे,
0: कॉन्सर्ट होते थे
1: जी,
0: तो उसके लिए भी मतलब तैयार करना, उसके लिए प्लेज लिखना, तैयार करना, गाने लिखना, ये सब जयपुर में हुआ।
1: वाह क्या बात है। तो उस दौर में कौन से नाटक आपने रेडियो के लिए बनाए, उनको कुछ याद कीजिए थोड़ा।
0: उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, राजेंद्र यादव की कहानी थी टूटना,
1: जी जी,
0: उसका हमने रेडियो नाटक रूपांतर किया।
1: वाह।
0: और उसका प्ले किया और बहुत पसंद किया गया लोगों के द्वारा। और ये तो हुआ टूटना, एक ज्ञान प्रकाश विवेक की कहानी थी अंधा सूरज,
1: क्या बात है,
0: उसका किया।
1: वाह।
0: और इसके अलावा गीत गोविंद,
1: अरे गजब,
0: ये मेरी लिए सबसे बड़ी बात उपलब्धि थी। यूनुस उसके आश्चर्य की बात यह थी कि गीत गोविंद का आपने ड्रामेटिक नाट्य रूपांतर किया, वो नाट्य रूपांतर तो हिंदी में हुआ, मतलब उसका कैरेक्टर जो राधा कृष्ण सखी ये सब कुछ है, गीत गोविंद मूल रूप से संस्कृत में है,
1: बिल्कुल
0: जयदेव जी का
1: जी,
0: हाँ उसके जो गाने हैं, उसके जो गीत हैं, वो मूल संस्कृत में, मूल संस्कृत में मैंने कंपोज किया, रिकॉर्ड किए, गाए
1: संस्कृत में,
0: संस्कृत में,
1: अरे बाप,
0: तो गाने संस्कृत में है
1: जी,
0: और उनके इंटरप्रिटेशन करते हुए उनको एक तरह से समझाने के लिए मैंने कैरेक्टराइजेशन किया कि लोग आम लोग समझ चुकी इस गाने का क्या मतलब है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कौन कैरेक्टर है, ये राधा का दुख है कि कृष्ण की पुकार है,
1: हाँ,
0: है ये
1: तो बहुत मुश्किल काम है,
0: हम बहुत मुश्किल, तो वो एक मेरे लिए वो मील का पत्थर जैसा हुआ, और लोगों को भी हैरानी हुई कि लोगों ने उसका आनंद भी लिया और समझे भी, मतलब गीत गोविंद को ओरिजिनल, क्योंकि मैं ये समझता था कि उससे पहले गीत गोविंद रघुनाथ पाणी गए उड़ीसा में
1: जी जी,
0: हाँ, वो करते रहे और वो बहुत मशहूर है, बहुत पॉपुलर है, सब कुछ है, लोग गायक के रूप में वो पॉपुलर है वो वहां पे, लेकिन मैंने उनका सुना है और वो तो कमाल है, मतलब वो भी, लेकिन मुझे ये लगा कि उनमें वो लोक तत्व ज्यादा है, मतलब कि बंगाल या उड़िया का उनके कंपोजिशंस में भी, उनके गाने में भी, तो मैंने उसको बाकायदा एक क्यों फिल्म का तो था ही था, तो सुगम संगीत के तौर पर मैंने उसको कंपोज किया और गाने वाले भी बहुत अच्छे थे, तो उस तरह से वो एक लोगों को लगे कि ये गाना है,
1: क्या बात है, ये तो बहुत मुश्किल है,
0: तो वो गाने के तौर पर वो हुआ और लोगों ने सुना और पसंद किया।
1: वाह वाह वाह, तो ये पूरा जयपुर का दौर था,
0: अभिज्ञान शाकुंतल
1: जी
0: कालिदास का, तो वो मैंने रेडियो एडॉप्टेशन किया, वो किया, तो ये दो बड़ी होता
1: है, क्या शानदार बातें हैं, ये तो बहुत मुश्किल वाले काम आपने वहां किए। इसके अलावा वहां विकल्प भी चलता रहा आपका, हाँ, नाट्य समूह
0: नहीं विकल्प, ये दौर मेरा पहला था, मतलब रेडियो आने से पहले का था,
1: हाँ
0: विकल्प अपने ढंग से चलता रहा, वो बीच बीच हम लोग करते भी रहे, लेकिन वो सक्रियता नहीं रही
1: जी, क्योंकि रेडियो में आप पूरी तरह से अपने आपने अपने आप को झोंक दिया था,
0: मतलब बीच बीच में हम करते रहे नाटक, लेकिन वो जो 10 साल लगातार जो किया वो रेडियो मैनेज में किया
1: जी, और बाद में फिर आप पूरी तरह से रेडियो में व्यस्त हो गए,
0: हाँ, उसके बाद भी एक नाटक जो आला अफसर मुद्रा राक्षस का
1: जी जी,
0: तो गोगोल का उन्होंने
1: इंस्पेक्टर जनरल
0: का नौटंकी की शैली में उन्होंने किया, तो उसका भी मैंने कंपोजिशन भी किया, डायरेक्शन भी किया, प्रोग्राम किया,
1: तो संगीत जो है वो एक तो घर से मिला था, लेकिन ये एक लगातार चलता रहा कि कंपोजिशन भी करनी है आपको लगातार,
0: हाँ इसमें करनी ही वाला बात नहीं था,
1: जरूर
0: से होता था
1: जी जी,
0: अंदर से होता था कि ये मैं करूं, मतलब मेरी कोई मजबूरी नहीं थी
1: बिल्कुल,
0: हाँ कि कोई और भी कर सकता था, लेकिन अंदर से कहीं होता था कि ये
1: मैं करता,
0: हाँ इसको जैसे लिखने का जो है अंदर से होता है
1: बिल्कुल,
0: आप तो उसी तरह से चाहे वो गीत गोविंद हो, जयपुर में उस वक्त 5 बड़े संगीतकार थे
1: जी,
0: जो स्टाफ में थे, म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक कंपोजर भी एक पोस्ट होती है
1: बिल्कुल, होती
0: है ना, जानते होंगे, और विविध भारती में नहीं है वो, लेकिन मेन सेंटर्स में बॉम्बे में हो या किसी भी सेंटर में कंपोजर की भी पोस्ट होती है
1: जी जी,
0: उस वक्त 4 मौजूद थे और वो 4 लोग भी परेशान होते थे कि हम है और ये आदमी कंपोज कर रहा है, तो उसमें मेरे उस वक्त स्टेशन डायरेक्टर थे गिरीश चतुर्वेदी
1: जी जी,
0: तो उन्होंने मुझे छूट दी
1: कि नहीं नहीं आप करो,
0: हाँ मतलब वरना ये होता नहीं, ये
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो 4 कंपोजर यहाँ स्टाफ में मौजूद है और उस वक्त आप अपना काम खुद कर रहे हैं
1: जी जी,
0: तो उन्होंने छूट दी और उसकी वजह से वो एज ए कंपोजर भी रेडियो पर मतलब गाने भी हुए सब कुछ हुआ,
1: हाँ
0: एक बार मैं बताऊं कि जब महादेव वर्मा का गीत,
1: हाँ
0: मैं नीर भरी दुख की बदली,
1: हाँ
0: और ये सब मतलब ये सब हमने किए, मतलब जो एक वो

0: जैसे यहाँ मंथन शुरू हुआ था
1: जी,
0: हम लोग 10 मिनट का प्रोग्राम होता था
1: जी,
0: एक अच्छा गीत या अच्छी कविता
1: हाँ,
0: किसी के लेके उसको भी पढ़ता था और गीत होता तो कोई गाता था।
1: वाह,
0: तो उस तरह का एक प्रोग्राम तो वो मैं करता था, तो उसमें महादेव वर्मा का और भारती जी का, फिर बाद में गालिब की गजलें कंपोज की,
1: क्या बात है,
0: कबीर को कंपोज किया, स्टेज किया, स्टेज शो किया, तो ये सब मेरे संगीतकार के रूप में मेरे
1: ये चीजें चलती रही लगातार। ये बहुत अद्भुत बात है, ये एक अलग पूरा एक पक्ष है। हमारे सुनने वालों को ये जानकर अच्छा लगेगा कि आप मंच पर तो गाते ही हैं, लेकिन आप अपने निजी जीवन में भी कुछ फिल्मी गीतों से आपका बड़ा लगाव है जो आप गुनगुनाते हैं, तो हमारे लिए कुछ गुनगुनाइए।
0: चलिए मैं गुनगुना देता हूं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,
1: वाह वाह,
0: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू

0: लिए कभी कभी मेरे दिल में।
1: वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। ये गाना पूरा सुनते हैं।

0: ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: आज के मेहमान।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: आकाश,
1: ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी सुनने वाले प्यारे युवा साथियों को आपको रेडियो दोस्त का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करते हैं आर के नारायण की। आर के नारायण एक अंग्रेजी साहित्यकार थे। उनकी मृत्यु 13 मई 2021 में हुई थी। आर के नारायण साहित्य के सबसे प्रिय भारतीय पुरस्कार विजेताओं में से एक हैं। वे स्वतंत्रता के बाद पहले ऐसे लेखक हैं जिन्होंने भारतीय अंग्रेजी लेखन से पश्चिमी जगत का ध्यान आकर्षित किया और अपनी सरल और सूक्ष्म शैली के लिए जाने वाले नारायण अब तक के सबसे अधिक पढ़े जाने वाले लोकप्रिय भारतीय लेखकों में से एक हैं। अत्यंत प्रिय और अनमोल कृति द मालगुड़ी डेज की रचयिता ने भारतीय अंग्रेजी साहित्य शैली को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने और लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामी एंड फ्रेंड्स जो काल्पनिक मालगुड़ी में रचित उनका पहला उपन्यास था, एक आदर्श कृति थी जिसने ब्रिटिश और स्वतंत्रतर भारत के परिवर्तनशील परिवेश को खूबसूरती से समाहित किया। उन्होंने द इंग्लिश टीचर, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वेटिंग फॉर द महात्मा, भाई डेटलेस डायरी, द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी और कई साहित्यिक पुस्तकें लिखी। तो दोस्तों, अपनी चर्चा यूं ही चलती रहेगी। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कोई आ जाए मेरे ख्यालों में ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों

उलझा रहता हूँ उलझे उलझे बालों में। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कोई आ जाए मेरे ख्यालों में। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में।

0: पागल दिल वालों में ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कोई हर कोई आए जाए मेरे ख्यालों में ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में
1: अभी आप सुने थे सोनू निगम की आवाज़ में गाया गीत। आइए चर्चा करते हैं भारत

सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई है, उसमें से एक योजना है लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह SHG से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को कौशल, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति वर्ष 1 लाख से अधिक की आय अर्जित करने के योग्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं हैं कि इसका उद्देश्य है महिलाओं को 1 लाख या उससे अधिक की वार्षिक आय कमाने में सक्षम बनाना, महिलाओं को कौशल विकास जैसे सिलाई, खेती, LED बल्ब बनाना, ड्रोन संचालन, डिजिटल बैंकिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है, वित्तीय सहायता स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आसान लोन और सहायता मिलती है, ब्याज मुक्त होना, इसमें ब्याज मुक्त लोन की भी सुविधा है। कुछ मामलों में स्वरोजगार के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान किया जाता है। इसकी पात्रता है महिला का किसी भी स्वयं सहायता समूह SHG का सदस्य होना अनिवार्य है। इसके आवेदन करने की प्रक्रिया है कि इच्छुक महिलाएं अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, ब्लॉक कार्यालय या स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इस योजना की जानकारी ले सकती है और आवेदन कर सकती है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज है आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासपोर्ट आकार की तस्वीर। इस आधार पर आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

चला क्यों ना तू मटकना, सोलवा साल है हाय क्या ताल है, धीरे धीरे चला क्यों ना तू मटकना, सोलवा साल है हाय क्या ताल है। पर एक बार तू देख पलट के मुंडा भी कमाल है।

0: पलट
1: धीरे धीरे चलना यूं ना तुम अटकना सोलवा साल है हाय क्या ताल

0: यार
1: धीरे धीरे चलना यूं ना तुम अटकना। 16 साल है हाय क्या साल है, पर एक बार तो देख पलट के मुंडा भी कमाल है।

अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज में गाया ये गीत। अपनी चर्चा वापस चालू करते हैं और आपको अवगत कराते हैं बचत के लाभों से। देखो, दीर्घकालीन वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए धन बचाना बहुत जरूरी है। यह आपात स्थितियों के लिए एक अपने लिए सुरक्षा का कार्य करता है, जैसे बड़ी खरीद

करने में सक्षम बनाता है, वित्तीय तनाव को कम करता है और सेवानिवृत्ति के लिए धन जुटाने में सहायक होता है। बचत करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपातकालीन सुरक्षा के लिए बचत आपको कर्ज में डूबने के लिए मजबूर किए बिना कार की मरम्मत, चिकित्सा, आपात स्थिति, नौकरी छूटने जैसे अप्रत्याशित खर्चों से बचाती है। वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है, जैसे घर खरीदना, कार खरीदना, उच्च शिक्षा प्राप्त करना जैसे लक्ष्यों के लिए ये आवश्यक धनराशि हमारी बहुत मदद करती है। स्वतंत्रता और लचीलापन, बचत से हम फ्रीडम फंड आपको वित्तीय संकट के बिना जीवन के विकल्प चुनने की अनुमति देता है, जैसे करियर बदलना, व्यवसाय शुरू करना या अवकाश लेना। अगर हमारी बचत की भी होती है तो दोस्तों अपन कोई भी कार्य करने के लिए झिझक नहीं सकते हैं। अपने पास सेविंग मनी होगी तो अपन अपनी सुविधा के अनुसार और अपने मन के आधार पर कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बच्चों को उचित शिक्षा दिलवा सकते हैं ताकि अपन को कोई कर्ज न लेना पड़े। वित्तीय तनाव में कमी, वित्तीय सुरक्षा का होना यह जानने से अप्रत्याशित परिस्थितियों के बारे में चिंता कम हो जाती है, जिससे बेहतर मानसिक शांति और सुरक्षा मिलती है। दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति सुरक्षा, नियमित बचत से चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से समय के साथ आपकी धनराशि बढ़ती है, जिससे आपके वृद्धावस्था में आरामदायक जीवन शैली सुनिश्चित होती है। जैसे हम कोई प्राइवेट जॉब करते हैं और शुरू से बचत करना चालू कर देते हैं, तब जब अपनी सेवानिवृत्ति की आयु आ जाती है, अपन काम करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, तो अपनी जो ये बचत की हुई राशि है वो अपनी वृद्धावस्था में बहुत सहायक होती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपन शुरू से ही सेविंग करके रखते हैं तो बच्चों के फ्यूचर के लिए यह बहुत ही काम आती है, ताकि अपन अपने बच्चों को उचित शिक्षा दे सकें, ताकि उनके कोई भी कार्य में बाधा ना आए। इसलिए बचत करना बहुत ज़रूरी है, बचत से ही अपन अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों अपनी चर्चा यूं ही जारी रहेगी, आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे लता जी की आवाज में गाया ये गीत। दोस्तों, अपनी चर्चा वापस जारी करते हैं और बात करते हैं सुंदर लेखन के महत्व का। आज के समय में लोग कंप्यूटर पर आधारित हो गए हैं और लेखन को महत्व देना कम कर दिया है, पर आप जानते हैं लेखन का बहुत अधिक महत्व है। लिखावट से आदमी की व्यवहार का भी पता चलता है। आज की दुनिया में जहाँ डिजिटल संचार का बोलबाला बढ़ता जा रहा है, अच्छी लिखावट का महत्व कम होता प्रतीत हो सकता है। फिर भी सुंदर हस्तलेखन की कला में एक शाश्वत आकर्षण और गहरा महत्व है, जो रोजाना और तकनीकी प्रकृति से परे है। आइए जाने कि त्रुटिहीन लिखावट को निखारना पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक क्यों है, या जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता को कैसे आकार दे सकता है। दर्शकों को आकर्षित करने के लिए आकर्षक सामग्री आज के समाज में जहाँ पहली छाप ही स्थायी छाप छोड़ती है, वहाँ अच्छी लिखावट का महत्व कम नहीं आंका जा सकता। कल्पना कीजिए, आपको सुंदर लिखावट में लिखा हुआ हस्तलिखित नोट या पत्र मिले, इसका आकर्षण निर्विवाद है, परंतु जो तुरंत प्राप्तकर्ता का ध्यान खींच लेता है और विचारशीलता और ईमानदारी का भाव प्रकट करता है, लेकिन सौंदर्य से परे कुशल लिखावट के लाभ दूरगामी हैं, जो शैक्षणिक उपलब्धियों, व्यावसायिक लक्ष्यों और व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करते हैं। एक अपन कोई भी पत्र या लेटर जो भी हो, वो अपने पास अगर एक सुंदर लिखावट में आता है तो उसको देखते ही अपना मन खुश हो जाता है। इसलिए लिखावट तो अपनी जगह है। अच्छी लिखावट का मतलब शैक्षणिक उत्कृष्टता, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में सुपाठ्य लिखावट केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक मूलभूत कौशल है जो सीखने के परिणामों को प्रभावित करता है। शोध से पता चलता है कि अच्छी लिखावट और शैक्षणिक सफलता के बीच एक

मजबूत संबंध है और सुस्पष्ट लिखावट से समझ, याद रखने की क्षमता और ज्ञान का हस्तांतरण आसान होता है। इसके अलावा स्पष्ट और एक समान लिखावट वाले छात्र अक्सर परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि परीक्षक उनके उत्तरों को आसानी से समझ सकते हैं, जिससे उन्हें उच्च अंक प्राप्त होते हैं। व्यावसायिक उन्नति, चाहे नौकरी के लिए आवेदन करना हो, व्यावसायिक पत्राचार लिखना हो या आधिकारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने हो, सुलेख से पेशेवरता बढ़ती है और नियोक्ताओं और सहकर्मियों दोनों पर एक स्थायी प्रभाव पड़ता है। कानून, स्वास्थ्य सेवा और वित्त जैसे क्षेत्रों में जहाँ बारीकियों पर ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है, वहाँ स्पष्ट लिखावट से विश्वास और विश्वसनीयता बढ़ती है, जिससे कैरियर के अवसर और व्यावसायिक उन्नति के द्वार खुलते हैं। व्यक्तिगत विकास के लिए भी लिखावट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। व्यावहारिक लाभों के अलावा अच्छी लिखावट का अभ्यास संज्ञानात्मक विकास और सूक्ष्म शारीरिक कौशल को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से बच्चों में अक्षरों और आकृतियों को हाथ से बनाने के लिए आवश्यक जटिल समन्वय तंत्रिका मार्गों को उत्तेजित करता है, जिससे मस्तिष्क की कार्य क्षमता और निपुणता बढ़ती है। इसके अलावा लिखावट के अभ्यास से प्राप्त अनुशासन और धैर्य, दृढ़ता और आत्म अनुशासन जैसे मूल्यवान गुणों को पोषित करते हैं और जो जीवन में सीखने और व्यक्तिगत विकास की नींव रखते हैं। लिखावट से अपने विकास की नींव का पता चलता है। नेचर एकेडमी में हम अच्छी लिखावट की परिवर्तनकारी शक्ति को पहचानते हैं। सभी उम्र के शिक्षार्थियों को उनकी पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक अग्रणी ऑनलाइन शिक्षण मंच के रूप में हम कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप व्यापक लिखावट सुधार पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। हमारे विशेषज्ञ शिक्षक व्यक्तिगत मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक छात्र लिखावट में निपुणता प्राप्त करे और स्पष्ट आत्मविश्वासपूर्ण लेखन के लाभों को प्राप्त करे। हमारे नवीनतम निःशुल्क और सशुल्क पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ही संपर्क करें। आज के डिजिटल युग में जहां कीबोर्ड और टच स्क्रीन का बोलबाला है, तो सुंदर लिखावट का आकर्षण आज भी कायम है और यह शालीनता, बुद्धिमत्ता और प्रामाणिकता का प्रतीक है। सुलेख को निखारने और हस्तलेखन की कला को अपनाने के महत्व को समझकर व्यक्ति अवसरों की दुनिया खोल सकते हैं और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रयासों से नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी चर्चा यूं ही चलती रहेगी और सुनाते हैं एक आपको प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज़ में गाया ये गीत। दोस्तों, अपनी चर्चा जारी करते हुए अपन इस कार्यक्रम में युवा साथियों के लिए इस विशेष संदेश देना चाहते हैं। युवाओं को सशक्त बनाने में मदद करने के लिए कुछ सुझाव। युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण टिप्स में समय का सदुपयोग, निरंतर सीखना और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना। आत्मनिर्भर बने, गलतियों से सीखें, सकारात्मक लोगों के साथ रहें, अपनी रचनात्मकता को पहचानें और लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें पाने के लिए कड़ी मेहनत करें। पहला टिप्स है लक्ष्य और योजना। अपने जीवन के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने की योजना बनाएं। समय का ध्यान रखें। समय सबसे बड़ा मूल्यवान संसाधन है, इसे आलस्य में बर्बाद न करें। हर दिन कुछ नया सीखें, सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित न रहें। अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। योग, संतुलित आहार और अच्छी नींद लें। आत्मविश्वास बढ़ाएं। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं और व्यवहारिक कौशल विकसित करें, जो कि डिग्री से भी अधिक महत्वपूर्ण है। नशे से दूर रहें। शराब और मादक पदार्थों से दूर रहें, क्योंकि ये भविष्य बर्बाद कर सकते हैं। जैसे कि एक एज के बाद युवाओं के पता नहीं एक अजीब सी लत लग जाती है। उन्हें कोई ऐसा समूह मिल जाता है जो वो नशे की आदत में चले जाते हैं। वो आदत धीरे धीरे करके उनके मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सारे कष्ट पहुंचाती है और उनकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है। इसलिए खास तौर पर युवाओं, आप अपने को नशीले पदार्थों से दूर रखें ताकि आपका भविष्य खराब ना हो। अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लें और सामाजिक रूप से भी सक्रिय रहें। युवा जितने समाज के प्रति सक्रिय रहेंगे तो समाज और विकास की ओर अग्रसर होगा। असफलता से सीखें। असफलता से अंत नहीं है, बल्कि सीखने का अवसर है। अगर आप एक बार असफल हो जाते हैं तो उससे निराश ना हो और आगे प्रयास करें, ताकि सफलता अपने आप आपको मिल जाएगी। संगति का लाइफ में बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अपने दिमाग को ऐसा रखें कि अपन किसी से अगर बात कर रहे हैं तो अपने अंदर ये पता होना चाहिए कि आदमी सही है या गलत है। अगर अपन सही आदमी की संगति में रहेंगे तो अपनी लाइफ और अच्छी बन जाएगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा और अपन गलत लाइन की तरफ जाने से रुक जाएंगे। सृजनात्मकता। अपनी प्रतिभा को पहचाने, उसे सही दिशा में ले जाएं। युवा पीढ़ी को सक्रिय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे भविष्य के भावी सूत्रधार है। अगर युवा पीढ़ी सशक्त बनेगी तो भविष्य और अच्छा बनेगा और समाज भी विकास की ओर अग्रसर होगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर अपन अपनी लाइफ में जरूरी नहीं बहुत कुछ हासिल करें, पर जो भी हासिल करें वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से हासिल करें, ताकि अपने पेरेंट्स को भी अपने ऊपर प्राउड फील हो। क्योंकि जो एक पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे के लिए बहुत सपने देखते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हर बच्चे का दिमाग एक जैसा हो। सब अलग-अलग होते हैं, पर हमेशा ऐसा कार्य करें कि अपने पेरेंट्स को अपने ऊपर प्राउड फील हो। गलत दिशा में ना जाएं, और एक एज के बाद अपना मानसिक संतुलन एकदम सही हो जाता है और अपन सही दिशा की ओर चले जाते हैं। जैसे 18 से 20 तक अपनी एज ऐसी होती है कि अपन गलत और सही की पहचान नहीं कर पाते हैं, और जो अपन को पेरेंट्स बोलते हैं वो अपन को समझ में नहीं आता है, पर वो अपने लिए सही ही सोच। कोई भी माता पिता अपने बच्चे के लिए गलत नहीं सोचते हैं। सबको यही लगता है कि हम उनको अच्छे संस्कार दें और वो अच्छा बने, पर बच्चा बाहर जाके क्या करता है ये अपन को पता नहीं चलता है। इसलिए युवा साथियों के लिए मेरा एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस दें और गलत चीज़ों से दूर रहें और सही दिशा की ओर कदम बढ़ाएं, ताकि आपका और आपके परिजनों का भविष्य सुदृढ़ हो सके।

सके, ताकि वो अपनी लाइफ अच्छी जी सके और आप अपनी लाइफ अच्छी जी सकें, ताकि उनके मन में कोई प्रकार की द्वेष भावना ना हो। तो दोस्तों, आपसे चर्चा यूं ही चलती रहेगी। आपको सुनाता है एक सुंदर सा गीत।

अभी आप सुने थे कुमार सानू की आवाज में गाए गीत। इसके साथ ही हमारा युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी अब यहीं समाप्त होता है। आपकी रेडियो सखी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। अब से आइए एक नजर आज रात तक प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा पर।

रात 9:15 पर आपके लिए फिर से लेकर आएंगे हम फिल्म संगीत। रात 9:30 पर सुनेगा चर्चा का विषय। रात 10 बजे सुनेगा राजस्थानी लोक संगीत। 10:30 पर सुनेगा फिल्म संगीत। ये थी एक नजर आज रात तक प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा पर। आइए सुनते हैं रामचरित्र मानस गान।

एक तनु नामक छद्म रूपधारी मुनि और सुअर रूप में प्रकट होने वाले राक्षस कालकेतु के मायावी षड्यंत्र के फलस्वरूप राजा प्रताप भानु ने भोजन के लिए 100,000 ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। राजा के पुरोहित रसोइये के रूप में स्वयं कपटी मुनि ने वेदों में वर्णित 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन बनाया, जिसमें नाना पशुओं के अतिरिक्त ब्राह्मणों का मांस पकाया गया था। ज्यों ही राजा भोजन परोसने लगा कि गंभीर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, यह भोजन मत खाओ, इसको खाने से बड़ी हानि होगी, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। यह सुनकर स्तंभित ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित हुए और राजा को शाप दिया कि 1 वर्ष के भीतर वह परिवार सहित राक्षस हो जाएगा। किंतु तभी फिर से आकाश से सुंदर वाणी घोषित हुई कि इसमें राजा का कोई दोष नहीं था, वह स्वयं तो निर्दोष था। यह सुनकर सभी ब्राह्मण चकित रह गए

हम बस रहा नचेत, बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत।

0: साधा देहि महु विप्रमा सुखल साधा
1: भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए पद पखारी सादर बैठाए
2: परुसन जब हिला।

भयौरसोई भूसुर मासु सब द्विज उठे मानि विश्वासु भूप विकल मति मोह भुलानी।

अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहिं दूषण देवहिं देही, तिरचत हंस काग किय जेही।

असुर पाप सही कबर जना यही खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए सजी सजी सेन भूप सब।

जी महाराज गजानंद आओ जी मारी सभा में रंग बरसाओ जी महाराज गजानंद आओ जी मारी सभा में रंग बरसाओ।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम जारी किया। नतीजों में छात्राओं ने एक बार फिर बाजी मारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, यमुना का पानी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान लाने के लिए समय सीमा तय की गई और प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में प्रचंड गर्मी से जनजीवन प्रभावित। फलोदी और जैसलमेर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए ये निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि इस खरीफ सीजन के लिए किसानों को करीब 2,60,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि

0: सबसे अधिक 622 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी सूरजमुखी के बीजों के लिए की गई है। इसके अलावा कपास के दाम 557 रुपए और तिल के 500 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए गए हैं। नई दरों के अनुसार ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य 2461 रुपए, हाइब्रिड ज्वार का 4023 रुपए और बाजरा का 2900 रुपए प्रति क्विंटल होगा। अरहर दाल के लिए 8450 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी तय की गई है। इस सीजन में सरकार द्वारा 824 लाख मीट्रिक टन से अधिक फसल की खरीद का अनुमान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की लागत से कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो एलएनजी इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। देश भर में कुल 85.20% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा परिणामों में एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। छात्राओं का नतीजा 88.86% रहा, जबकि छात्रों का परिणाम लगभग 82% रहा। बोर्ड के अनुसार विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय की इन परीक्षाओं में 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 15,07,000 से अधिक बच्चे सफल रहे हैं। वहीं अजमेर रीजन का कुल परीक्षा परिणाम 86.78% रहा। यहां 88,000 से अधिक विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी थी, जिसमें से 76,469 विद्यार्थी सफल हुए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्वास जताया है कि कृषि शिक्षा के जरिए देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। वे आज कोटा में कृषि विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री बागड़े ने कहा कि किसानों को उन्नत बीज और नई तकनीक से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने युवाओं से स्वरोजगार अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कृषि क्षेत्र में ड्रोन, AI और स्टार्टअप जैसे नवाचारों को अपनाने को कहा। दीक्षांत समारोह में 358 विद्यार्थियों को डिग्रियां और 14 को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। राज्यपाल ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय की नई प्रयोगशालाओं और अकादमिक भवनों का लोकार्पण भी किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कई आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। नए परीक्षा कैलेंडर के अनुसार वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन आगामी 28 जून को किया जाएगा। वहीं लिपिक ग्रेड द्वितीय और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2025 5 जुलाई को होगी। बोर्ड ने पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा 2026 की तारीख में आवश्यक कारणों से बदलाव किया है। अब ये परीक्षा 24 जुलाई को आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पिछले कैलेंडर में दी गई अन्य परीक्षाओं की तारीखें यथावत रहेंगी। राज्य पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG ने प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जीवाड़ा और रिकॉर्ड में हेर फेर करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपितों में मुख्य अभियुक्त राजेश कुमार और राजस्थान लोक सेवा आयोग का कर्मचारी मान सिंह शामिल है। जांच में सामने आया है कि राजेश ने अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा पास कर नियुक्ति प्राप्त की थी। बाद में उसने आयोग के रिकॉर्ड में फोटो बदलने के लिए मानसिंह से 8 लाख रुपए में सौदा किया। SOG ने राजेश को इसी महीने की 18 तारीख तक पुलिस रिमांड पर लिया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि यमुना जल समझौते को लेकर हरियाणा सरकार के साथ महत्वपूर्ण सहमति बनी है। उन्होंने आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद श्री शर्मा ने मीडिया को बताया कि यमुना का पानी

0: पाइपलाइन के जरिए राजस्थान लाने के लिए समय सीमा तय कर दी गई है।
1: किसाऊ के पानी को लेकर के सहमति बनाने का सभी राज्यों में किस तरह से बन सकती है उसके लिए बातचीत तो ही है। एक हरियाणा राजस्थान का यमुना का पानी उसकी पाइपलाइन उसके लिए गाइडलाइन तय की है कि जल्दी से जल्दी वो कैसे हो उसके लिए समय तय हुआ है। एक हरियाणा और राजस्थान का RRTS का मामला था उसमें सहमति बनी है कि वो हमारे राजस्थान तक दिल्ली हरियाणा और राजस्थान तक वो पहुंचे। इन सारे विषयों को लेकर के चर्चा हुई है।
0: बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि किशाऊ बांध परियोजना के काम में तेजी लाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बांध के बनने से हरियाणा, राजस्थान तथा दिल्ली में पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा। राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत 5 जिलों के लिए 18 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें दौसा, चूरू, डीडवाना, कुचामन, फलोदी और बालोतरा के जिला उत्पाद शामिल हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में आज जयपुर में हुई बैठक में परियोजनाओं के पहले चरण के लिए 10,76,00,000 रुपए जारी किए गए। इस राशि से दौसा और डीडवाना कुचामन में पत्थर उद्योग, चूरू में लकड़ी उत्पाद, फलोदी में सोना मुखी भंडारण और बालोतरा में टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंटिंग के लिए आधुनिक केंद्र और लैब बनाई जाएंगी। इससे स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता सुधारकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा। मुख्य सचिव ने आज ही स्वायत्त शासन विभाग और PHED के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अमृत 2.0 योजना के तहत प्रदेश के शहरों में संचालित सीवरेज और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। और अब मौसम। प्रदेश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भागों में पड़ रही प्रचंड गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। आज जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और बीकानेर जिले लू की चपेट में रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज फलोदी सबसे गर्म स्थान रहा, जहाँ पारा 46.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया। जैसलमेर में दिन का तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं बाड़मेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। जिला मुख्यालयों सहित कस्बों में दोपहर के समय बाजार सूने नजर आए। राजधानी जयपुर में भी लू जैसे हालात रहे। कई स्थानों पर प्रशासन ने सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया। मौसम केंद्र जयपुर ने सीमावर्ती जिलों के लिए कल भी भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट रहेगा। इस बीच आज कई उत्तर पूर्वी जिलों में आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से 2 दिन का सघन नाकाबंदी अभियान चलाया गया। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर आयोजित इस अभियान के तहत 727 थानों पर बड़ी संख्या में वाहनों की कड़ी जांच की गई। अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह ने बताया कि इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 7,000 से अधिक लोगों के चालान किए गए। प्रदेश भर में इन दिनों डिजिटल जनगणना 2027 को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने स्वगणना कर लोगों को इसके लिए प्रेरित किया। शहर में जगह जगह हमारी जनगणना हमारा अधिकार जैसे नारों वाले पोस्टर लगाकर लोगों को इस अभियान से जोड़ने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं झुंझुनू में आज प्रगणकों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए। झुंझुनू जिले में मिलावटखोरी के खिलाफ चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई में बड़ी संख्या में खाद्य पदार्थों के नमूने अमानक पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि पिछले साल जनवरी से इस वर्ष 2026 तक जिले में विशेष अभियान के तहत कुल 837 सैंपल लिए गए थे। इन सैंपल्स में से 223 नमूने निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय कल नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य समावेशी शासन को मजबूत करना, नीतिगत पहुंच बढ़ाना और पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित कल्याणकारी उपायों को बढ़ावा देना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 फसलों के MSP में बढ़ोतरी

फरवरी को मंजूरी दी। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम जारी किया। नतीजों में छात्राओं ने एक बार फिर बाजी मारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, यमुना का पानी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान लाने के लिए समय सीमा तय की गई और प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में प्रचंड गर्मी से जनजीवन प्रभावित। फलोदी और जैसलमेर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री से ऊपर पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से 12 जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक है लक्ष्मी चंद नागर। हाड़ौती अंचल का 12 जिला प्राचीन मंदिरों, शेरगढ़ किले और अन्य पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। इस कृषि प्रधान क्षेत्र को वराह नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इन दिनों 12 जिला भीषण गर्मी और हीट वेव की चपेट में है। दिन का तापमान हाल ही में 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से लोग बेहाल हो रहे हैं। वहीं अस्पतालों में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। चिकित्सा संस्थानों में लू और तापघात के रोगियों के उपचार के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। साथ ही जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। 15 दिन के ग्राम रथ अभियान के तहत जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ग्राम रथ अंता, अट्रू, छबड़ा और किशनगंज शाहबाद क्षेत्र के गांवों में इन योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के बारे में भी ग्रामीणों, किसानों और पशुपालकों को बताया जा रहा है। एलईडी मोबाइल वैन के जरिए ऑडियो वीडियो प्रस्तुति हो रही है। वहीं नुक्कड़ नाटक और संध्या चौपालों में भी लोगों की अच्छी भागीदारी रही है। अब तक अंता, मियाड़ा, अटरू, रिचंदा, किशनगंज और छबड़ा सहित विभिन्न पंचायतों में ग्राम रथ पहुंचने पर ग्रामीणों ने उत्साह के साथ स्वागत किया और विभिन्न जनहित योजनाओं के बारे में जानकारी ली। जिला प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने अंता की तुलसा पंचायत में ग्राम रथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में श्री देवासी ने बताया कि इस अभियान के तहत सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही आम लोगों की समस्याओं और सुझावों पर भी गंभीरता से काम किया जा रहा है। इसके लिए ग्राम रथों में शिकायत और सुझाव पेटिका लगाई गई है। जिला प्रभारी मंत्री ने बामला ग्राम पंचायत पर रात्रि चौपाल में लोगों की समस्याएं सुनी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बाल मुकुंद असावा ने पिछले दिनों 12 जिले के कलेक्टर के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जिले के विकास की प्राथमिकता बताई। श्री असावा ने सहरिया, बहुल, शाहबाद क्षेत्र का दौरा कर शैक्षणिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बास्तुनी के जनजातीय बालक छात्रावास का निरीक्षण कर विद्यार्थियों से बातचीत की। उन्होंने भीषण गर्मी के दौर को देखते हुए छात्रावास में पर्याप्त संख्या में कूलर और पंखे लगाने तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने छात्रावास परिसर की नियमित रूप से साफ सफाई करने को भी कहा। प्रमुख जनगणना अधिकारी और जिला कलेक्टर ने बीते दिनों स्वगणना कर जनगणना प्रक्रिया 2027 के पहले चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपना ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज करने की अपील की। जिले में जनगणना कार्य को सुव्यवस्थित संपन्न कराने के लिए 2,242 प्रगणक और 377 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। जिले में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से आमजन की सुविधा के लिए 5 से 7 मई तक पासपोर्ट सेवा शिविर का आयोजन किया गया। भारतीय विदेश सेवा के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विपुल देव ने बताया कि पासपोर्ट सेवाओं को अधिक सुलभ, सरल और अनुकूल बनाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस पहल के माध्यम से जिले में निवास करने वाले नागरिकों को अपने स्थानीय क्षेत्र में ही पासपोर्ट बनवाने की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे उनके समय और संसाधनों की बचत सुनिश्चित होगी। इसी क्रम में मोबाइल पासपोर्ट वैन के माध्यम से 3 दिवसीय पासपोर्ट शिविर का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर में किया जा रहा है। इसमें प्रतिदिन 40 पासपोर्ट आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अठरू 12 विधायक राधेश्याम बैरवा ने 4 मई से अपने विधानसभा क्षेत्र में आपका विधायक आपके द्वार जनसुनवाई कार्यक्रम शुरू किया। करीब 1.5 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य गांवों और वार्ड स्तर पर लोगों की समस्या का त्वरित निस्तारण करना है। जिला कलेक्ट्रेट भवन पर पिछले दिनों हवाई हमला होने की आपात स्थिति की मॉक ड्रिल की गई।
इस दौरान हवाई हमले की सूचना से समूचा क्षेत्र सायरन की आवाजों से गूंज उठा। बचाव और सुरक्षा दलों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किए। जिला कलेक्टर के साथ ही पुलिस अधीक्षक ने राहत और बचाव कार्य की कमान संभाली। साथ ही जिला मुख्यालय पर ब्लैक आउट कर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और घरों की लाइटों

0: को बंद करवाया गया। विश्व विरासत दिवस के उपलक्ष्य में 12वीं संगोष्ठी का आयोजन हुआ। 12 जिले की विरासत और हमारे प्रयास विषय पर संगोष्ठी रखी गई। कार्यक्रम में कला संस्कृति विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी संदीप सिंह जादौन ने बताया कि जिले की ऐतिहासिक धरोहरें 12 की सांस्कृतिक पहचान है। इसके साथ ही 12 जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, केंद्रीय मंत्रिमंडल खरीफ विपणन सीजन 2026-27 सारू 14 साखारा सरकारी मोल माए बढ़ोतरी री मंजूरी दीनी। CBSE 12वीं कक्षा रा इम्तिहान रो नतीजो जारी कीनो, लड़कियां बाजी मारी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो, यमुना नदी रो पानी पाइपलाइन रे जरिए राजस्थान लावण दी मियाद तय करी ची। और प्रदेश रा आतुणी और लंकाऊ उगनी हलका माए जबरदस्त गर्मी। फलौदी और जैसलमेर माए पारो 46 डिग्री सेल्सियस रे पार पुग्यो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय मंत्रिमंडल विपणन सीजन 2026-27 सारू खरीफ री 14 साखारा सरकारी मूल माए बढ़ोतरी री मंजूरी दे दीनी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली माए आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि मौजूदा खरीफ सीजन सारू किसाना ने करीब 2,60,000 करोड़ रुपया रो चुकारो करियो चावेला।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव बतायो कि सब 32,622 रुपया प्रति क्विंटल दी बढ़ोतरी सूरजमुखी रा बीजा सारू करी ची है। इस आगे कपास रा दाम माए 557 रुपया और तिल्ली रा मोल माए 500 रुपया प्रति क्विंटल दी बढ़ोतरी करण रो फैसलो करी चियो। इन फैसला पाछे ग्रेड ए धान रो मोल 2,461 रुपया, हाइब्रिड ज्वार रो मोल 4,023 रुपया और बाजरा रो मोल 2,900 रुपया प्रति क्विंटल भैला। तुअर्री दाल रो सरकारी मोल 8,450 रुपया प्रति क्विंटल तय करी चियो है। श्री वैष्णव बतायो कि इन सीजन माए सरकार का न्यू 824 लाख मीट्रिक टन 32 साखारे खरीदी रो अनुमान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल 37,500 करोड़ रुपया रा खर्चू कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनावां सारू खास योजना ने ही मंजूरी देनी।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 12वीं कक्षा री परीक्षा रा नतीजा रो आज ऐलान कर दिनो। ओ इम्तिहान देवनमाला मायो 85.20% पास वे क्या। इम्तिहान माए लड़कियां रो नतीजो 88.86% जबकि लड़का रो नतीजो 82.13% रहो। बोर्ड रे मुजब विज्ञान वाणिज्य और कला संकाय माए लीरीजी परीक्षा माए 17,68,000 विद्यार्थी शामिल थिया, जमायू 15,07,000 पास वे क्या। अजमेर रीजन इम्तिहान देवन वाला मायू 86.78% पास वे क्या। अजमेर रीजन माए इम्तिहान देवन वाला 88,118 विद्यार्थियां मायू 76,469 पास वे क्या। हालांकि अजमेर रीजन माए लाडला साल री तुलना माए इस साल पास पेमेंट वाला रो प्रतिशत कम रहो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आवता दिना ली जावन वाली न्यारी न्यारी भर्ती परीक्षाओं रो नुवो कार्यक्रम जारी कीनो है। इन्हें मुजब वन पाल सीधी भर्ती परीक्षा

0: परीक्षा 2026 28 जून न फैला, जबकि सेकेंड ग्रेड क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2025 5 जुलाई न लीचा वेला। पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा 2026 24 जुलाई न फैला। राज्य पुलिस रो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 माए फर्जीवाड़ो करण और रिकॉर्ड माए हेराफेरी करण रा आरोप माए दो जना ने गिरफ्तार कीना है। पकड़ीजिया आरोपिता माए राजेश कुमार और राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर रो कर्मचारी मान सिंह शामिल है। जांच रे दौरान राजेश कानियों वानी ठौड़ दूजा ने बिठार परीक्षा पास कर और नौकरी हासिल करण री ठा पड़ी। इन पाछे वहाँ कानियों RPSC रा रिकॉर्ड माए फोटो बदली करण सारू मान सिंह 8 लाख रुपया माए सौदा करण री ठा पड़ी। SOG आरोपित राजेश कुमार ने 18 मई ताई रिमांड माथे ले लीनो है। राज्यपाल और विश्वविद्यालय रा कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े कहो है कि खेतीबाड़ी जुड़ी भणाई लिखाई रे जरिए देश माए खाद्य सुरक्षा ते करी जा सके है। वे आज कोटा माए कृषि विश्वविद्यालय रा 9वां दीक्षांत समारोह माए बोल रहा है। श्री बागड़े कहो कि किसाना ने उन्नत बीज और नवी तकनीक जोड़ और खुदरे पान उबा करया जा सके है। राज्यपाल नौजवाना नौकरी करण वाला ने बजाय नौकरी देवन वाला बनवा सारू कहो। वह खेतीबाड़ी माए ड्रोन AI और स्टार्टअप काम लेवन सारू कहो। जलसा माए कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणाई नौजवाना तालीम ने किसाना और देश का भला सारू काम लेवन बाबत कहो। दीक्षांत समारोह माए 358 विद्यार्थियों ने डिग्रियां और 14 विद्यार्थियों ने सोना रा तमगा देर नवाजी चिया। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। यमुना नदी रा पानी जुड़िया करार रा बारा माए राजस्थान और हरियाणा सरकार बीच खास सहमति बनी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज नई दिल्ली माए जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और हरियाणा रा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सागे मीटिंग पाछे आ जानकारी दीनी। श्री शर्मा कहो कि यमुना नदी रो पानी पाइपलाइन रे जरिए राजस्थान लावण रिमियाद तय करती रीची है।
1: किसाऊ के पानी को लेकर के सहमति बनाने का सभी राज्यों में किस तरह से बन सकती है उसके लिए बातचीत हुई है। एक हरियाणा राजस्थान का यमुना का पानी उसकी पाइपलाइन उसके लिए गाइडलाइन तय की है कि जल्दी से जल्दी वो कैसे हो उसके लिए समय तय हुआ है। एक हरियाणा और राजस्थान का RRTS का मामला था उसमें सहमति बनी है कि वो हमारे राजस्थान तक दिल्ली हरियाणा और राजस्थान तक वो पहुंचे। इन सारे विषयों को लेकर के चर्चा हुई है।
0: मीटिंग पाछे हरियाणा रा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतायो कि किसाऊ बांध बन जावणो हरियाणा राजस्थान और दिल्ली माए पानी री समस्या हमेशा सारू खत्म भे जावेला। राज्य सरकार एक जिला एक उत्पाद नीति रा तहत 5 जिला सारू 18 करोड़ रुपए बत्ता खर्च वाली परियोजनावां मंजूर कीनी है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास री सदारत माए राखी जी मीटिंग माए दौसा चूरू डीडवाना कुचामन फलौदी हर बालोतरा माए आ कामा सारू 10,76,00,000 रुपए जारी करी चिया। इन्हें तहत दौसा और डीडवाना कुचामन माए भाटा उद्योग चूरू माए लकड़ी बनिया सामान फलौदी माए सोना मुखी भंडारण और बालोतरा माए टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंटिंग सारू नुआ सेंटर और लैब खोलिया चावेला। राज्य माए कानून व्यवस्था मजबूत बनावण और अपराधियां माथा काबू करण सारू पुलिस मुख्यालय रे ओरों 2 दिन रो नाकाबंदी अभियान चलाई चियो। अभियान रा तहत 727 ठोणा गाड़ियां री जांच करी ची। अतिरिक्त महानिदेशक VK सिंह बतायो के जांच रे दौरान 7,000 बत्ता चालान करी चिया। प्रदेश में डिजिटल जनगणना 2027 रे बारे में जागरूकता अभियान चलायो जा रियो है। भीलवाड़ा जिला में आई कलेक्टर SP सांसद और विधायक खुद डिजिटल जनगणना कीनी। शहर में न्यारी न्यारी ठोणा हमारी जनगणना हमारा अधिकार सरीखा नारा वाला पोस्टर लगार लोगों ने इनू जुड़बारी सीख दी जा रही है। झुंझुनू माई आज प्रगणका सारू खास शिविर लगाई चिया। अरब मौसम प्रदेश रा उत्तराद आतुणी और उगनी हल्का माए जोरदार गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग रे मुजब आज फलौदी सबू गर्म रहो जठे पारो 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज करी चियो। जैसलमेर माए दिन रिभगत तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करी चियो। बाड़मेर बीकानेर चित्तौड़गढ़ माए पारो

0: 41 डिग्री सेल्सियस ने पार कर क्यों। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और बीकानेर माए लू रहा हालात रहा। राजधानी जयपुर माई लू सरीखा हालात विचे कई थोड़ा प्रशासन सड़क माथे पानी रो छिड़काव करवायो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर पाकिस्तान नु लागोड़ी सरहद करने रहा हल्का माए काले जबरदस्त लू बाजन सारू चेतायो है। इस आगे कई जिला सारू ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करी जियो है। इविचे राज्य रा उत्तराद उगनी हल्का माए कठे कठे आज ही आंधी चाली और बिरखाफी। झुंझुनू जिला माए मिलावटखोरी रे खिलाफ स्वास्थ्य विभाग री कार्रवाई रे दौरान मोटी तादाद माए खान पीन री चीजा रा नमूना मानक रे मुजब नहीं मिलिया। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर छोटे लाल गुर्जर बतायो कि जनवरी 2025 हो मार्च 2026 ताई जिला माए खास अभियान राते अतलिया जे 837 नमूना मायू 223 ते मानका माथे खरा नहीं उतरिया। सलूमबर्रा पीएमसी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माए विधायक शांता अमृतलाल मीणा आज संविधान कक्ष और डिजिटल बाल पुस्तकालय जनता ने सौंपिया। ई मौके विधायक विद्यार्थियों नुआ सुविधा रो फायदो लेवन बाबत कहो। वे डीएफएमटी मधु टीन शेट लगावन रा काम री शुरुआती कीनी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय गृह मंत्रालय सागे मिलर विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 सारू माई भारत प्लेटफॉर्म माथे राष्ट्रीय स्तर री सवाल जवाब री होड़ सारू कीनी है। प्रश्नोत्तरी होड़ आवता महीना फेवन वाला सीमावर्ती ग्राम सहभागिता कार्यक्रम माए नौजवाना रा चयन कार्यक्रम रो पहलो दौर है। ई ऑनलाइन होड़ माए 20 मई तई भाग लियो जा सके है। आईपीएल क्रिकेट माए आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स बीच मुकाबलो फैला। ओ मैच अब थोड़ी देर पछे 7:30 बजे रायपुर माए शुरू फैला। अंक तालिका माए फिलहाल कोलकाता नाइट राइडर्स 8वीं छोड़ माथे है जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूजा पायदान माथे है। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ली रहो। केंद्रीय मंत्रिमंडल खरीफ विपणन सीजन 2026-27 सारू 14 शाखाना सरकारी मूल माए बढ़ोतरी री मंजूरी दीनी। सीबीएसई 12वीं कक्षा रा इम्तिहान रो नतीजो जारी कीनो। लड़कियां बाजी मारी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो यमुना नदी रो पानी पाइप लेन रे जरिए राजस्थान लावण री मियाद तय करी जी। और प्रदेश रा तुणी और लंका उगनी हल्का माए जबरदस्त गर्मी। फलौदी और जैसलमेर माए पारो 46 डिग्री सेल्सियस रे पार पुग्यो। इसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत।

रखा हुआ है, सूती हुए, तो ये चीज अपनो और ध्यान रखना घर में भी कि घर में थोड़ा ठंडो रखना, दोपहर में खिड़की बंद रहे लेकिन शाम में अपन खोल देनी है, दिन में कम से कम एक दो बार स्नान हो जावे और खाली पेट अपन घर से निकलना को नहीं, हो सके तो चाय कॉफ़ी सॉफ्ट ड्रिंक्स ये थोड़ा कम पियो, ये जगह आप घरेलू जो शिकंजी है छाछ है ये उपयोग करो, और लू अगर जो कोई आदमी लग जावे तो उन्हें तुरंत छाया में ले जाऊँ ठंडी जगह में ले जाऊँ, और गीले कपड़े जो सही ना पूछो और उन्हें इलेक्ट्रोल दो, तो छोटी छोटी जानकारी जो अपन की है कि ध्यान होनी चाहिए, वो बात की है कि भाई जो अपना बच्चा है बच्चों ने रोकना बड़ा मुश्किल है, उन्होंने भी की कोशिश करनी चाहिए दोपहर में आप घर में रखो बाहर नहीं निकलन दो, और कोई कारण से बच्चा अगर बाहर निकले तो चप्पल पहनो ताकि की है जो को पगों में गर्मी है वो ऊपर दिमाग में नहीं चढ़ता है, और अपना वृद्ध है उन्होंने भी बराबर ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात की है अपने जो पशुधन है पशुधन की बोलो है कि के को सके तो गायों है बकरे है तो युवा से की बाड़े की व्यवस्था हुए तो कम की है जो पशु है वो छाए में बैठ सके, उस बात उम्र पानी की बराबर व्यवस्था हुए जल रही जो गाय है थार पाकर तो ठीक है जी, अगर जी अपना जर्सी गाय है या अमेरिकन है तो एक ही गर्मी के मौसम की होंफे बेगी तो इन्हों की एक स्नान भी करवानी पड़ी ये वैसे कूलर भी लगाना पड़े तो अपना पशुधन में बराबर ध्यान रखना पड़े, इन्होंने की एक जो खड़ है तो उन्हें भिगो के दियो और पानी जो जो है बराबर इन की गेड़ा जो फल है जो दो जिसकी पानी की कमी बराबर होती रही टीकाकरण समय समय मत कराऊँ, और कोई कारणवश कोई पशु अकाल मृत्यु हो जावे नहीं तो उन्हें बाकी पशुओं से मतलब दूर जाके खड्डो खोन के बोल देना चाहिए, छोटी छोटी चर्चा आप चर्चा आगे जारी रखो लेकिन पहले सुनो पहले लोकगीत।

संपत होवे तो घर भला, नी तो भला परदेश।

Bye, Shaka.

I'm here to be my

Olha lá!

后面毛的男的，俺的大哥的，大哥的后面毛的，俺的马头的。

0: hold that muffin noise out there.
1: हेलो, आज युग की एक प्रतिस्पर्धा युग है। हाँ, आदमी चाहो कि कम समय में बढ़िया पैसा कमाओ, तो यही बात की एक अपने जो किसान भाई भी है वो देखने को मिलेगा। आजकल की एक जो को खेती बाड़ी है नहीं, तो वो मैं कि जैविक खाद उपयोग थोड़ा कम है और रासायनिक खाद उपयोग ज़्यादा है। क्यों तात्पर्य का ज़्यादा फसल लेने से कम रासायनिक खाद जो उपयोग करे नहीं, उसके प्रकार नुकसान है। एक तो अपन महंगी पड़ी जमीन नुकसान, अपन आपनों जो को उपयोग ले नुकसान। तो अपन कोशिश यह करनी चाहिए अपन जैविक खाद रो ही उपयोग कर, ये कोई रासायनिक खाद उपयोग नहीं करना चाहिए। रासायनिक खाद उपयोग यह है कि अपन जो मिट्टी की जांच करें। आज के समय में अपन किसान कॉल सेंटर फोन करके भी पता कर सकें मिट्टी ने चार कोणों से लेके और बीच में से लेके मिट्टी की जाँच कराओ, उस अपन मालूम पड़ जा सके अपन मिट्टी जो उपजाऊ क्षमता कितनी है, उस हिसाब से अपना रासायनिक खाद देनी है। लेकिन क्यों नहीं, प्रतिस्पर्धा में अगर जैसे अपन जरूर ज़्यादा कर सको तो नुकसान है। छोटे से उदाहरण, थोड़ा कोई चीज़ पसंद है, चाहे गुलाब जामुन है कि चमचम जो भी पसंद है, एक खासो बे खासो चार खासो जी सोरो से अगर जो से 10-15-20 खा ले सो तो अधीर से उल्टी हो से। यही बात जमीन में भी लागू हुई, जितनी आवश्यकता हो उतनी रासायनिक खाद हो, अगर जो ज़्यादा कर सो अपनी जमीन धीरे धीरे बंजर ला सके। और जैविक खाद में अपन कई फायदा है, एक तो की है कि अपनी जो लागत है कम है, और बात अपनों नुकसान को नहीं, तीसरी बात कि भी जो कोई उपयोग में ले जैविक खाद उन्होंने भी फायदे हो। और बाजार में जब बिकड़ में जाओ ही नहीं तो रासायनिक खाद करते जैविक खाद जो फसल हो नहीं और पैसा भी अपन हकरा मिले, तो चौफेर फायदे है तो अपन जैविक खाद उपयोग करो। उस साथ देखो जैविक खाद में जो आप पहले बात की थी पशुधन ही, पशु के साथ की धन जुड़ हो गई। अगर आप खेती और पशु दो एक साथ कर दो एक दूसरे पूरक है और फसल चक्र अपनाओ, एक पास है कि पशु खड़ा कर दो बीजे पास है की फसल और बाद की एक फसल चक्र है कि आते हैं जो अपने जो फसल उन पशु वाले लो खेती नहीं करो, जो गाय गोबर है बकरिया मींगने इन सड़ा के कौन में लो, तो खेत री खाद खेत में तैयार हो जाए। उरे बाद जो अपना पशु है वो बोबोसर है अपन घास है। और आज समय देखते हुए देखो कि अगर पशुधन है, एक तो की बे चार गाय हुए गड्डो बकरे हुए तो आप बुलाने कर घरे कौन में लो। पशुधन से तात्पर्य है कि आपको अच्छी खासी तादाद में बकरियाँ छोंग हुए गाय हुए तो आप डेयरी फार्म लगाओ, तो दूध दही मक्खन घी पनीर तो ये सब चीज़ों की है कंस की अपन पैसा अतिरिक्त आय प्राप्त हुई। जैसलमेर जो पर्यटन है कई अपन पर्यटक आई तो ये चीज़ और की है खपत भी ज़्यादा है और पैसों भी रोकड़ो है। और जब आदमी को पैसे रोकड़ो हुए नहीं तो उन्हें किए एक मतलब कि एक मनोबल ऊँचो हो जाए, आत्मविश्वास बढ़ जाए, जोखम लेने शक्ति भी बढ़ जाए, तो वो पैसे ना आप खेतों में यूज लो। अपन खेती बाड़ी साथ साथ देखो पहले कदे पौधा लगाया, पहले कदे देखो तो कदे बोर होता था या कालिंग चीबड़ी, आज समय परिवर्तन देखो खजूर है अनार है बोर भी मोटा मोटा बोर है, तो समय परिवर्तन साथ की अपन भी साथ में परिवर्तित होना है। और साथ में जो पौधा लगा सो तो वो भी हाकर मिले, तो समय साथ चलो पशुधन है। और देखो

आज उस समय तो बढ़िया समय का अपन मौसम बारे में पहले जानकारी मिल जाओगी कि 4-5 दिन पहले ठाकुर देखो आंधी है, बरसात है, की है, तो लगभग वो सटी की बैठे तो उस अपन की आप जाप तो अपन तैयारी में काफी फायदा हुए घनी बार की फसल ले लो लेकिन भंडारण कौन में सही। अगर अपन मौसम जो तंत्र है सही ढंग से जानकारी दे देवी तो अपन अपने फसल नहीं सुरक्षित कर सकें। तो छोटी छोटी चीज़ें अपन भाई लोगों ने सचेत रहो पड़ से। आगे अपन चर्चा जारी रखें लेकिन पहले सुना लोकगीत।

अरे बाणा पड़री पिंदरी वो तो पोता हटी होए ओ अवे हिचकी ने अवे हिचकी ने अरे अगड़ी पति नरी अरे अगड़ी।

ಅಲ್ಲಿ ಜೋತಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ.

ਜੋ ਤਾਰੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆ।

I'm not going to be able to do it.

डूंगर मार डूंगरी मार घाट कड़े सोनार चमाचम

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, राही हम अपनी राहों के।
1: आजादी का अमृत महोत्सव।

0: अरे वाह, कितना सुंदर गांव है। और एक पहले ये गांव हुआ करता था जब मैं गांव के दौरे पे आया करता था। अरे वाह, चलिए सरपंच साहिबा है हमारी इस गांव की, मिलते हैं और देखते हैं ये परिवर्तन इतना आखिर आया कैसे है। अरे वो शायद सरपंच साहिबा ही चली आ रही है। अरे नमस्ते सरपंच साहिबा।
1: अरे अरे नमस्ते किशन भैया, आइए आइए,
0: अरे
1: आज आज क्या
0: वाह,
1: बात है, गांव में आपके दर्शन हुए।
0: अरे सरपंच साहिबा, आपको तो पता ही है कि जो भी सरकारी योजनाएं गांव में लागू होती है ना, तो
1: जी
0: उसका जायजा लेने के लिए हमें गांव में जाना पड़ता है कि
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: गांव में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो आज मैंने सोचा कि आज आपके ही गांव में हम देख लेते हैं क्या कुछ हुआ है।
1: हाँ
0: तो
1: हाँ बिल्कुल,
0: इतना
1: आइए देखिए हमारा गांव तो कितनी तरक्की कर चुका है, आइए आप देखिए।
0: इतना सुंदर गांव, साफ सफाई देखिए, वेल अप टू डेट ड्रेस में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और आपके गांव की साफ सफाई, सड़कें, और देखिए गांव में कहीं धुआं वगैरह पहले जो देखने को मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शहरों में और गांव में कोई ज्यादा फर्क नहीं है,
1: अरे
0: स्ट्रीट
1: नहीं
0: लाइट
1: किशन
0: भी
1: भैया,
0: है।
1: और देखो मेरी तो पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं हर गांव की महिला को, पुरुष को, बच्चों को, सभी को अपना गाइडेंस देती रहूं, उन्हें सिखाती समझाती रहूं, और सबसे अच्छी बात है कि गांव वाले फॉलो भी कर रहे हैं
0: अरे
1: जो जो उन्हें
0: वाह,
1: बताया
0: अच्छा।
1: जा रहा है। और फिर सरकार की अलग अलग योजनाएं तो हैं ही जिनका लाभ अब वो सारे इतने अवेयर हो चुके हैं और लाभ उठा भी रहे हैं।
0: सरपंच साहब, मैं चाहता हूं कि जो लाभार्थी हैं आपके गांव में कुछ महिलाएं होंगी,
1: हाँ हाँ
0: और तो उनका जीवन इन योजनाओं के माध्यम से कैसे बदला है, तो कुछ महिलाओं का आप बुला
1: अरे
0: सकती हो?
1: किशन भैया क्या बताऊं, जरूर जरूर मैं आपको उन महिलाओं से तो मिलवाऊंगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ सालों में इतना चेंज आ गया है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड देख लीजिए, और इनफैक्ट हर घर में अब ऐसा लगता है कि जैसे खुशहाली सी आ गई है,
0: हाँ बिल्कुल
1: हर कोई
0: बिल्कुल,
1: चेहरा, बच्चा बड़ा, सब कुछ खुश नजर आने लगे हैं और पूरा सरकारी योजनाओं का लाभ वो उठा रहे हैं। तो चलिए मैं अब टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको लेकर चलती हूँ। अभी अभी मैंने देखा था कि वहाँ चौपाल में तीन चार महिलाएं बैठी थी, मैं अभी
0: अरे
1: उनसे चर्चा करके आ रही हूँ, तो क्यों ना आप भी वहीं चलिए।
0: अरे बिल्कुल बिल्कुल, चलिए
1: हाँ
0: तो
1: चलिए चलिए
0: आपकी
1: चलिए।
0: चौपाल में भी देख लेंगे क्या कुछ होता है। और सचमुच ही मैं इस गांव से होके गुजर रहा हूँ तो मुझे कहीं फील ही नहीं हो रहा कि मैं और जो उसी गांव में आया हूँ उस आज से
1: अरे जरूर
0: पांच सात
1: किशन
0: साल
1: भैया,
0: पहले।
1: और आप एक चीज और पाओगे कि जो महिला सशक्तिकरण हुआ है,
0: हाँ
1: जैसे

0: पहले गांव की महिलाओं को दबा के रखा जाता था और महिलाओं में जो कॉन्फिडेंस की कमी थी ना, अभी पिछले कुछ बीते वक्त से आप चल के जब उनसे बात करोगे ना, आप रियलाइज करोगे कि उनमें कितना चेंज आया है। देखो उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ गया।
1: रुकिएगा सरपंच साहिबा, अरे ये आपका ये स्वर्ग जैसा अमृत सरोवर बड़ा सुंदर दिख रहा है। पहले कितनी गंदगी और अभी तो बोटिंग वगैरह इसमें है और ये कैसे?
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल,
1: अमृत सरोवर योजना का मुझे लग रहा है चमत्कार दिख रहा है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। अमृत सरोवर योजना के तहत पहले यहाँ की सफाई करवाई गई और फिर धीरे धीरे इसको बोटिंग पर्पस के लिए भी ले लिया गया, जिससे कि कमाई भी होती रहे, लोगों को रोजगार भी मिले और गांव में एक नयापन आता है। और पहले जो शहरी लोग जो गांव से कतराते थे ना, आना नहीं चाहते थे, आजकल वो छुट्टियां मनाने गांव आकर रहना चाहते हैं, आसपास अपने फार्म हाउस बना लिए हैं।
1: सरपंच साहब, ये ऑटो और ये बस, ये क्या बात है कि गांव में बस भी आ गई? अरे वाह क्या बात है। और साथ में
0: अरे जब से सड़कों का निर्माण हुआ है ना, पक्की सड़कें जब से बनी हैं, तो गांव में अंदर तक बस। अरे नहीं तो पहले अगर किसी गांव वालों को शहर जाना होता था तो उन्हें गांव से इतनी दूर जाकर बस पकड़नी होती थी और उतने में ही वो थक जाया करते थे। चलिए तो क्यों ना आप चलिए ना, मैं आपको मिलवाती हूँ।
1: ये तो सामने दिख रही यही है ना चौपाल?
0: हाँ हाँ, आइए आइए आइए।
2: सरपंच जी आओ
0: आप। अरे बहनों देखो आज किशन भैया आए हैं।
1: अरे
2: अच्छा, हाँ भैया
0: याद आया।
2: किशन भैया नमस्ते नमस्ते।
1: राम राम राम राम।
2: नमस्कार।
1: ये तो गंगा बह गए लखपति दीदी।
2: अरे अरे अरे अरे, आप मुझे,
1: आप तो बिल्कुल बदल गई हो। आपके देखो जब मैं आया था एक चेहरा बुझा हुआ, कोई चिंता की लकीरें होती थी, आज तो बड़ी खुश दिख रही हो। अरे अरे अरे जमुना बहन, अरे जमुना बहन, आपके आंखों में तो हमेशा वो आंसू दिखा करते थे।
2: अरे अब कहाँ वो आंसू। अरे किशन भैया अब तो आंखें चमक गई है मेरी।
1: ये शायद पद्मा बहन है ना?
2: हाँ किशन भैया, मैं वही पद्मा बहन।
1: पहली बार मिली थी ना?
2: हाँ पहले आपको मिली थी, तब देखा
1: ओ, मटका लेके
2: लेकर लाइन में खड़ी थी। अब वो दिन गए किशन भैया।
1: अच्छा अच्छा अच्छा। अरे सरपंच साहिबा, तो ये तो मुझे इनके चेहरे से ही लग रहा है कि गांव में इतना परिवर्तन आया है।
0: बिल्कुल, मैंने आपको कहा ही था किशन भैया। देखो बहनों, ये किशन भैया ही हैं, इनका तो हम जितना धन्यवाद दें उतना कम है, क्योंकि सरकार की योजनाएं तो देखो बहुत हैं, लेकिन उनसे हमें लाभ कैसे मिलेगा और क्या क्या उसका प्रोसीजर है, ये सारी चीजें तो आखिर हमें किशन भैया ने ही इन सबसे अवगत कराया है।
1: अरे वो दूर कोने में वो और भी तो बैठी है, राखी बहन।
2: अरे मैं राखी, पहचाना नहीं आपने?
1: अरे राखी बहन इतनी दूर क्यों बैठी हो?
2: हाँ, दूर कहाँ किशन भैया, आपको कैसे भूल सकती हूँ, बड़ी खुशी हुई आप इतने दिन बाद दिखाई दिए।
1: मैं समझ गया कि हमारा जैसलमेर है ना एक पर्यटन नगरी है और आप तो पर्यटकों का जो यहाँ पर भ्रमण कराने का, उनकी सुख सुविधाएं जुटाने का काम करती हो।
2: अरे ये तो किशन भैया, किशन बेटा कहीं की कहीं दूर दूर की सारी बातें बता देती है घूमने आने वालों को।
1: अच्छा सरपंच साहिबा, मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारी बहनें हैं इनसे हम उन योजनाओं के बारे में जो लाभ लिया, क्या इनके जीवन में परिवर्तन आया?
0: जी जी बिल्कुल, एक एक करके देखो बहनों आप बताओ कि किस तरह से आपके जीवन में परिवर्तन आया और इन योजनाओं का जो लाभ आपने उठाया है तो उससे आपको क्या फायदा मिला और परिवार का जो स्तर ऊंचा उठा, जो हमारे जीवन में खुशहाली आई, तो जरा किशन भैया को बताओ तो सही कि ये सब हुआ कैसे।
1: सरपंच साहिबा देखो, हमारा जो राजस्थान का एरिया है सबसे बड़ी समस्या यहाँ वर्षों से रही है, यूं कहें कि सदियों से रही है, वो रही है पानी की।
0: बिल्कुल,
1: तो पहले तो हम जो सबसे खुश दिखाई दे रही है, वैसे तो सबके घर में घर घर जल पहुंचा ही है नल के द्वारा, तो कौन बताएगा घर घर जल योजना का क्या लाभ हुआ है?
2: अरे किशन भैया, हाँ मैं ही बताऊंगी।
1: ओ बिल्कुल,
2: क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ भी तो मुझे होती थी।
1: हाँ बिल्कुल।
0: अरे किशन भैया, राजस्थान के बारे में जो हमारी आम धारणा लोगों की रही है ना, वो अब तक यही है कि राजस्थान मतलब सूखा, जहाँ पानी नहीं मिलता लोगों को, तो इस वजह से कई लोग यहाँ पे आना भी नहीं चाहते। तो अब ये जो धारणा है ये बदली है। अरे पद्मा बताओ ना बेटा।
3: अरे आपको क्या बताऊं, अब तो घर में नल होने से मुझे इतनी सुविधा हो गई है कि अब पहले जब नींद से उठती थी तो ऐसे लगता था अब मैं मटका लेकर जाऊंगी, पानी मिलेगा भी या नहीं मिलेगा।
0: बिल्कुल,
3: अब तो सुबह उठते ही नल में ताजा पानी आता है, सबसे पहले तो पीने का पानी भर लेती हूँ और फिर खाना बनाती हूँ वो अलग पानी रखती हूँ।

0: बर्तन में। और बच्चे तो इतने खुश होते हैं क्योंकि आपको पता ही है खाद्य सामग्री भी पानी के बिना नहीं बनती, और रोज और अलग अलग व्यंजन बनाती हूं।
1: पानी का जो तुम पानी की जो खपत है या पानी का यूज है वो सही तरीके से तो करती हो, देख ध्यान रखती हो कि बर्बाद तो नहीं हो रहे।
0: अरे दीदी जब नल आते हैं तब पहले तो मैं कपड़े धोने का पानी इकट्ठा करती हूँ, पानी पीने का भर के रखती हूँ, और रसोई में तो अलग से दो मटके भर के रखती हूँ ताकि बच्चों के लिए कुछ भी खाना बनाना है, घर वालों के कुछ भी खाना बनाना है उस पानी का उसमें उपयोग लेती हूँ। पीने का पानी अलग रखती हूँ और जो बर्तन साफ करती हूँ उसका पानी भी अलग रखती हूँ। और आपको पता ही है एक घंटे में नल आते हैं उतने में मेरा तो काफी पानी भर जाता है, और घर की तो इतनी साफ सफाई रहती है, स्वच्छता।
1: तो जो बचा हुआ पानी है उसको कहीं ना कहीं उपयोग में लेती हो या नहीं?
0: अब तो घर में शौचालय भी बन गया है तो जो व्यर्थ होता है पानी, व्यर्थ जो जैसे मैं कह सकती हूँ कपड़े साफ करती हूँ तो वो साबुन वाला पानी होता है, उनको मैं शौचालय में डाल देती हूँ जिससे घर में भी स्वच्छता रहती है,
1: आंगन की साफ सफाई हो सकती है।
0: हाँ।
1: बर्तनों से निकला पानी पौधों में डाला
0: पौधों
1: जा सकता
0: में डाल
1: है।
0: सकती हूँ
1: तो वो सब
0: तो पानी ही पानी है घर में।
1: अरे वाह वाह,
0: पहले तो इतनी दिक्कत होती थी कि कोई आ भी जाते थे घर में मेहमान तो ऐसे लगता था कि अब इतने सारे लोग आए हैं तो पानी तो कम है, कैसे खाना बनाऊंगी, कैसे बर्तन साफ करूंगी, कैसे उनको पानी पिलाने के लिए रखूंगी। अब तो जब से ये हमारी मोदी सरकार आई है पानी की समस्या को तो जड़ से ही खत्म कर दिया है।
1: बिल्कुल
2: बहन, तो बड़ा फायदा हो गया,
3: सभी बहनों को फायदा हुआ है ना।
2: मेरा नुकसान हो गया इसके फायदे में।
3: कैसे?
2: अरे दिन में 10 बार पानी लेने जाती थी तो मिलती थी, दिखती थी, सुख दुख बांटती थी, कभी चाय ले आती थी, कभी कुछ खाने को लाती। अब ना घर से बाहर जल को निकलना, ना इसका घर से बाहर आना।
0: बहन तो बातें तो खूब करती लेकिन पानी कहाँ लाती, खाली मटका लेकर घर में आ जाती थी।
1: ये बात बिल्कुल सही है। अरे जल बिना तो सब सूना है, जल बिना कोई कल नहीं, इसीलिए तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये योजना चलाई जल वाली बहुत अच्छी रही। अरे किशन भैया क्या बताऊं, ये पद्मा बहन जो बोल रही है, पद्मा बहन जो बात कर रही है 16 आने सच है। अब तो खरा सोना है हमारा पानी, इतना शुद्ध और साफ आता है और कहीं दूर जाने भी नहीं पड़ता लेने के लिए।
3: अच्छा पद्मा बहन, जब सुबह सुबह आप मटकी लेकर के निकलती थी और ये जरूरी नहीं था कि वहाँ पानी मिल ही जाए, एक तो नल हुआ करता था सरकारी और उसमें इतनी भीड़ लग जाती थी है ना, तो वो अब जो समय बचता है अब तो घर पे ही कहीं जाना नहीं है, नल आ गया तो अरे समय का उपयोग कैसे करते हैं?
0: किशन भैया एक बात बताऊं आपको, एक तो समय बचता था, दूसरी में लड़ाई हो जाती थी रोज की, मटका लेकर जाती थी मैं खड़ी होती, मेरे से आगे पड़ोस की दूसरी औरतें आकर खड़ी हो जाती थी।
2: सुगनी कैसे?
0: हाँ तो वो तो तेरे बीच में। अरे तेरे को पता नहीं है वो सुगनी तो हमेशा लड़ाई करती थी, और फिर आखिर में ऐसा होता था मैं खाली मटका लेकर घर में आती थी और वो अपना पानी भर के चले जाते थे। तो अब तो मेरे समय की भी बचत हो गई।
1: अब कभी क्यों समय की बचत हुई है तो किशन बाबू यही तो पूछ रहे हैं, बता बता जरा तू सिलाई का काम करना सीख गई है जो।
0: अरे किशन भैया अब मेरे पास टाइम होता है तो मैं उस टाइम में सिलाई का काम कर लेती हूँ। सिलाई का काम करके मैंने छोटा सा कुटीर उद्योग खोल दिया है अपने घर में।
3: और मैंने देखा था अभी मैं गांव में आ रहा था ना, तो कई बहनें तो बच्चों को पढ़ाने का भी काम कर रही थी।
0: हाँ हाँ किशन भैया कई
3: उनका काम जल्दी निपट जाता है, समय बचेगा तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उससे पहले वो बच्चों को कुछ पढ़ा देते थे।
0: हाँ किशन भैया,
3: सरपंच साहिबा एक बात और भी जानना चाहता हूँ।
0: हाँ हाँ बोलिए।
3: देखिए आपके गांव की जो महिलाएं, जो अब इनके पास सब महिलाओं के पास समय तो बचता है ना,
0: बिल्कुल,
3: अब उस समय का उपयोग ये सारी महिलाएं मिलकर एक ग्रुप बना सकती हैं और आगे बढ़ने का रास्ता यहाँ से बहुत दूर तक जाएगा।
0: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, कोई अपना मिलकर उद्योग जो है लघु उद्योग शुरू कर सकती
3: है, कोई कुटीर उद्योग। इसमें क्या होगा कि मिनिमम 7 महिलाएं मिलकर के एक ग्रुप बना लेंगी ना तो उससे बैंक से मदद मिल जाएगी।
1: अरे किशन भैया देखिए क्या होता है, मेरा मानना है कि जो अभाव होता है ना जीवन में और जो जीवन में कमियां होती है तो वो अंदर अंदर कुंठा पैदा करती है। अब आप देख रहे हो कि ये एक दूसरे की कितनी तारीफें कर रही है और इनमें आपस में प्रेम कितना बड़ा है।
3: बिल्कुल,
1: इसका
3: बिल्कुल।
1: कारण क्या है कि इनको सुविधाएं मिली, सुविधाएं मिलने से ये संतुष्ट हुई, मन प्रसन्न रहने लगा, और जब मन प्रसन्न रहने लगा तो एक दूसरे में मदद की भावना और मिलने जुलने की भावना जागी। तो अभाव के कारण जो कुंठित मन रहता है उससे हर कोई व्यक्ति चिड़चिड़ा सा हो जाता है, एक दूसरे के प्रति भावनाएं अच्छी नहीं रहती। तो जब सुविधाएं मिली तो देखिए कितना बड़ा फायदा हुआ, आपसी सामंजस्य भी इनका कितना बड़ा है।
2: अरे सरपंच दीदी वो बात भी तो बताओ, सुगनी की बेटी ने वो जो पार्लर का कोर्स करा, वो जो बनाती सबको सुंदर बनाती है।
0: हाँ
2: कैसे देखो।

0: पार्लर का कोर्स सीखा और अब गांव में अभी सबसे फेमस पार्लर उसी का तो है।
1: अब बताओ वो शहर की
0: दुल्हनों को तैयार करना, भाई आत्मनिर्भर बन गई। देखो सुगनी की जो उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन थी तो वो कितनी ऊंची उठ गई है ना। पहले सुगनी भी परेशान रहा करती थी।
2: सरपंच बहना मेरे लिए तो कितनी दिक्कत हो गई है, रोज पानी भरने जाती और ये सुगनी लड़ाई करती। अब पार्लर बिना भी तो नहीं चलता है, आखिर तो सुगनी के घर पे जाना ही पड़ता है मुझे।
0: अरे तो तेरा और सुगनी का प्रेम भी तो बढ़ा है, अब कहाँ लड़ाइयाँ,
2: अब रखना पड़ता है ना प्रेम, क्या करे।
1: अब तो गांव की सुगनी के लिए शहर के पढ़े लिखे लड़कों के छोरों के रिश्ते आते हैं, कितनी बढ़िया बात हो गई।
3: अरे आप तो लखपति दीदी हो ना।
1: हाँ भैया,
3: अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो लखपति दीदी आप बनी तो उसके बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आए।
1: अरे भैया पूछो ही मत, एक तो पहली बात बताऊं, ये बहन से दीदी बन गई, इतना बढ़िया लगता है सुनने में, वरना ये जमुना ये सब मेरे को बहन बहन कहती। अब आप आए, दूसरे लोग आते
3: तो
1: दीदी दीदी,
3: अब बड़ा हो चाहे छोटा हो सब
1: दीदी। अब देखो सब दीदी कहते हैं ना, तो मन में एक विश्वास जागता है कि मेरे को भी कुछ आता है, मैं भी कुछ हूँ इस दुनिया में, मैं भी कुछ कर सकूँ।
3: दीदी पहले जैसे कि घर का जो हम कहें कि कृषि का जो कार्य होते थे या आपके घर में जितनी कमाई के,
1: अरे पहले की बात तो पूछो ही ना, ना ही करो तो ठीक, सब अपने अपने घर में हाथ से ही हर काम करना। अब सबने मिलके और स्वयं सहायता समूह बनाए, बैंकों से पैसा भी ऋण भी मिल गया, तो मशीनें खरीद ली, अब फसलों की कटाई एक साथ हो रही, फसलों की छिनाई एक साथ हो रही।
2: एक बात और बताऊं कि सबसे ज्यादा फायदा तो मेरा हुआ है, पूछो कैसे।
1: हाँ दीदी कैसे।
2: अरे जब अभाव थे तो ये सब परेशान रहती थी, अब रोज के घर में किटकिट पिटपिट, कभी धनी लुगाई में किटपिट, कभी आपस में पड़ोसियों में किटपिट, अब मेरे पास में ये शिकायतें नहीं आती।
3: देखो दीदी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपने योजनाएं आपके घर में आई उससे आप लखपति बनी, हम चाहते हैं कि आपके जैसी ये दीदियां जो लखपति नहीं बन पाई हैं, तो आप उनको भी मदद करो। तो देखिए हमारे गांव के जो कुटीर उद्योग में, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा ज्ञान तो आपको ही है, क्योंकि पहली लखपति दीदी हमारे गाँव की आप ही हो।
1: अरे देखो भैया अपने पास छोटे मोटे जो हुनर है ना, मैं तो यही कहती हूँ गांव की पूरी महिलाओं से, औरतों से, बच्चियों से भी कहती हूँ, जो भी हाथ का हुनर है वो सीखो, उसमें और बढ़िया गुणी बन जाओ, फिर सरकार तो ऋण देने को तैयार बैठी है, समूह बनाओ ऋण लो, और साथ के साथ थोड़ी बहुत उसमें योग्यता चाहिए। बताऊं क्या आपको?
2: बताऊं
1: उसमें एक योग्यता चाहिए कि अपने स्थायी निवास मूल प्रमाण पत्र हो आपके पास, एक आपका आधार कार्ड होना, एक आप क्या कमा रहे हो उसका भी एक आय प्रमाण पत्र देना, बस दो चार बैंक की डायरी और खाता संख्या वगैरह लिखा दो, फिर देखो एक साथ मिलके कितनी कमाई कर सको।
3: सब दीदी होते ही
1: समय का सदुपयोग भी कर सको हो।
3: दीदी जो आप पैसा आप कमाती हैं उसका उपयोग अपने परिवार के लिए कैसे करती हैं?
1: अरे भाई मैंने तो सच बताऊं भैया, अपनी पोती के लिए FD खुलवा दी।
3: अरे
1: आप उसमें अब वो जब देखो, अब देख देख पद्मा बहन, जब वो 19 साल की होगी ना तब सीधे चाहे मैं रहूं के नहीं रहूं, पर उसके हाथ में पूरे 11 लाख रुपए आ जाएंगे, है ना। अब देखो अब वो पढ़े तो अर्जे शादी करे तो
3: अच्छा,
1: जैसे जो चले।
2: तो लखपति दीदी है,
3: लखपति बनी है।
1: हाँ
3: लेकिन अपने पोती को आपने लगता है कि 10 लाख का आपसे इंतजाम कर दिया।
1: अब मैं तो सारी गांव वाली को भी यही कहती हूँ, औरतों को, कि तुम भी अपने पोता पोतियों का भविष्य सुरक्षित कर लो।
0: अरे दीदी सच, दीदी एक बात बोलूं, ये पहले जमुना बहन के घर पे हमेशा खांसी की आवाज आती थी, सांस की आवाज, फूलने की आवाज आती थी, अब तो कम हो गई।
1: हाँ। अब कैसे आएगी?
0: तो लगता है वो बाहर बाहर जाकर चेकअप करवा के आई होगी।
1: अरे नारे तो क्यों आएगा?
0: अरे कैसी गुटर मुटर कर रही हो मेरा नाम लेकर?
2: कुछ नहीं जमुना, पहले तुझे कितनी खांसी होती थी और तेरे सांस की तकलीफ होती थी, अब तो तू एकदम स्वस्थ लग रही है।
0: अरे कहाँ है तू पद्मा बहन, वो तो जमाना गया। अरे अब तो उज्ज्वला आ गई है।
2: अच्छा वो ज्यादा तू चूल्हे पे काम करती थी, उसके धुएं से होता था।
0: बिल्कुल। अरे किशन भाई क्या बताऊं आपको,
3: जब जमुना बहन मिली तो मैंने देखा इसकी आंखों में आंसू,
1: कमजोर सी,
3: तो मैंने कहा दीदी क्या प्रॉब्लम है, तो दीदी कह रही देखो सरकार ने मेरा घर बनवा दिया और देखो दूसरी योजना के किसानों की जो सम्मान निधि भी मिल जाती है, गैस की व्यवस्था भी नहीं, लकड़ी इधर चुपके लाना, धुआं में रोड खाना बना। अब तो दीदी बड़ी खुश नजर
1: आ रही है। बिल्कुल।

0: रही है अब तो।
1: अरे चमकू क्यों ना, अब तो मेरे घर भी उज्जवला है, पूरा उजाला ही उजाला समझ उसे, पहले कहाँ जाती थी। अरे किशन भाई क्या बताऊं,
0: अब जो गटर पटर बोल रही है ये जमुनिया बहन अब जमुना दीदी बन गई।
1: अरे जी बात तो बिल्कुल सही कही
2: साहिबा, मैं आपसे देखो ये जो दीदी है ना हमारी, तो ऐसी बहुत सारी बहनें होंगी जिन्होंने उज्ज्वला योजना का तो लाभ मिला है, लेकिन आप इनसे और हम जानते हैं कि जो समय बचा इससे फायदा क्या हुआ घर में, वो सब चीजें हम अपनी बहन से जानना चाहते हैं।
3: अरे बचे हुए समय का उपयोग ही अपने बच्चों को पढ़ाने में, अगर किसी बहन को कशीदा कारी आती है तो वो अपना वो हुनर कर लेती है या दूसरे कामों में लगाती है, है ना।
2: बहन क्या काम करती है?
1: अरे किशन बाबू क्या बताऊं, वो जमाना था जब जाती थी जंगल में और लकड़ियां लेने के लिए कितनी परेशान होती थी, सरपंच दीदी आपको तो पता ही है।
3: अरे हाँ बेटा,
1: मुझे भारी कुल्हाड़ी ले जाऊं, फिर लकड़ियां काटूं और सर पे उठा के लाऊं इतना गट्ठड़ भारी, अरे मैं तो बहुत थक जाती थी, फिर घर आऊं कब चूल्हा जलाऊं और ये धुआं, आप कह नहीं रहे किशन बाबू आंसू आंसू, तो आंसू तो वो ही थे मेरे।
3: अरे जमुना लेकिन अब तो उज्ज्वला योजना के तहत तेरे घर गैस आ गई है, तो क्यों उन पुराने दिनों को याद करके दुखी होती है, खुश रहे ना।
1: अच्छा, क्या करूं सरपंच मैम, जब याद आती है तो बड़ा लगता है पर अच्छा भी अब लग रहा है।
3: बीती सो बीती जमुना, पुराना वक्त याद मत कर और आज का समय याद रख के खुश रहे। अच्छा एक बात बता कि तू गैस का उपयोग करती है लेकिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखती है या नहीं?
1: अरे बिल्कुल रखती हूँ, मैं तो जब भी खाना बनाती हूँ ना तो ढक्कन लगाती हूँ उस पर, खाना जल्दी बनता है
3: और प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया कर, उससे गैस कम खपत होगी।
1: बिल्कुल,
3: और जब काम में ना लेना हो तो वो गैस सिलेंडर का जो रेगुलेटर है उसका नॉब बंद करके रखा कर।
1: जे बात, तुम तो मेरी पूरी बात सुनो ही ना दीदी, मैं जे भी तो कह रही थी
3: कि जमुना बच्चों की पहुंच से दूर रखना बेटा, ऐसा ना हो कि बच्चे गैस का नॉब ऑन कर दें और गैस लीक हो जाए तो वो खतरा भी बन सकती
1: ना,
3: है।
1: ना दीदी ऐसा कुछ ना है, मैंने तो जहाँ सिलेंडर लगाया है वहाँ पर मैंने छोटा दरवाजा बनाया है तो बच्चे नहीं खोल सकते उसको।
3: बिल्कुल सही बेटा, ऐसा ही। अच्छा बाकी तुम सुन रही हो ना, अपने अपने घरों में तुम भी इन बातों का ध्यान रखा करो और जिनसे भी मिलो तो उनको भी इन बातों से अवगत कराओ ताकि ये सावधानियां वो भी रख सके गैस का उपयोग करते समय। बहुत अच्छे बेटा।
2: अच्छा बहन एक बात और है, देखिए पहले बच्चे स्कूल जाते थे ना, अब सुबह ना तो चूल्हा इतनी जल्दी जल पाता है ना, तो बच्चे कई बार बिना टिफिन के बिना कुछ खाए पिए चले जाते थे।
1: सच कह रहे हो,
2: आप बच्चों को टिफिन तो बना देती हो ना?
1: अरे बिल्कुल, वो भी समय पर बन जाता है क्योंकि अब गैस है तो यूं बन जाता है चुटकी बजाते, पहले कहा फू फू फू करती रहती थी तब जाकर वो चूल्हा जलता तब जाके खाना बनता।
3: अरे किशन भैया बच्चे तो अब हंसते हंसते स्कूल जाते हैं, रोज नया नया नाश्ता लेते हैं।
1: सबसे पहले तो बच्चों को यही रहता था माँ हम खाना नहीं ले जाएंगे क्योंकि अब आप खाना बनाओगे हमारे और धुआं कर दोगे, हमको इस धुएं में ना रहना।
2: अरे दीदी इतनी सारी बातें बता रही हो लेकिन जो आपकी आपका चेहरा में जो बदलाव है, पहले जो आंसू आते थे और जो पहले कह रही ना हमारी दीदियां के ये सब खांसते रहते थे, ज्यादातर घरों में खांसी बहुत होती थी।
3: हाँ हाँ किशन भैया, जमुना के तो खांसी इतनी रहती थी जब भी घर के आगे से निकलती थी खांसी की आवाज आती रहती थी।
1: अरे
2: क्या क्या कुछ परिवर्तन हुआ?
1: बहुत परिवर्तन हो गया है किशन बाबू, पहले तो महिलाओं में आंखों की बीमारी हो जाती थी, वो कोई मोतिया मोतिया करके कुछ था वो हो जाता था, शाम पड़ते दिखाई नहीं देता था, धुंधला धुंधला दिखता था, आंखों में आंसू रहता था, और तो और ये सारा धुआं जब फेफड़ों में जाता हमारे मुंह से तो और तरह तरह की बीमारियां होती। अब इन सब से पूरी तरह से छुटकारा मिल गया है हमको, तो ये जो गैस आई है तो इसने सच में उज्ज्वला ही उज्ज्वला कर दिया है हमारे जीवन में।
3: अच्छा, ये बात सही
2: दीदी। मैं आपसे देखो हमारी जो गंगा बहन है ना, बहन आप देखो सबसे वरिष्ठ हो हमारी बहनों में, एक चीज में जानना चाहता हूँ क्योंकि आपने पैसा भी कमा लिया, लखपति भी बन गई हो है ना, सबसे बड़ी समस्या गांव में क्या रहती थी कि जैसे हमारी दादी वगैरह है माँ वगैरह है तो हमारी बहनें वगैरह गांव में आती थी ना, इतना पैसा नहीं होता था कि विदाई के समय इधर उधर कहीं से मांगना,
3: कहाँ भाई
2: तो
3: कहाँ।
2: आप सम्मान के साथ अपना पर्स खोला,
3: हाँ।
2: सरकार से विदाई करते हो, थोड़ा बहुत तो बताओ सब महिलाओं में,
3: अरे
2: इतना आत्मविश्वास जागा।
3: अरे किशन भाई, अब तो सब अपने अपने पास में, पहले तो घर में ना निकलता था 2-5, 10-20 के अलावा कोई 100-200

0: का नोट और अब सबके पास अपने अपने पर्स में रहता है, इतने इतने बटुए में रखती हैं, और जैसे ही कोई बेटी बहू जाती है तो सब अपने सुख शांति से प्रेम से मिलके इतना बढ़िया कार्यक्रम करती हैं विदाई का, खाना पीना है ना, नाचना गाना, जिसको जो गाना है गाओ, जिसको जो बोलना है बोलो, मजे करती है।
1: अच्छा राखी बहन भी तो खास तो अभी भी रही है राखी बहन।
0: अरे राखी तो बहुत अच्छा बोलती है किशन भाई। अच्छा, बाहर से शहरी लोगों को घुमा देती है पूरा गाँव।
1: राखी बहन आप तो पर्यटन दीदी बन गई हो।
2: अरे किशन भैया, मैं तो इतनी देर से सबकी बातें ही सुन रही हूँ, मैं सोच रही थी जरा मेरी बारी आए तो मैं भी कुछ बोलूं।
1: अच्छा दीदी, पहले मैं एक बात जानता हूँ आप।
2: हाँ बताइए।
1: जो हमारे पर्यटन स्थल हैं, आपको कितनी नॉलेज है इनके बारे में और ये सब कहाँ से सीखने को मिला?
2: अरे भैया, सरकार की योजना थी ना जिसमें महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया, तो जिसमें पुरुषों को भी सिखाया गया, लेकिन अब तक तो ये माना जाता था कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं तो उनको पुरुष ही केवल घुमाएंगे फिराएंगे, अपना गांव दिखाएंगे, यहाँ की संस्कृति से परिचित कराएंगे, लेकिन उसके बाद सरकार ने जो योजना बनाई उससे हम महिलाओं को प्रशिक्षण मिला और उससे हमने सीखा कि जो हमारे अतिथि देवो भव जैसे बोलते हैं ना, कि भी आने वाला तो भगवान होता है हमारा मेहमान, तो उसको यहाँ की संस्कृति से परिचित कराना, उसको सब कुछ दिखाना, गांव दिखाना, यहाँ की जो हस्तशिल्प कला है, यहाँ का विशेष भोजन है। तो अभी आप पूछ रहे थे ना मेरी बहनों से कि जो समय बचता है वो किस में गवाती है, वो गवाती नहीं है उसमें, वो यहाँ का पारंपरिक भोजन बनाती है, और फिर जो मेरे मेहमान आते हैं तो मैं उन्हें भोजन के लिए वहाँ ले जाती हूँ, जिसमें पारंपरिक भोजन जो हमारे यहाँ का है, तो वो विशेष भोजन उन्हें कराया जाता है, तो उससे उन्हें यहाँ की परंपरा जो है भोजन की, उससे अवगत कराया जाता है। हस्तशिल्प में कुछ बहनाएं निपुण हैं, तो उन बहनों की जो हस्तशिल्प कला है उससे उन्हें अवगत कराती हूँ, और ये जो सरकार ने हमें सिखाया है कि जो हमारे अतिथि जो हमारे पर्यटक हैं वो आए हैं तो उन्हें कैसे अटेंड किया जाए, उन्हें पूरा गांव दिखाया जाए। भाई देखो, इससे महिलाओं की आत्मनिर्भरता तो बढ़ी है और महिला सशक्तिकरण भी हुआ है।
3: बिल्कुल। अरे किशन बाबू मैं बताऊं, ये राखी बहन तमगा लगा के ऐसे गले में बांध के और हमारे घर आई थी, क्यों? तब दाल बाटी चूरमा ना खिलाया था मैंने।
2: उसे आई कार्ड कहवे, तमगा नहीं है, आई कार्ड है।
3: मैं तो कुछ ना जानू, मेरे लिए तो ये तमगा ही है।
4: किशन भैया, मेरी सिलाई वाली दुकान में भी काफी लोगों को लेके आई थी।
2: अरे जो प्रशिक्षित गाइड है ना, उन्हें वो आई कार्ड पहनना जरूरी होता है।
1: बहनों एक बात कहूँ कि देखो, ये हमारी पर्यटन दीदी बनने के बाद में आपको बहुत फायदा दिला रही है।
4: हाँ हाँ, कई लोगों को लाती है दुकान में।
3: गंगा बहन बड़ी अच्छी राजस्थानी ड्रेस दिलाती है।
1: तो सरपंच साहिबा, आप देखो, आप सब बहनों को देखकर खुश, मेरे मन तो बड़ा ही खुशी से भर गया है, और मैं तो और भी गांव के दौरे पर जाऊंगा, देखूंगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल किशन भैया,
1: क्या अब आपसे विदा लूं और अगले गांव में भी?
2: अरे किशन भैया, ऐसी भी क्या जल्दी है, हमारी बहनों के हाथ का भोजन तो जरा आप भी टेस्ट करते जाओ।
1: बिल्कुल जरूर जरूर।
2: अरे आज क्या पारंपरिक भोजन है, चने चावल।
4: किशन भैया
2: चलिए चलिए, किशन भैया
1: चलो
2: चलिए चलिए चलिए।
5: आजादी का अमृत महोत्सव।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हम हैं राही अपनी राहों के। आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी चैनल FM बैंड 101.8 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे अभिजीत ने आवाज़ में गाया गीत। उसके साथ ही हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

0: नीरज चोपड़ा, हालांकि इस बार कोई नया खिलाड़ी आपके सामने
1: जी
0: वहां पिक
1: बिल्कुल
0: में आएगा, लेकिन फिर भी इस मुकाबले पर तो अपना आधिपत्य भारत ने जमा रखा ही है। और जिस तरह से आप शहनवाज की बात आपने की, एक उत्तर प्रदेश का उभरता हुआ, तेजी से उभरता हुआ ये खिलाड़ी है, 8.23,
1: जी
0: और
1: बिल्कुल
0: सबसे कम उम्र में 8 मीटर की कूद करने वाला, ये बहुत कम ऐसे एथलीट भारत में है, तो इन पर भी नजर रखनी पड़ेगी, आगे
1: जी
0: देखिए क्या
1: बिल्कुल
0: होता
1: इन
0: है।
1: खिलाड़ियों पर नजर रहेगी
0: नेशनल
1: और इनकी
0: चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट तो आई है।
1: जी बिल्कुल इन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी और इनकी उपलब्धियों पर। श्रोताओं समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, शबाब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वर यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
3: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
3: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
2: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रति वर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667

करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बिना स्कीम के टेलीनॉर न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: People to people connect.
1: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
3: The visit to the 4 European countries.
2: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
3: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
1: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था अब वापस लाई जा रही है।
4: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम

0: आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
2: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
1: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा NDA सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
1: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वर यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन

0: और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मित व्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEET UG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes to CBI, lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Gyaneshwari Yadav bagged the silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support price, MSP, of 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. He said for the kharif season, the estimated payout to the farmers will be 2,60,000 crore rupees. He said an estimated over 824 lakh metric tons of crops will be procured during the season.
2: किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। Today a major decision was taken for farmers for all kharif crops. The MSP has been fixed at cost plus 50% or even higher. With this decision, farmers will receive a total payout of 2,60,000 crore rupees. The annual kharif procurement for this year will be 824 lakh metric tons.
3: Kharif procurement होगा 824 lakh metric tons.
1: Mr. Vaishnav said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesame. He said for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved the scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. Addressing media, Union Minister Ashwini

0: अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ में गाए गीत। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आइए सुनते हैं थोड़ी ही देर में चर्चा का विषय हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। दोनों रहनुमा दुनिया की दो सबसे बड़ी मईशतों के दरमियान महसूलात और बढ़ती इकतसादी और तकनीकी कशीदगी पर भी बातचीत कर सकते हैं। वेट लिफ्टिंग में आज गांधीनगर में एशियन सीनियर चैंपियनशिप में भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने दो तमगे जीते, जिसमें चांदी और कांसे का एक एक तमगा शामिल है। ज्ञानेश्वरी ने 53 किलोग्राम स्नैच जुमरे में चांदी का तमगा जीता और फिर मजमूई तौर पर 194 किलोग्राम का वजन उठाकर कांसे का तमगा अपने नाम किया। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में स्टार

खिलाड़ी पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत ने बैंकॉक में मुनाकिदा सिंगल्स मुकाबलों के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है। काबीना ने कोयले और लिग्नाइट को गैस में तब्दील करने से मुतालिक 37,500 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों को फरोग दिए जाने की भी मंजूरी दी है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 के पेपर लीक के सिलसिले में 5 अपराध को हिरासत में लिया है। मुख्तलिफ रियासतों में छापों की कार्रवाई जारी है। वजीर आजम मोदी ने अपने काफिले से गाड़ियों की तादाद को कम कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी के वज़ीर आला और दिगर रहनुमाओं ने अखराजात को कम करने से मुतालिक इकदाम किए हैं। और वेट लिफ्टिंग में गांधीनगर में एशिया सीनियर चैंपियनशिप में भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने चांदी और कांसे का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।

0: अच्छा अच्छा सा विषय है।
1: दुनिया की नब्ज पश्चिमी एशिया के तेल कुओं की धड़कनों से जुड़ी है। जब इन धड़कनों में युद्ध का शोर सुनाई देने लगे तो वैश्विक बाजार की सांसें फूलने लगती हैं। लाल सागर की लहरों से लेकर तेल के टैंकरों के बदलते रास्तों तक आज एक बार फिर दुनिया ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल की अस्थिरता के मुहाने पर खड़ी है। जब हॉर्मुज की जलधारा में हलचल होती है तो दिल्ली, मुंबई और हर भारतीय शहर की सड़कों पर उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन 2026 का भारत कल की तुलना में कहीं अधिक सजग है। आज हम केवल तेल के दाम गिरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ऊर्जा के नए विकल्पों और सामरिक भंडारों से अपनी सुरक्षा की दीवार ऊंची कर रहे हैं। नमस्कार, चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा बाजार, उभरती चुनौतियों के बीच भारत की तैयारियों पर। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पश्चिम एशिया के इस झटके को सहने के लिए तैयार है और कैसे हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी वैश्विक राजनीति के नए समीकरण लिख रही है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व CMD ONGC के सुभाष कुमार और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू।
3: थैंक्स आनंद।
1: सुभाष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। जो इस समय हॉर्मुज की मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत की जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है, जिसमें रूस, इराक और अमेरिका के बीच जो संतुलन भी है, कितना प्रभावी सिद्ध हो रही है?
3: आनंद जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक्चुअली आज के दिन में भारत जो है अपनी सप्लाई के लिए हॉर्मुज पे ओवरली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट यदि हम तेल का देखें तो लगभग 80% से ऊपर वो हॉर्मुज से आता है और 40-50% तो गल्फ स्टेट से आता है। LPG का भी इसी हिसाब से देखें तो लगभग सारी LPG इस प्रॉब्लम से पहले गल्फ स्टेट से ही आती थी। तो अब इस हालात में एक्चुअली जो एनर्जी एक का चीज है, एक और एक एस्पेक्ट है कि इस क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में, ना केवल एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है बट यहाँ के लगभग 1 करोड़ इंडियंस भी रहते हैं और जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज लिमिट करते थे। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं उसमें उन्होंने जो क्रूड जो सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाई की है और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी तरह मॉलिक्यूल्स पे सबकी सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, रशिया और अफ्रीका से भी तेल जो है इंपोर्ट किया है। तो ये जो सारा एक्शन है ये अभी तक काफी सक्सेसफुल रहा है क्योंकि यदि पूरा इफेक्ट इस डिसरप्शन का पड़ता तो शायद सिर्फ इसके भरोसे एक्चुअली इंडिया में तेल और तेल के प्रोडक्ट्स की किल्लत हो सकती थी।
1: पश्चिमी एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि रोजमर्रा के जीवन में वो कैसे बदलाव लाकर इस संकट के समय देश और सरकार को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या अपील की है।
4: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें।

0: मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें, जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरते, तेल की खपत कम करें खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी शहर दोनों को लाभ होगा।
1: नरेंद्र जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी बात ऊर्जा की होती है और भविष्य की तरफ हम देखते हैं तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी एसपीआर की भी चर्चा होती है और कई सारे मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत के पास 74 दिन, 80 दिन, 60 दिन के आसपास का रिजर्व है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण के नजरिए से देखें तो विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादूर में भारत ने जो अपने नए रिजर्व की खोज की है, क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए ये तीन सेंटर्स या कुछ और सेंटर्स एनर्जी शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त है?
2: देखिए, हमको देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है। आज हम दुनिया की अगर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो लार्ज इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और किसी भी अर्थव्यवस्था का, खासतौर से अगर आप विकासशील अर्थव्यवस्था है जो भारत है, उसकी जो बैकबोन होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है। और जब विकासशील अर्थव्यवस्था जैसी होगी, खासतौर से भारत जैसी, वहां ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में तेल की खपत जो है वो लगभग 3.5% से 4% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, क्योंकि देश का विकास हो रहा है, क्योंकि प्रगति हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो जो गरीबी से बाहर आ रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी खपत बढ़ रही है। हम आज की तारीख में लगभग 57 और 58 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उसकी हमारे यहाँ खपत है, 5.8 मिलियन रफली बैरल्स पर डे। और उसका भारी बहुत भारी मात्रा में लगभग 53 लाख बैरल हम आयात करते हैं लगभग 42 अलग अलग देशों से। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे सामने जो है दुविधा ये होती है, क्या हम जो विकास की गति है उसको रोकें, या वो लोग जिनको अभी भी और ऊर्जा की आवश्यकता है क्या उनको हम रोक सकते हैं, या किस हिसाब से हम ऊर्जा का इस तरह का प्रयोग करें जिससे कि हमारे को दिक्कत ना हो। जहां तक अब युद्ध जो है, ये भारत ने तो शुरू नहीं किया, जैसे जो कोविड था, कोविड की शुरुआत चाइना से हुई थी, ये युद्ध तो फारस की खाड़ी से शुरू हुआ है, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है सबसे बड़ी दिक्कत वहां से आ रही है। तो ऐसे में भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, ऊर्जा का उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, और भारी तेजी से जो आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो हमारे सामने चुनौती ये हो जाती है हम इसको कैसे देखें। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व की आपकी बात करी गई, स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं कभी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि देश के अंदर जो तेल लाने में जो है डिस्ट्रप्शन हो जाए, मतलब विदेशों से तेल लाने में दिक्कत हो, तो हम उसका प्रयोग कर सकें। लेकिन हमारा इतना विशाल देश है और इतनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि हमारी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिनको एसपीआर बोलते हैं वो हैं, लगभग 25 से 28 दिन के रिजर्व हमारे पास वो हैं। इसके अलावा जो तमाम रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो है ऑयल टैंक फार्म्स होते हैं, उनके अंदर भी हमेशा क्रूड ऑयल जो है और प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास 50 से लेकर के 55 दिन के रिजर्व तो होते हैं। और दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे रिलेशंस हैं, खासतौर से जो तेल के निर्यातक हैं, ऊर्जा के निर्यातक हैं, कि हमने जो है कहीं ना कहीं से हम तेल का इंतजाम हो रहा है। और आज भी भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पे पेट्रोल या डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है
1: जी।
2: और दाम भी भारत में अगर आप देखें अन्य देशों के मुकाबले तो काफी हुए, तो क्योंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं। और दूसरी बात, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता है
1: जी।
2: और दूसरे सबसे बड़े आयातक, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी होती है तो सिक्योर सप्लाई। लेकिन जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, ईरान, इनके लिए आवश्यक होता है भारत से अच्छे संबंध रखें, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी डिमांड से ताल्लुक रखती है। और डिमांड कहाँ सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, वो भारत में। पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड का लीडर आज कौन है, वो भारत है। तो वो भी भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए ये भी हमको सिक्योरिटी देता है। आपने जिक्र किया एनर्जी डिप्लोमेसी का, साथ में मैंने आपको ये बताया कि हिसाब से उनके लिए भारत एक अहम बाजार है, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं।

0: और हमारा अभी तक जो देखा जाए, अब बहुत लंबा युद्ध चलता है, डिस्ट्रक्शन बहुत बड़ा हो जाता है, वो तो भविष्य के गर्भ में है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज के धरातल पर जब मैं देखता हूँ, ठीक है, तैयारी हमको चाहिए, कंजर्वेशन हमको करना है, तेल को हमको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं।
1: जी बिल्कुल, आपने जिस तरह चर्चा को आगे बढ़ाया कि भारत के पास अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास आने वाले कुछ महीनों के लिए रिजर्व मौजूद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आवर एलपीजी द सिलेंडर गैस व्हिच यू यूज इन किचन अबाउट 60% यूज्ड टू कम फ्रॉम द स्टेट ऑफ होर्मुज। नाउ वी हैड टू मेक अरेंजमेंट। आई एम अमेज्ड एट व्हाट वी वर एबल टू डू। आवर डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एलपीजी प्रायर टू द क्राइसिस वाज 35,000 or 36,000 मेट्रिक टन पर डे। वी रैम्प्ड अप आवर डोमेस्टिक प्रोडक्शन फ्रॉम 36,000 to 54,000 मेट्रिक टन। दिस बाय इटसेल्फ इज अ माइंड बॉगलिंग थिंग।
1: सुभाष जी, भारत सरकार लगातार कुछ नए प्रयोग कर रही है और इसी दिशा में आज कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि जो कोल गैसीकरण परियोजना है उसको बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्वच्छ कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जब तेल बिल्कुल अस्थिर हो गया है, उसकी कीमतें और रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे विकल्पों पर हम ध्यान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पहल को जो आज कोल गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई है?
3: जैसे कि तनेजा जी ने पहले ही बताया था कि भारत एक तेजी से विकसित होती हुई इकोनॉमी है और लगभग थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल और गैस का, तो इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का है, और इकोनॉमी को यदि ग्रो करना है तो उसके लिए एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो है एनर्जी। और लकीली इंडिया में कोयले के काफी विशाल भंडार है, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हम कोल गैसिफिकेशन अपने इंटरनल जो रिसोर्सेज है उसको किसी तरह इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मैनर में यूज कर पाए। बिकॉज कोल के साथ जनरली ये कहा जाता है कि उससे एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, एमिशन रेट इज वेरी हाई, बट यदि कोल गैसिफिकेशन होता है इंस्टीट्यूट तो आपको ना तो बड़ी बड़ी खदानें खोदनी पड़ेंगी और ना ही उसका जो एमिशन है वो एक पॉइंट के बियॉन्ड जाएगा। इनफैक्ट उससे ये होगा आपको दोनों, एक टाइमली एनर्जी भी मिल जाएगी और एमिशन लेवल जो है ग्रोथ के लिए, जो इंडिया अगेन हैज कमिटेड टू कंफर्म विद द ग्लोबल कमिटमेंट्स टू फॉर ए क्लीन एनवायरनमेंट, तो उसको भी अचीव करने में एक सहायता मिलेगी। तो इंडिया को एक्चुअली चाहे वो बायोफ्यूल हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो जो पोटेंशियल सीबीजी का हो, वो सब कुछ हार्नेस करना पड़ेगा, बिकॉज हमारी आवश्यकताएं आज ही बहुत बड़ी हैं और आगे आने वाले दिनों में जबकि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, 25 से 30 ट्रिलियन इकोनॉमी जो कि 6 गुना के बराबर होती है आज के स्तर से, तो उसके लिए ये सब तरह के साधन, और यदि डोमेस्टिक हैं तो ये सोने पे सुहागे की तरह।
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कोयला गैसीकरण आपके लिए अगर नई चीज है तो ये होता क्या है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को उच्च तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से युक्त सिनी गैस प्राप्त होती है जिसे औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधित किया जा सकता है। ये पहल भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत प्राकृतिक गैस, उर्वरक और रसायनों के आयात पर निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट का चयन एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है, और इसी पर और जानकारी दी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
4: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है, तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं, और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से

0: गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल, ये बनाने की ये प्रोसेस है। और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
1: नरेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया है। क्या ये ग्रीन फ्यूल आने वाले समय में, चाहे शॉर्ट टर्म की ही हम बात करें, कच्चे तेल की कीमतों के झटके को सहने में हमारी मदद कर सकते हैं?
2: कि हम बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जैसे मैंने पहले कहा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हुआ तेल, गैस और कोयला। कोयला भी फॉसिल फ्यूल होता है। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था 80% आज की तारीख में भी वो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। लेकिन क्योंकि हमारी निर्भरता तेल पे, गैस पे बहुत ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले अगर आप देखें तो, इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढें जिससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि ये अलग बात है कि हमारी आयात पर निर्भरता एकदम कम होने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बहुत तेजी से हमारा विकास हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है। इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में तेल की जो जरूरत है वो भी बढ़ने वाली है, गैस की भी बढ़ने वाली है और कोयले की भी बढ़ने वाली है। लेकिन साथ में जो है हमने इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करके उसमें जो लगभग 20% पेट्रोल में अभी वो किया जाता है, डीजल में नहीं किया जाता, पर उससे हमने आयात में थोड़ी सी निर्भरता जो है कम करी है। ठीक उसी तरीके से जो देश होता है वो भविष्य की तरफ भी देखता है और जिसमें हाइड्रोजन को एक ऐसी ऊर्जा माना जाना है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा मिशन है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस, मतलब ऊर्जा की स्वतंत्रता हमको चाहिए 2047 तक, 2047 तक, उसमें हाइड्रोजन जो है एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है और उसमें बड़ी भूमिका वो निभाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें जिसका भी मैंने जिक्र किया, इसका जो ये भविष्य के बारे में ज्यादा है, भविष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल बाद, लेकिन अभी इनको थोड़ा समय लगने वाला है, हाइड्रोजन का उसको भी समय लगने वाला है। लेकिन ये है कि देश उस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो सबसे जरूरत चीज ये है वो है कि इस समय हमारी सरकार की कोशिश कि जो ऊर्जा की गरीबी के नीचे के लोग हैं उनको कैसे ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए, उसके तहत एलपीजी हर एक को दी गई उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत। साथ में भी ये कोशिश है कि जो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या जो हमारी ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता है उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि युद्ध जो है कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, और खत्म भी हो जाएगा फिर भी उसका जो असर है हमारी अर्थव्यवस्था पे, विश्व की अर्थव्यवस्था पे, वो एक लंबे समय तक रह पाएगा। तो एक तरफ तो सरकार जो है इस बात की तैयारी कर रही है, फ्यूचर के लिए तैयारी हो रही है, भविष्य की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में जो वर्तमान है, वर्तमान में भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से जो है तेल लेके आया जा सकता है, प्राकृतिक गैस लेके आया जा सकती है, उसको लाया जा रहा है। उसके लिए दो चीजों का प्रयोग करा जा रहा है। एक तो ये कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो हमारी गुडविल है, जो G20 में हमारा दबदबा है, और इसके अलावा विकसित देशों में भी जो हमारा अच्छे संबंध है जैसे क्वाड के अंदर है, उसको साथ में, इसके अलावा ब्रिक्स के अंदर है, आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग विदेश मंत्री की जा रही है, जहां भी एक विषय ये रहने वाला है, उस सबका यूज करा जा रहा है जिससे कि जो तेल की जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए। जो इस समय सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि सप्लाई डिस्ट्रप्शन नहीं होना चाहिए, और भारत उन गिने चुने देशों में है, खासतौर से विकासशील दुनिया में या ग्लोबल साउथ में, जहां अभी तक सप्लाई का डिस्ट्रप्शन आपने नहीं देखा है, खासतौर से तेल को लेकर के। एलपीजी में थोड़ी चुनौतियां आई हैं, लेकिन उसको भी काफी हद तक एड्रेस कर दिया गया है, काफी हद तक। तो मेरा ये मानना है कि हमको दो चीजें, एक तो प्रेजेंट और एक साथ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और दूसरा फ्यूचर, ये तमाम चीजें जिसमें हमने जो कोल गैसिफिकेशन की बात करी, ये जो है मीडियम टारगेट्स में ज्यादा आती हैं और लॉन्ग टर्म की तैयारी में आती है कि आज से अगर 15 साल बाद, 10 साल बाद वो हालात पैदा जो आज हैं, तो हम जो है काफी हद तक उसमें बिना किसी घबराहट के उसका जो है जो सोल्यूशन है वो देश के अंदर ही ढूंढ पाए। देखिए, हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी, वो आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बुनियाद होती है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद होती है। अगर आप तीनों सिक्योरिटीज को देखते हैं, सबके बॉटम में या बुनियाद में वो एनर्जी सिक्योरिटी होती है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं मूव करता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो या समाज हो, मोहल्ला हो, शहर हो, देश हो, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता। इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया में चुनौतियां आती रहती हैं, ये तो सुनामी जैसी चुनौती है, तमाम अर्थशास्त्री इसको जो है एनर्जी कोविड के नाम से बुला रहे हैं, यूरोप में कुछ अर्थशास्त्री इसको जो है इकोनॉमिक कोविड के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस जिम्मेदारी और मुस्तैदी से इसका जवाब दिया है, देश को तैयार किया है, और अब अगर प्रधानमंत्री की स्पीच को देखें तो प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद किया है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करी है, खुले प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री की ब्रेन स्टॉर्मिंग और संवाद ये है, दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है और हमको उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है

0: भी जरूरत ना पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री वो देश से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खुल के जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि दुनिया के हालात क्या है और हम जो है कैसे कैसे हम जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए, उनके विचार जो है वो आम आदमी साझा कर रहे हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल, और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और आने वाले वर्षों में हमें इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन विल अल्टीमेटली सक्सीड वेयर देयर इज लोकल डिमांड, देयर इज लोकल प्रोडक्शन एंड देयर इज लोकल कंजम्पशन, एंड देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड एज यूनिकली क्वालिफाइड एज इंडिया इज to make that happen. We set ourselves a target of producing 5 million tons of green hydrogen annually by 2030, supported by a strong policy framework and a significant financial outlay.
1: सुभाष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब पश्चिम एशिया का संकट है और दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में आप और किस तरह की पहल की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या निजी कंपनियों की तरफ से?
3: जी, ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। एक्चुअली जहां तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है और जिस तरह का ये क्राइसिस है उसमें सबको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे इमीडिएट बेसिस पे कर सकती थी वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और उसके लिए बड़ी क्लैरिटी है कि अगले 25 साल में कहां जाना है और 2070 तक कहां जाना है, वो क्लैरिटी है। तो इसके लिए मैं जो कुछ चीजें समझता हूँ कि बहुत जरूरी है, एक तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, टू बी एबल टू जो एग्जिस्टिंग एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है उससे जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क या आउटपुट ली जा सके, दैट शुड बी आइटम ऑन प्रायोरिटी। जो दूसरा इशू है वो जो डोमेस्टिक एंडोमेंट्स है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनको किसी तरह यूज करके यदि हम अपनी जो ऊर्जा की सप्लाई है उसको बढ़ा पाए। और इसमें मिसाल जैसे आपने एथेनॉल की दी, मैं एक्चुअली उससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा। सीबीजी एक ऐसा पोटेंशियल है जो आइडेंटिफाइड है और 15 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सतत प्रोग्राम एनविसेज किया था। टोटल पोटेंशियल जो है वो लगभग 62 मिलियन टन का है। तो अब क्योंकि इस तरह की स्थिति में वो एक एरिया होगा जहां हम ट्रिगर करें और जो सीबीजी का पूरा पोटेंशियल है उसको यूज करें, और ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होगा फॉर द रीजन कि सारा कंट्री लकीली सीजीडी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो आपको सेपरेट सप्लाई चेन नहीं बनानी है, सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। यदि आप डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं तो देश को ही जो किसान है और जो गांव है हमारे, क्योंकि सीबीजी लार्जली उन एरियाज में प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक साधन बनेगा। तीसरा जो है, जो देश में बाकी जितने साधन है, चाहे वो हाइड्रोजन की बात हो रही है, आपकी सोलर की बात है या इवन थर्मल पावर की बात है, सब जो है वो इस टाइम ट्रिगर करने के लिए एक दीर्घकालीन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आगे कोई इस तरह का डिसरप्शन आता है। ऑफ कोर्स इस बार भी इंडिया ने उसको बड़ा बखूबी फेस किया है, पर क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद लड़ते यदि इकोनॉमी 2.5-3 गुना हो जाती है, तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम से कम दुगनी होगी, और यदि वो दुगनी होगी तो आप डोमेस्टिकली कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होना चाहिए। और एक जो बात है, जो पिछले कुछ सालों में अच्छा भला देश ने काफी ऑयल और गैस प्रॉपर्टीज भी काफी एक्वायर की थी दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा कुशन की तरह काम कर सकती है। तो हमें स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यदि आप कोशिश करिए कि आपका अपने रिसोर्सेज हो, पर यदि वो बाई चांस आपके वो एडिक्वेट नहीं है तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको ग्लोबली इतनी ओनरशिप है कि जब जरूरत पड़े तो आप इंडिया को बेच सके। तो और कोल गैसिफिकेशन तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो उठाया जा रहा है, और यदि इसका ही भी पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन काफी रहेगा।
1: जी,
3: तो मैं सोचता हूँ ये 4-5 चीजें डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होंगी और काम ऑलरेडी चल रहा है, तो ये काफी कंट्रीब्यूट करेंगी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ।
1: और हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा की, और देशवासियों की चिंताओं को लेकर लगातार अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि

0: भारत की क्या स्थिति है ऊर्जा को लेकर?
1: वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी फूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल है, और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है।
0: नरेंद्र जी, कार्यक्रम में समय बहुत ज्यादा नहीं है, आपसे एक सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि तेल की कीमतों में जो अस्थिरता का असर हो रहा है भारतीय रुपए और करंट अकाउंट डेफिसिट पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि तेल व्यापार के लिए रुपया पेमेंट मैकेनिज्म, जिसकी चर्चा कुछ समय से चल रही है, इसको और प्रभावी बनाने से कुछ राहत मिल सकती है?
2: नहीं, अच्छा प्रश्न है और काफी इसकी चर्चा भी है, लेकिन ये जो हमारे जो कुल मिला के संबंध है पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से, उस पर डिपेंड करेगा हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं। अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, सामरिक संबंध है और लॉन्ग टर्म संबंध है, क्वाड के मेंबर हैं और अमेरिका को हम चाहते हैं या ज्यादा और निवेश करे, और वो जो फ्री वर्ल्ड जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उसका अमेरिका काफी उसमें दबदबा है, और अमेरिका जो है वो पेट्रो डॉलर को मजबूत रखना चाहता है, वो बड़ी आपत्ति करता है अगर कोई लोकल करेंसी में तेल खरीदता है, लेकिन हमको अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं और पिछले दिनों को हमने रूस के साथ तमाम जो डील हुई है उसमें रुपए की बड़ी भूमिका रही है और इस तरीके की बातचीत कुछ अन्य देशों से भी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के हमको बैलेंस बना के चलना होता है राजनीति के अंदर, क्योंकि तेल के बारे में कहा जाता है तेल 90% जियोपॉलिटिक्स है, तो उसमें हमको उसको भी बैलेंस रख के चलना है, लेकिन के साथ साथ मुझे लगता है आवश्यक हमारे लिए ये है कि हम एक लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान रहेगा उस पर और थोड़ा जोर डालें, देश के अंदर जो तेल का खनन है, उत्पादन है, उसको और इंसेंटिवाइज करें, विदेशों में जाकर के जहां भी तेल के भंडारों में हम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं उसको थोड़ा और एग्रेसिवली खरीदें, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम काफी जोर दे ही रहे हैं, लेकिन हमको ये भी साथ में समझना पड़ेगा कि हमारी देश का जो प्रगति है, जो हमारा विकास, उससे तो हम समझौता कर नहीं सकते, और आने वाले समय के अंदर हमें और तेल की जरूरत पड़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था को, और गैस की भी जरूरत पड़ने वाली है, और ये सारा कुछ सौभाग्य हमारे आसपास के देशों में उपलब्ध है, खासतौर से खाड़ी के देशों में। एक नया वेस्ट एशिया बनेगा ये जब भी युद्ध समाप्त होता है, ईरान की अर्थव्यवस्था शायद खुलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट से जो है वहां नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सऊदी अरब का रवैया जो बड़ा कड़ा रहा है वो थोड़ा नरम पड़ेगा, तो मुझे लगता है हमारे देश के आसपास ही नई संभावनाएं जो है उनका शीघ्र जन्म होगा, और हमको देखना पड़ेगा क्या वहां से हम पाइपलाइन बना सकते हैं या हम अपने एलएनजी टैंकर बना सकते हैं, अपने टैंकर्स बना सकते हैं, बहुत सारी इसमें चीजें हैं, तो मुझे लगता है युद्ध तो है लेकिन युद्ध में हमको देखना है कि अवसर क्या है, और हमारे इतने अच्छे संबंध हैं तमाम देशों से जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, और साथ में हमारी जो भारत की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, अपने विजन में बिल्कुल क्लियर है, तो मुझे लगता है कि हमको चिंता का विषय नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ साथ जरा थोड़ा हमको इस दिशा में खासतौर से एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा और स्मार्टली और तेजी से बढ़ना पड़ेगा।
0: जब हमारे आपके परिवार पर संकट आता है तो हम अपने अभिभावकों की तरफ देखते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी समझते हैं। जब पश्चिम एशिया में संकट है तो भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वो टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर इसका सामना करें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा, हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
0: कहते हैं संकट ही समाधान की जननी है। पश्चिम एशिया की ये चुनौतियां भारत को याद दिलाती हैं कि हमारा रास्ता आत्मनिर्भरता की ओर ही जाता है। चाहे वो हमारी

0: सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, रेलवे का सोलर विजन हो या फिर रेगिस्तानों के नीचे छुपा हमारा सामरिक तेल भंडार, भारत अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। पश्चिम एशिया की रेत में भले ही हलचल हो, लेकिन भारत का संकल्प अडिग है। हम न केवल इस संकट से उभरेंगे बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह भी दिखाएंगे। सुभाष जी आपका, नरेंद्र जी आपका, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
1: थैंक यू,
2: धन्यवाद।
0: आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चर्चा का विषय। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोकगीत।

ओरे प्यारी लागे हरी नजर से प्यारी भई लागे बोली रे प्यारी लागे हरी नजर।

थारी बोल जारी लागे ओ सैया भाणू रे थारी बैया भाणू रे थारी बोल जारी लागे ओ लिचारी चारी लागे हरी चाली।

Yes, sir.

तीरा लागे कबना मरुकी शरीरों हजारी गुलेरा

अभी आप सुन रहे थे समंदर खान की आवाज़ में गाया ये प्यारा सा लोकगीत। इसके साथ ही हमारा राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अरे भोली सी सूरत आंखों में मस्ती तोर खड़ी शर्माए आए हाय एक झलक दिखलाए कभी कभी आंचल में छुप जाए आए हाय।

अभी आप सुन रहे थे कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में गाया गीत। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 11:05 पर सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स हैं। तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रति वर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सीमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। CBI ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CV जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24